इस संसार में लाखों जीव जंतु रहते हैं जो खुले आसमान के नीचे निश्चिंत जीते हैं। कभी सोचा है कि क्यों मनुष्य इस तरह निश्चिंत नहीं जी पाता? क्योंकि उसे ना तो दूसरों पर भरोसा है और ना ही खुद पर। और जहां भरोसा ही नहीं वहां कैसी राहत? खुद पर और उस परम पिता पर भरोसा ही जीवन को सुखमय बना सकता है।

इस जीवन में मोह केवल उनका ही होता है जो मोह को हरने वाले हैं, और कभी कभी उनके दरस का मोह हमें खींच ले जाता है प्रकृति के समीप और हम आत्मविभोर होते हैं। आत्मविभोर का ये वक्त तब भी आता है जब देश प्रेम हमारे मन में जाग उठता है। तो चलिए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं देशगान।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए आज के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण झरोखा के अंतर्गत। सुबह 11 बजे से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात। सुबह 6:35 से श्री रामचरितमानस सुन सकते हैं और 6:45 से संगीत सरिता में सुनिए विविध भारती के खजाने से गायक पंडित सी आर व्यास से बातचीत। 7 बजे से भूले बिसरे गीत। 7:30 से हम है राही प्यार के। 8 बजे से समाचार प्रभात। 8:15 से सुनिए त्रिवेणी। सुबह 8:30 से चित्रलोक और 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है निर्माता निर्देशक आनंद एल राय पर। 10 बजे से सुन सकते हैं बॉम्बे टॉकीज का पुनः प्रसारण। गीतकार सुधाकर शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत की पहली कड़ी सुनिएगा, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। 11 बजे से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात। 12 बजे से हिंदी में समाचार। 12:05 से यादों की महफिल। 1:00 सुरीला सफर कार्यक्रम सुन सकते हैं और 2 बजे से त्रिवेणी का पुनः प्रसारण सुनिएगा। 2:15 से दोपहर समाचार। 2:30 से सुनिए सदाबहार नगमे। मन चाहे गीत कार्यक्रम का समय है 3 बजे का। नाट्य तरंग कार्यक्रम सुन सकते हैं 3:30 से। आज सुनिए नाटक कंटीला रास्ता का दूसरा भाग। मूल तमिल लेखक है नित्यामूर्ति, हिंदी अनुवाद किया है ए शौर्य राजन ने, निर्देशन वीपी दीक्षित बटुक्का। 4:00 उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में सुनिए रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की दूसरी कड़ी, प्रस्तुति थी श्री कामले की। 5:00 से छाया गीत का पुनः प्रसारण। 5:30 से तराने नए पुराने। 6:00 से हिंदी में समाचार। 6:05 से तराने नए पुराने का पुनः प्रसारण, माफ कीजिएगा, तराने नए पुराने जारी रहेगा। और 6:30 से झरोखा के अंतर्गत आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण आप सुनेंगे। 6:35

मिनट से संध्या रंजन, 6:45 से संगीत सरिता के अंतर्गत सुनिए विविध भारती के खजाने से गायक पंडित सी आर व्यास से बातचीत। शाम 7 बजे विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य का था। इस श्रृंखला में आज सुनिए महावीर चक्र से सम्मानित सूबेदार बिशन सिंह की शौर्य का था। शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत साज और आवाज वैन शिपले इलेक्ट्रिक गिटार के साथ होंगे ये कलाकार हैं आज के। लड़ी नजरिया लड़ी ये झलके सुन सकते हैं रात 8 बजे से हवा महल में, लेखन राजेश भदौरिया का, निर्देशन गुरमीत रामल मीत का। चित्रलोक रात 8:15 से 8:45 से समाचार संध्या, 9 बजे से सुनिए आपके लिए ये कार्यक्रम। 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है निर्माता निर्देशक आनंद एल रॉय पर। छाया गीत का प्रसारण होगा 10 बजे से। 10:30 से ढलती जाए रात और 11 बजे से विविधा। ये थे आज के मुख्य कार्यक्रम जिनका विवरण आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, श्री रामचरितमानस। सुनिए 233वीं कड़ी।

भारत के शील तथा यश को निर्मल चंद्रमा की संज्ञा देते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने कवि की सुबुद्धि को चकोरी के समान माना है। श्री रामचंद्र से भरत के गुण छिपे नहीं हैं, जो उन्हें धर्म की धुरी धारण करने वाला मानते हैं। पिता की अकाल मृत्यु से उत्पन्न स्थिति में राज्य का कार्यभार, कुल की प्रतिष्ठा, धर्म की मर्यादा, पृथ्वी, धन तथा घर परिवार का पालन करके ही सूर्य कुल की रक्षा की जा सकती है। अनुज भरत के लिए श्री राम की आज्ञा है कि वे ऐसा ही करें।

0: सरिता
1: मित्रों नमस्कार। आप सुनी श्रोताओं के लिए आज हम चुन लाए हैं एक प्रख्यात गायक कलाकार से की गई भेंट वार्ता, आइए सुनते हैं।
2: संगीत सरिता के श्रोताओं, आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं सुप्रसिद्ध गायक पंडित सीआर व्यास। व्यास जी नमस्कार।
3: नमस्कार
2: व्यास जी। आपके षष्ठीपूर्ति समारोह में श्री पीएल देशपांडे ने बड़ा रोचक और बड़ा ही सुंदर भाषण देते हुए कहा था कि कलाकार कभी रिटायर्ड नहीं होता, और उनमें से आप एक प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं। इस बारे में आपके क्या ख्याल है?
3: हाँ, वो तो बात सच है, क्योंकि कलाकार जब अपने कला में मग्न रहता है और पूरा टाइम उनको दे के अपनी साधना करता है, वो कहते हैं कि कलाकार ये सोच में कितना साल गुजरे उनको खुद को मालूम नहीं होता है, वो तो विचार में अपने हमेशा के लिए वो तरुण नहीं रहता है।
2: बहुत सुंदर। व्यास जी, आपने संगीत की शुरू की तालीम प्रारंभिक कब शुरू की?
3: 10 साल से शुरू किया।
2: 10 वर्ष की आयु से?
3: 10 वर्ष की आयु से। लेकिन पहले जो मैं गाता था वो तो हल्का फुल्का गाना गाता था। जब मैं 14-15 साल का हो गया तब किराना घराने में
2: जी
3: मेरे पहले गुरु जी थे पंडित गोविंद राव भातुंबरेकर।
2: अच्छा।
3: उससे मैं तालीम पाया 6-7 साल उनके पास सीखता था मैं
2: जी।
3: उसी टाउन करके जो हाँ वहाँ जहाँ रहते थे वो
2: जी,
3: वो तो वहाँ मैं तालीम पाया, और वो खुद को कहते थे कि वो किराना घराने के गायक है।
2: अच्छा। लेकिन जैसे कि सब लोग जानते हैं कि आप ग्वालियर घराने के गायक हैं।
3: हाँ, ये भी ठीक है, क्योंकि मेरा जब स्कूल एजुकेशन थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए मैं सोचता था तब मेरा गाने का बहुत मैं आगे जा चुका था, लेकिन मेरा खुद का विचार ऐसा नहीं था। मेरे को ऐसी जगह चाहिए, ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ मुझे अच्छी तालीम मिलेगी। जब मैं बम्बई आया मेरा उम्र था 18 साल की
2: जी,
3: और तब मैंने ग्वालियर
2: घराने के
3: राजा राम बाबा पराडकर जो थे मेरे गुरु जो कैलाशवासी पंडित राजा राम बाबा पराडकर से तालीम शुरू किया।
2: ग्वालियर घराने के बारे में कहा जाता है कि ग्वालियर घराने की गायकी अपने आप में एक समृद्ध गायकी है।
3: उस घराने की पहली एक स्पेशलिटी यानी मतलब था कि भाई जो गायक एक राग में
2: जी
3: अनेक ख्याल गा सकते हैं।
2: अच्छा।
3: कोई गायक ग्वालियर घराने में ऐसा रहते कि भाई एक यमन राग लिया है उसमें एक ही ख्याल आता है, एक द्रुत ख्याल आता है, एक बड़ा ख्याल आता है, उसे वो तो 15-15, 20-20 ख्याल एक एक रागों में बहुत आसानी से गाते याद करते थे।
2: ग्वालियर घराने का उपजंग के बारे में भी
3: ये
2: सुना कि बहुत
3: उपजंग तो हर घराने में रहती है।
2: अच्छा।
3: हर कलाकार में होना चाहिए, लेकिन उपजंग क्या होता है वो समझना बड़ा,
2: जिसके जरा हमें समझाते हुए
3: इसको थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा।
2: वैसे
3: तो मैं थोड़ा बताता हूँ कि अभी एक समझो एक राग है जैसा केदार है।
2: अच्छा।
3: तो अभी आला

0: सर, वो ले रे लगाने का जो तरीका है ना
1: जी,
0: ये उपजांग ही समझा जाता है कि वो हर एक अलाप में वो अलाप बढ़ाते बढ़ाते वो रे ऐसा ही लगाना चाहिए। अतः ये एक सुर का हो गया। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई उपज का एक सुरों का पुंज होता है, जैसा केदार में लेंगे मम रे सा रे सा रे रे सा सा, मम रे सारे सारे रे सा सा। अभी ये छोटा हो गया ना, इसमें ले में गा में जब उसकी तान बनती है ना, मम रे सारे सारे रे सा सा, मम रे सारे रे सा सा रे रे सा सा, पापा मम रे सारे रे सा सा रे रे सा सा, दादा पादा पापा मामा पापा मम रे सारे सारे रे सा सा। ये जो उपज है ना वो हमेशा के लिए ऐसा एक रूल था, यानी नियम था वो घराने में कि जब एक उपज चालू हो गया तो उपज की पूर्तता वो आखिर में वही चीज आना चाहिए
1: जी।
0: तब उपज की पूर्तता हो गया।
1: तो ग्वालियर घराने में भी आलाप और
0: ये सब बातें थी, आलाप बोल आलाप, पहले बोल आलाप फिर बोलांकित कुछ ताने,
1: कुछ ख्याल पर ज्यादा उनका ध्यान रहता था। ख्याल
0: ख्याल हाँ, ख्याल तो याद करना पड़ा। ख्याल तो पहले अगर ग्वालियर घराने में पहले ये नियम था कि जब कलाकार अपने स्टेज पे बैठ के प्रोग्राम देता था तो पहले वो ख्याल की बंदिश उसकी स्थाई दो दफे गा के लेंगे, बाद में अंतर दो दफे गाएंगे, फिर उसके बोल आलाप जो भी कुछ गाने का ढंग होता है उस ढंग से चलेगा। बिना ख्याल पूरा गा के कभी वो गाना चालू नहीं करते थे। अगर ऐसा किया तो कुछ कलाकार ऐसे मानते थे कि उसको तालीम अच्छी नहीं है।
1: व्यास जी, ग्वालियर घराने के साथ साथ आपने आगरा घराने के सुप्रसिद्ध गायक पंडित जगन्नाथ बुआ पुरोहित से भी तालीम हासिल की।
0: बहुत।
1: तो अपने गायन में आपने आगरा घराने की गायन शैली के किन अंगों को अपनाया है?
0: राम सिंह साहब, एक बात है कि एक बात बताना पड़ेगा मुझे। जगन्नाथ बुआ पुरोहित जिसको जिनको जिनका गाने में नाम था गुनीदास
1: जी, हाँ।
0: तो आगरा घराने में तो तालीम पाया
1: जी,
0: खास है मिलाए तो सिंह खास साहब के पास बहुत साल सीखते थे
1: जी।
0: लेकिन मैं जब बुआ साहब के पास गया तो इस सोच में नहीं गया था कि मैं आगरा घराने की गायकी सीखना चाहिए मुझे।
1: अच्छा,
0: लेकिन मैं उनके पास गया एक बात में कि भाई वो बहुत बहुत भावनिक गाते थे।
1: अच्छा,
0: खुद बुआ साहब
1: जी।
0: तो ये सुन के मुझे ऐसा लगा कि मेरे गाने में ये बात आना चाहिए। अभी इसको बहुत लोग ऐसे बोले थे कि क्या भावनिक गाना का क्या होता है अभी, और ये ग्वालियर में नहीं था, आगरा में नहीं था, तो ये तो बताने की बात है। हम बोलेंगे वही ग्वालियर में क्या होता है, जमेली भूली जो बागोला बैगुंदेला मोरे वाले निया जमेली भूली जो, ये ग्वालियर का पेताड़ा ही ऐसा है। वो सब गायकी ऐसी जाएंगे, थोड़ा सा इस तरीके से आगरा की जाएंगे, पहले ख्याल गाएंगे फिर ऐसे गाते जाएंगे, लेकिन उसमें भाव नहीं प्रकट होता है। जैसा भाव अगर वो जगन्नाथ बाबा जब गाना सुनेगा ना तो वो एक भाव प्रकट होता था कि भाई कैसा भाव है।

0: सुर लगाने का तरीका और उसमें भाव प्रकट करना, यानी आप खुद कलाकार कुछ ऑडियंस को कहने को चाहता है ऐसा लगता है। तो इस बात को मैंने ध्यान देके और ये अपना चाहिए, इसके लिए भी बुआ साहब के पास।
1: आप जैसे कलाकारों ने तो अपने जीवन में वर्षों की सतत साधना की और तब जाकर किसी एक मकाम पर पहुंचे हैं। आज की जो तरुण पीढ़ी है वे संगीत को आज पूरा समय अर्पित नहीं कर सकते, मतलब जीवन यापन भी जरूरी है और साथ साथ ये भी आशा रखते हैं कि वो जल्दी से जल्दी सीख भी जाए, प्रसिद्धि भी पाए।
0: वो तो एक बड़ा ऐसा सवाल आप पूछा है, यानी बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना तो कह सकता हूँ कि आज के जो तरुण कलाकार है वो बड़े अच्छे हैं,
1: अच्छा
0: बड़े अच्छे गाने वाले हैं और बड़े टैलेंटेड हैं
1: जी।
0: लेकिन तालीम कहाँ से पाना चाहिए, कैसी पाना चाहिए और जो तालीम मिलती है वो अच्छी है या नहीं, ये जानने की कोशिश करना चाहिए। अगर वो जानकर वो जाएंगे और तालीम हासिल करेंगे कहाँ से, तो बड़े अच्छे गायक बन जाएंगे और अपना गुजारा भी उनके ऊपर कर सकते हैं। ऐसे ऐसे कोई यंगर टैलेंट्स है मेरे अच्छा। सामने
1: और बड़े आशावादी हैं कि भविष्य बड़ा उज्जवल है हमारा देश,
0: बहुत अच्छे अच्छे अच्छे यंगर जनरेशन में मैंने देखा है, बॉयज है गर्ल्स है, बहुत अच्छे गाते हैं
1: सीख रहे हैं।
0: लेकिन इतना ही बात है कि जैसे पुराने जमाने में तालीम एक बात होती है, वो तालीम नहीं पा सकते वो, और वो

0: अच्छी तरह से पाना चाहिए, उसने देखना चाहिए कि भाई हम जो करते हैं वो ठीक तरह से करते हैं कि नहीं।
1: आपकी बातचीत में इन बातों का पता चला कि एक तो निष्ठा की बड़ी आवश्यकता है, एकाग्रता और साधना,
0: ये सब बातों पे ही निर्भर है ये कला। अगर कोई निष्ठा नहीं रखेंगे, अपने गुरु से सीखते हैं लेकिन गुरु से निष्ठा नहीं रखते हैं तो ये तो बात चलेगी नहीं।
1: व्यास जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। नमस्कार
0: भी आपका। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे पंडित सी आर व्यास से की गई भेंट वार्ता। भेंट वार्ता कर रहे राम सिंह पवार। ये भेंट वार्ता वर्ष 1985 में विविध भारती से पहली बार प्रसारित हुई थी। प्रस्तुतकर्ता थी छाया गांगुली। आज पंडित सी आर व्यास हमारे बीच नहीं हैं, परंतु उनके विचार हैं जो हमने उनसे की गई भेंट वार्ता में सुने, और उनका गायन भी हम सुनेंगे। लीजिए सुनते हैं पंडित सी आर व्यास का गाया राग बिहाग। बंदिश के बोल हैं ले जा रे जा पथी कबा। हारमोनियम संगत अनंत राणे की, तबला संगत विभव नागेशकर। राग बिहाग, गायक पंडित सी आर व्यास।

0: রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনলেন। শিল্পী ছিলেন শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং শ্যামলী দাস। আকাশবাণী কৈলাসহর এখন পর্যায়ক্রমে দিল্লি কেন্দ্রের প্রভাতী হিন্দি ইংরেজি এবং সবশেষে উত্তর পূর্বাঞ্চলের ইংরেজি সংবাদ শিলং কেন্দ্র থেকে রিলে করে শোনানো হচ্ছে।
1: समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हलमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी है। अमेरिकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है और किदाम्बी श्रीकांत अमेरिकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हलमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का प्रतीक है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है।
3: Today we have a new national health policy.
4: आज हमारे पास एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है। यह रोग के उपचार से स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर एक परिवर्तनकारी कदम है, जिसमें बीमारी की रोकथाम को केंद्र में रखा गया है। भारत सरकार ने इन 12 वर्षों में कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें सबसे परिवर्तनकारी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम माना जाता है, जिसके दायरे में लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं।
3: 62 करोड़ इंडिविजुअल्स।
1: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बातचीत की और गिरोह में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुंबई अपर आयुक्त अशोक दुबे ने बताया कि पेपर लीक मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
5: महाराष्ट्र में

0: जो टीईटी की एग्जाम होने वाली है उस एग्जाम में जो पेपर आने वाले थे वो पेपर भिवंडी में बेचने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ के डीसीपी जोन 2 पवन बंसोड इनको मिले थे। वहाँ पे 3 लोगों को टीम ने हिरासत में लिया। उनके पास से कुछ मोबाइल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ पैसे बरामद किए। कल इस्तेमाल होने वाले टीईटी के 4 पेपर जब्त किए हैं। आगे की जाँच हमारी चल रही है।
1: इस घटना के बाद आज होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
2: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें। उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है। मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और परेशानी से मुक्त बनाना है। रोहन के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के पुरानी मंडी स्थित श्रीराम मंदिर अमरनाथ यात्री आधार शिविर से में साधुओं का आगमन शुरू हो गया है। इससे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने बहुस्तरीय व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का अभ्यास किया। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी के साथ परिचर्चा प्रसारित कर रहे हैं। अंबिकापुर नगर निगम द्वारा संचालित इस कैफे में प्लास्टिक कचरे के बदले में भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
3: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
4: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
5: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया। सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी, प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया तो उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित किया जाएगा। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का बाग अभयारण्य में बाघों के पुनर्स्थापना के 18 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों और प्रकृति प्रेमियों को बधाई दी है। अमेरिकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। सेना ने कहा कि उसने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत कीकुक पर हुए हमले के जवाब में अमरीका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने के क्षमताओं को निशाना बनाया। वेनेजुएला में भूकंप में से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे जिसमें काफी नुकसान हुआ है। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज सुबह कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही कांगो की टीम इतिहास रचते हुए पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में पहुंच गई है। एक अन्य मुकाबले में आज पुर्तगाल और कोलंबिया के बीच मैच बिना कोई

0: पुल के ड्रॉ पर समाप्त हुआ। अब राउंड ऑफ 32 में शुक्रवार को पुर्तगाल का सामना क्रोएशिया से होगा, जबकि शनिवार को कोलंबिया और घाना आमने सामने होंगे। इससे पहले अमेरिका के न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम और हैरी केन के एक एक गोल की बदौलत आज इंग्लैंड ने भी पनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के एक अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से पराजित किया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे स्थान पर है। और अब खेल की अन्य खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: जी लवली, इन खेल खबरों में शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। भारत के किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकोमोतो को 22-20, 15-21 और 21-19 से हराया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सूली यांग के साथ होगा। महिला सिंगल्स में भारत की देविका सिहाग सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क की लाइने क्रिस्टोफरसेन से हार गईं। उधर क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में आज आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के अपने अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और अगर बात करें शतरंज की बाजी की, तो गोवा के 14 वर्षीय एथन वाज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित साराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज तेज वर्षा तथा कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन में आगे बढ़ सकता है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवा का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार में आज लू चलने के आसार हैं। अमेरिका के वाशिंगटन में भारतीय दूतावास ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडार, वाणिज्य विभाग तथा डुपोंट सर्कल बिजनेस इंप्रूवमेंट डिस्ट्रिक्ट के सहयोग से वार्षिक आम महोत्सव का आयोजन किया। इसमें अल्फांसो, केसर, दशहरी, लंगड़ा और बैंगनपल्ली जैसी लोकप्रिय भारतीय आम की किस्मों का प्रदर्शन किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूजोन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा को अमर उजाला ने मैत्री संबंध बताते हुए लिखा है, हिंद महासागर पर बढ़ेगा सहयोग। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सेशल्स में प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया गश्ती पोत सौंपा। पत्र आगे लिखता है, श्री मोदी 194 साल के कछुए जोनाथन से मिले। अयोध्या में श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में कुछ और लोगों के इस्तीफे की खबर हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने ट्रस्ट की तरफ से इस आश्वासन को दिया है कि श्रद्धालुओं के मूल्यवान समर्पण सुरक्षित हैं। अमेरिका और ईरान के बीच भिड़ंत शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता होने के 10 दिन के भीतर ही फिर से सैन्य झड़पें शुरू हो जाना पश्चिम एशिया और साथ ही विश्व के लिए बुरी खबर है। अफगानिस्तान में कल आए भूकंप की खबरें सभी अखबारों में है। देशबंधु कहता है, दिल्ली एनसीआर तक डोली धरती। उधर राजस्थान पत्रिका ने वेनेजुएला में भूकंप के बाद तबाही से जीवन की किरण शीर्षक से लिखा है, मलबे से 18 दिन के नवजात को निकाला, राहत और बचाव कार्य तेज। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया, देशबंधु की खबर है। पत्र ने इसे भारत की अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए लिखा है, अब गगनयान मिशन की तैयारियां तेज। अमर उजाला की खास खबर है, सितंबर में रोशन हो जाएगा लद्दाख, सियाचिन तक पहुंची बिजली। पत्र ने इसे बुनियादी ढांचे और स्थानीय विकास के मोर्चे पर मील का पत्थर बताते हुए लिखा है कि इससे सेना और सुरक्षा बलों को मिलेगी बड़ी ताकत। राजधानी दिल्ली में शनिवार को भीषण गर्मी और उमस पर हिंदुस्तान कहता है, 51 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसी तपिश महसूस हुई। दैनिक भास्कर की खास खबर है, इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच बाजारों में छाछ, लस्सी अपना बाजार मजबूती से बना रहे हैं। पत्र कहता है, अब कोल्ड ड्रिंक्स पीछे, छाछ और लस्सी की बिक्री में चौगुनी वृद्धि।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे।

वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए और किदाम्बी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: আকাশবাণী কৈলাসহর অনুষ্ঠান একযোগে প্রচারিত হচ্ছে 103.2 মেগাহার্জে এবং নিউজ অন এয়ার অ্যাপে। এখন দিল্লি কেন্দ্রের নিউজ বুলেটিন রিলে করে শোনানো হচ্ছে।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে লভলিন নিগম। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का प्रतीक है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। क्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
3: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए, लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें। उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा, क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है। मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और परेशानी से मुक्त बनाना है। रोहन के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे जिसमें काफी नुकसान हुआ है। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की भी खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीका की सेंट्रल कमांड ने कहा है कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत कीकू पर हुए हमले के जवाब में अमरीका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमरीका में कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई उकिमोतो को 22-20, 15-21, 21-19 से हराया। पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सू ली यांग के साथ होगा। महिला सिंगल्स में भारत की देविका सेहाग सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क के लाइने क्रिस्टोफरसन से हार गई। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर ग्रुप ए के अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। पुरुष T20 क्रिकेट में आज बेलफास्ट में भारत का सामना मेजबान आयरलैंड से होगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज तेज वर्षा तथा कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। दक्षिण पश्चिम

0: Hale, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. The Met Department has predicted heavy rainfall over Bihar, Chhattisgarh, Karaikal, Telangana, Vidarbha, Lakshadweep and Andaman and Nicobar Islands during the next 2 days. And that is the end of this news bulletin.
1: कि समय का समायोजन कैसे हो, किस तरह से हम बचाएं अपने लिए समय और अपने लक्ष्य, जो भी हमारे लक्ष्य हों, छोटे हों, बड़े हों, जो भी हों, उनके लिए हम किस तरह से समय बचा सकें। तो जहां हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए समय को अपने काम के अनुसार बांटने लगते हैं, जब हमें समझ में आता है कि कहां हम समय व्यर्थ कर रहे हैं, तो उन समय को जिस तरह से हम बांटने लगते हैं अपने लिए कुछ खाली समय रखते हुए, तो वहां कई बार ऐसा होता है कि बहुत सी जिम्मेदारियां और अपेक्षाएं हमारे ऊपर पहले से होती हैं, जिसकी वजह से भी कई बार हमें समय का समायोजन नहीं कर पाते हैं। तो इन जिम्मेदारियों और अपेक्षाओं का भार भी हमें अपने कंधों से उतारना पड़ता है, उसे बांटना पड़ता है अपने आसपास के लोगों के बीच। और अब आप इसे कैसे करते हैं ये आप पर निर्भर करता है, क्योंकि इसे हम बहुत ही ढिठाई से कर सकते हैं या गुस्से के तौर पर भी कई लोग इसे कर देते हैं। लेकिन आप ये कोशिश कीजिए कि जब ये काम, जब भी अपनी जिम्मेदारियों को आप बांट रहे हैं या अपेक्षाओं को आप थोड़ा कम कर रहे हैं, तो धैर्य रखिए और नरमाहट से ये काम करें, तो रिश्ते बहुत ही आसानी से बने रहते हैं।

सोनू निगम और नीति मोहन की आवाजों में ब्रदर्स फिल्म से गीत आपने सुना। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, अजय अतुल का संगीत। कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का।

देव नेगी की आवाज में आप सुन रहे थे केदारनाथ फिल्म से ये गीत, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से समय का संयोजन कर उसका समायोजन किया जा सकता है। और एक बार जब हम समझ जाते हैं कि अपने काम के लिए किस तरह से अपने पूरे दिन को हम विभाजित कर सकते हैं और अपने काम में अलग अलग समय को लगा सकते हैं, तो उसके बाद जीवन तो बड़ा ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि अपने लक्ष्य को हम जल्दी ही पा लेंगे। लेकिन हमारे पास है सदा गतिशील मन, जो हमें उस जगह ले जाना चाहता है जहां हम नहीं जाना चाहते, हर वो काम करवाना चाहता है जो हम नहीं करना चाहते, लेकिन करने में आनंद भी आता है। तो हो सकता है कि वो मन हमें वापस वहां लेकर जाए जहां पुराने ढर्रे पर हम चले जाएं और वो सारी काम करें और अपना समय व्यर्थ करें वापस। तो बस ये कोशिश कीजिए कि इस मन की मनमानी ज्यादा ना चले।

सकता है कि वो मन हमें वापस वहां लेकर जाए जहां पुराने ढर्रे पर हम चले जाएं और वो सारी काम करें और अपना समय व्यर्थ करें वापस। तो बस ये कोशिश कीजिए कि इस मन की मनमानी ज्यादा ना चले।

कपूर एंड सन्स फिल्म से आपने सुना ये गीत अभिरुचि चंद ने से लिखा, अमाल मलिक का संगीत, अरमान मलिक और अमाल मलिक की आवाजें। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। यह कार्यक्रम का अंतिम गीत ट्यूबलाइट फिल्म का ये गीत सुनिए कमाल खान, देव नेगी, नक्श अजीज और तुषार जोशी की आवाजों में, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, प्रीतम का संगीत।

स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए और समय का कीजिए सदुपयोग। और दिन में कहीं भी रहिए, रहिए विविध भारती के संग। आज के लिए अपने दोस्त नेहा शर्मा को दीजिए इजाजत। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा। चित्रलोक कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका

सुनने वालों को शेफाली कपूर का नमस्कार। साथियों, फिल्मों में निर्देशक ही वो सूत्रधार होता है जो कैमरे के पीछे रहकर पूरी टीम का मार्गदर्शन करता है, कलाकारों के अभिनय को आकार देता है। निर्देशक की सोच, दृष्टि और सृजनात्मकता ही किसी भी फिल्म की आत्मा होती है। आज हम ऐसे ही प्रतिभाशाली निर्माता निर्देशक के जीवन कार्य और योगदान पर बातें करेंगे, जिन्होंने अपने अनोखे दृष्टिकोण और सृजनात्मकता से सिनेमा की दुनिया में अपना एक विशेष स्थान बनाया है। साथियों, हिंदी सिनेमा में जहां एक ओर बड़े बजट की भव्य फिल्में दर्शकों को आकर्षित करती हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ निर्देशक अपनी सादगी भरी कहानियों और मानवीय भावनाओं को बड़ी खूबसूरती से प्रस्तुत करके दर्शकों का दिल जीत लेते हैं।

जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज के फनकार, वेरी टैलेंटेड निर्माता निर्देशक आनंद एल राय की, जिन्होंने साधारण मिडिल क्लास लोगों की कहानियों को रुपहले पर्दे पर नया नजरिया दिया है।

28 जून साल 1971 दिल्ली में जन्मे आनंद एल राय, इनका परिवार भारत पाक विभाजन के दौरान सीमा पर खींची दीवार के बाद सिंध छोड़कर देहरादून चला आया और कुछ समय बाद आनंद राय के पिता ने दिल्ली में अपना आशियाना बना लिया। आनंद राय का पालन पोषण दिल्ली में हुआ। वहां से उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा के बाद महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर वे नौकरी करने लगे। साथियों, यूं तो आनंद की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ कमी सी महसूस होती रही। दरअसल उनका झुकाव तो रचनात्मक क्षेत्र की ओर था।

सदानंद अपनी नौकरी छोड़कर मुंबई आ गए। श्रोताओ, बॉलीवुड में ऐसे कई स्टार हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग का फील्ड छोड़कर फिल्मी दुनिया में करियर बनाया है। आनंद एल राय भी उनमें से एक हैं। मुंबई आकर आनंद राय ने अपने बड़े भाई रवि राय, जो कि उस समय टीवी धारावाहिकों का निर्देशन कर रहे थे, उन्हें असिस्ट करना शुरू कर दिया। पर्याप्त अनुभव प्राप्त करने के बाद आनंद ने अपने निर्देशन की शुरुआत की। ये यूं कहिए कि आनंद ने बतौर निर्देशक अपना डेब्यू किया साल 2007 में साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म स्ट्रेंजर्स के साथ। यहां आपको बताते चलिए कि फिल्म स्ट्रेंजर्स अल्फ्रेड हिचकॉक की स्ट्रेंजर्स ऑन अ ट्रेन पर बेस्ड थी, लेकिन आनंद राय की ये डेब्यू फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह लुढ़क गई, जिसमें जिमी शेरगिल, के मेनन, नंदना सेन, सोनाली कुलकर्णी जैसे कलाकार थे।

साल 2008 में जैकी श्रॉफ और परमीत सेठी अभिनीत आनंद राय की अगली फिल्म आई थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर अपना जादू नहीं चला पाई और दर्शकों ने भी इस फिल्म को नकार दिया।

बैक टू बैक फ्लॉप फिल्म देने वाले आनंद एल राय, इनके साथ अब कोई निर्माता काम करने को तैयार नहीं था। लगातार फेलियर होने पर आनंद राय ने हार तो नहीं मानी, लेकिन हाँ, 3 साल का ब्रेक जरूर ले लिया। इन 3 सालों के ब्रेक के बाद आनंद राय के करियर का टर्निंग प्वाइंट आया साल 2011 में, जब उन्होंने तनु वेद सुमनु फिल्म के निर्देशन के साथ अपनी ग्रैंड वापसी की और हर किसी को अपने डायरेक्शन का दीवाना बना दिया।

आर माधवन और कंगना रनौत अभिनीत ये फिल्म आनंद राय की पहली कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म थी, जिसने दुनिया भर में जबरदस्त कमाई की। दर्शकों ने इस फिल्म को बहुत पसंद

नजर आए बॉलीवुड के उन गिने चुने डायरेक्टर्स में से हैं जो रीमेक के दौर में नई और असल कहानियों पर काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। वो खुद भी बड़े सिंपल अंदाज में जीवन जीते हैं। साथियों, उनका कहना है कि अगर वो साधारण जिंदगी नहीं जिएंगे तो अपने अंदाज में फिल्में नहीं बना पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं साल 2013 की। इस साल आनंद राय ने अपने निर्देशन में दूसरी कमर्शियली हिट फिल्म दी रांझणा, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। इस फिल्म के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर के ऑपोजिट साउथ की फिल्मों के सुपरस्टार धनुष ने बॉलीवुड में अपनी एंट्री की, जिन्हें दर्शकों ने तहे दिल से स्वीकार किया और इस फिल्म में अभिनेता धनुष के अभिनय की भूरी भूरी प्रशंसा हुई।

आपको बता दें कि फिल्म रांझणा दुनिया भर में करोड़ों की कमाई करने वाली साल की 10वीं सबसे ज्यादा कमाऊ हिंदी फिल्म थी। इस फिल्म के लेखन और निर्देशन की बहुत सराहना हुई और फिल्म रांझणा ने फिल्म फेयर अवार्ड के लिए आनंद एल राय को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए अपना पहला नामांकन दिलाया।

संगीत सुनने के शौकीन बॉलीवुड प्रोड्यूसर डायरेक्टर आनंद एल राय हिंदी सिनेमा में अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म्स के लिए जाने जाते हैं। साल 2015 में आपने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न्स का निर्देशन किया, जो फिल्म तनु वेड्स मनु का सीक्वल था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही। दर्शकों से इस फिल्म को भरपूर प्यार और सराहना मिली। ये फिल्म साल की पांचवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी, जिसने दुनिया भर में करोड़ों में जबरदस्त कमाई की। खास बात ये रही साथियों कि अपनी रिलीज के समय भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ये महिला प्रधान फिल्म थी। आनंद राय की इस तीसरी जबरदस्त सफल फिल्म ने उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड के लिए बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी में अपना दूसरा नामांकन दिलाया।

एल राय को सफलता काफी उतार चढ़ाव के बाद मिली। भारतीय सिनेमा में कई निर्देशक हैं, लेकिन चर्चा में कुछ ही रहते हैं, जिनमें आनंद एल राय का नाम भी शामिल है। तनु वेट्स मनु, रांझणा, तनु वेट्स मनु रिटर्न्स जैसी हिट फिल्म्स के निर्देशक आनंद एल राय बॉलीवुड के मशहूर निर्देशकों में से एक हैं।

आपने साल 2018 में शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ जैसे ए लिस्ट स्टार कास्ट के साथ फिल्म बनाई जीरो। और साथियों, आनंद राय की पिछली सफल फिल्मों के कारण रिलीज से पहले हाई प्रमोशन के बावजूद आनंद राय की ये फिल्म कुछ खास नहीं चल सकी।

बताओ, आनंद राय न केवल निर्देशक हैं, बल्कि वो एक सफल निर्माता भी हैं। उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस कलर येलो प्रोडक्शंस के बैनर तले नील बटे सन्नाटा, हैप्पी भाग जाएगी, मन मर्जियां, तुम बाट, अतरंगी रे, रक्षाबंधन, शुभ मंगल सावधान जैसी कई फिल्मों का निर्माण किया है। फिल्म अतरंगी रे की बात की जाए तो ये फिल्म साल 2021 में आई, जो एक रोमांटिक फैंटेसी कॉमेडी थी। आनंद राय निर्देशित इस फिल्म में धनुष, सारा अली खान और अक्षय कुमार मुख्य भूमिकाओं में थे। इस फिल्म को कोविड के दौरान लॉकडाउन के कारण सिनेमाघरों में रिलीज किए बिना डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज किया गया, जिसे दर्शकों की, आलोचकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया और समीक्षा मिली।

साल 2022 में अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर को लेकर आनंद एल राय ने फैमिली कॉमेडी फिल्म रक्षाबंधन निर्देशित की।

और अब साल 2025 में आने वाली फिल्म तेरे इश्क में, जो सीक्वल है फिल्म रांझणा का और जिसके निर्माण और निर्देशन का दारोमदार है आनंद एल राय पर। देखना ये होगा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना धमाल मचाती है। तो हमें इंतजार है आनंद एल राय की आने वाली फिल्मों का। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था हिंदी सिनेमा के जाने माने निर्माता निर्देशक आनंद एल राय पर। शोध, आलेख और स्वर शिफाली कपूर। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। आज के फनकार।

0: Camera, action!
1: नमस्कार श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध गीतकार सुधाकर शर्मा से एक मुलाकात।

0: से बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग।
1: बॉम्बे टॉक इस कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज स्टूडियो में हमारे सामने एक खास मेहमान बैठे हैं, फिल्मी दुनिया के जाने माने गीतकार। जी हाँ, आप हैं सुधाकर शर्मा, और जिन्होंने 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 5,000 गाने अब तक लिखे हैं, और भी न जाने कितना काम इस फिल्मी दुनिया में उन्होंने किया है। तो आज उन्हीं से जानेंगे उनकी दुनिया का सफर। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सुधाकर जी।
2: मंदाकिनी जी नमस्कार। मेरे सभी उन श्रोताओं को जिन्होंने मेरे गानों को सुन सुन के मुझे विविध भारती के स्टूडियो तक पहुंचा।
1: तो सबसे पहले हम तो यही जानना चाहेंगे कि आप कैसे हैं।
2: मंदाकिनी जी, हुआ ये कि हर आदमी अपने बचपन से प्रेरित होता है किसी भी काम के लिए। तो मैं गांव में रहता था, पलवल के पास मेरा गांव है। वहां हमारे एक चाचा थे, वो हमेशा ट्रांजिस्टर बगल में लटका के रहते थे। बिना ट्रांजिस्टर उनको आप देख ही नहीं सकते कभी। तो वहां गाने बजते थे, जब आता था अनाउंसमेंट कि आप शंकर जयकिशन का संगीत बद्ध किया हुआ, हसरत जयपुरी का लिखा हुआ ये गीत सुनिए, तो मुझे वो साउंड जो है ना, ऐसा लगता था कि काश मैं भी कुछ ऐसा कर पाऊं कि मेरा भी ऐसे नाम आए कि अब आप शंकर जयकिशन का संगीत बद्ध किया हुआ, सुधाकर शर्मा का लिखा हुआ गीत सुनिए। तो ये प्रेरणा स्रोत बना मेरा आपका ये माध्यम, और मैं वहां से सफर तय करने के मतलब तैयारी में मुंबई तक आया।
1: ये 1973 में, 1973
2: में
1: हरियाणा से मुंबई आ गए?
2: नहीं, मैं हरियाणा से दिल्ली में था।
1: हाँ।
2: दिल्ली से मुंबई आया।
1: अच्छा।
2: मेरे पिताजी दिल्ली में टीचर थे, तो मैं दिल्ली में ही रहता था, और वहां से मैं यहाँ आया। और यहाँ आने की भी एक अलग कहानी है, मैं कोई सोच समझ के नहीं आया, मतलब मुझे आना था ऐसा मेरे मन में था, लेकिन कब जाऊंगा और कैसे जाऊंगा इसकी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि उतने पैसे मेरे पास नहीं थे और आने का कोई सोर्स भी नहीं था। मेरे एक दोस्त हैं विजय त्यागी
1: जी,
2: वो धर्म जी के फैन थे, तो उसने बोला यार मुझे तो धर्मेंद्र बनना है, तो उसने बॉडी वॉडी भी अच्छी बनाई।
1: अच्छा।
2: थी उसका आने का प्रोग्राम बना और मेरे को बोले कि चल तू भी चल, और मैं उनके साथ आ गया, और यहाँ मुंबई में मुंबई का होके रह गया। मैं पहली बार जब यहाँ आया देहरादून ट्रेन से उतरा, देहरादून एक्सप्रेस दादर, तो मेरे साथ मतलब पहली घटना ऐसी हुई कि हम तीन थे, एक जो तीसरा था वो हमारा गाइड था।
1: अच्छा, तीन दोस्त आए थे?
2: तीन दोस्त आए। हाँ। थे, मेरे दोस्त का वो दोस्त था।
1: अच्छा।
2: तो उसने बोला कि मैं जहाँ रहता हूँ वो बहुत बड़ी जगह है, और उस जगह पे ये नहीं जा सकता।
1: कौन? आप?
2: सुधाकर।
1: अच्छा।
2: बोला ये तो शक्ल से ही चोर लगता है, तो वहाँ कुछ हो गया तो।
1: अरे।
2: तो मैं दादर स्टेशन प्लेटफॉर्म पे रात को सोया, ये लोग दोनों चले गए।
1: अच्छा।
2: मैंने कहा भाई आप तो जाइए फिर मैं रुकता हूँ। तो ये एक कार्यक्रम इस तरीके से बंबई में मेरी पहली रात
1: हुई,
2: ओपनिंग हुई दादर एक नंबर प्लेटफॉर्म के बेंच पे सोया। कभी कभी उस जगह पे जाके मैं खड़ा होता हूँ अभी।
1: उस पल को महसूस करते हो जब आपको ऐसा किसी ने कहा था?
2: याद आता है वो
1: जी। तो जब आपने कहा कि आप दिल्ली से यहाँ आए, तो क्या आप मुंबई गीतकार बनने ही आए थे या कुछ और विचार लेकर भी आए?
2: नहीं, मैं सिर्फ गीतकार बनने ही आया था, और मैं उस वक्त जो है ना बहुत बड़ा फैन था शैलेंद्र जी और हसरत जयपुरी साहब का और शंकर जयकिशन का।
1: अच्छा।
2: लेकिन मैं यहाँ जब आया तो मैं इन लोगों से कैसे मिलूं, क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। और कुछ दिनों बाद मेरे वो दोनों दोस्त भी चले गए, मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं यहीं कुछ ना कुछ करूंगा। इससे पहले रूटीन ये चल रहा था कि ये लोग घूमते थे, मेरे को ले लेते थे दिन में, और रात को वहां खाना खिला के छोड़ देते थे।
1: अच्छा।
2: पूरा खर्चा वही लोग करते थे। लेकिन फिर जब ये जाने लगे तो मैं रुक गया, और मैंने सोचा कि अभी मुझे कुछ करना है। ये 4-5 महीने के बाद मैंने एक जगह नौकरी की ग्रैंड रोड पे, और वहां उस नौकरी के मेरा ये था कि कुछ 4-5 बाल्टी पानी नीचे से सेकंड फ्लोर पे उनको पहुंचानी होती थी भर के, और उसके बदले में वो टेरिस पे मुझे सोने की जगह देते थे।
1: कोई पैसा नहीं देते?
2: नहीं, पैसा नहीं देते थे। फिर कुछ दिनों बाद वो कुछ

0: और भाई ये चाय ले आओ, फलाना डालो, ये लेटर डालो, और कुछ पैसे भी देने लगे। तो वहां काफी मेरा कुछ 1-1.5 साल लगा इस तरह से, मुझे फिल्म लाइन का कोई रास्ता ही नहीं मिला।
1: अच्छा, मतलब 1 से 1.5 साल लगभग आप यही काम करते थे,
0: यही काम
1: ये
0: करता था।
1: संघर्ष जो
0: अब इसको
1: था।
0: आप संघर्ष कहें या कुछ भी कहें, उस मंजिल तक ही नहीं मैं मुड़ा जहां के लिए आया था।
1: हाँ
0: अब वो ही रोज उसमें चलता रहा। तो वहां पे मुझे 2-2.5 रुपए रोज के मिलते थे। तो वहां पे एक मुस्लिम होटल था जहां बड़ी रोटी मिलती थी और दाल फ्री होती थी। तो
1: अच्छा,
0: एक टाइम हम आराम से खा लेते थे, कोई टेंशन
1: इतना
0: नहीं
1: पैसा
0: था,
1: मिल जाता था
0: इतना
1: आपको।
0: पैसा मिल जाता था। तो वहां उस कंपनी में एक अकाउंटेंट थे, उन्होंने एक दिन कहा कि यार तुम क्या बनने आए हो। मैंने कहा यार बनने तो बहुत कुछ आया, लेकिन कुछ होगा ही नहीं यहाँ पर, तो यहाँ तो काम ही कुछ और है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक जगह ले जाता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। और मैं उनके साथ गया और वो मुझे शंकर जी के म्यूजिक रूम में लेके गए।
1: अच्छा।
0: और तब तक जय भाई तो नहीं रहे थे, शंकर जी थे। और वहां जब मेरा उनसे परिचय हुआ, मैं बता नहीं सकता उस पल की खुशी कि शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया हुआ, वही शंकर जयकिशन का रूम, वही शंकर जी, वही उनके स्टूडियो। तो मेरे लिए तो ऐसा था, मैं जन्नत में आ गया,
1: जी, सपने देखने जैसा।
0: सपने देखने जैसा। और यहां से इस पल से मेरे सपने साकार होने शुरू हुए फिल्म लाइन के।
1: तो आगे हम आपसे बात करेंगे, एक
0: जी,
1: गीत सुन लेते हैं पहले।
0: मैं मेरे उस्ताद जी का एक गाना सुनना चाहता
1: जी
0: हूं,
1: बताइए।
0: और वो गाना है बहारो फूल बरसाओ मेरा
1: मेरा
0: महबूब।
1: महबूब।

0: माता पिता से बात होती रही क्या, उन्होंने पूछा? और वो जो दोस्त आपको छोड़कर फिर चले गए, आप कह रहे हैं मुंबई, क्या उनसे भी कभी सामना हुआ?
1: हाँ वो हुआ, सब कुछ हुआ। वो भी मेरी खैर खबर लेते रहते थे।
0: हाँ।
1: और माता पिता तो लेंगे ही लेंगे, तो मैंने उनको एक अपने माता पिता को एक थोड़ा सा झूठ

0: बोला था कि मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं, नौकरी मिल गई है, मैं यहीं रहूंगा और मुझे यहीं कुछ करना है, और उनको ये अंदेशा तो था कि फिल्म लाइन में कुछ करेगा। मेरे पिताजी ने एक ही बात करी कि भाई अगर तुम कुछ ऐसा करना चाहते हो कि जो बंबई में ही हो सकता है तो ठीक है आप करो, और जो भी आप कमा रहे हो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप परेशान मत होना। जबकि कमाई वमाई कुछ थी नहीं, लेकिन एक एड्रेस था मेरे पास कि वहां से हम लोग बात कर सकते थे।
1: कुछ आपको उम्मीद भी बंधी कि मैं मुझे कुछ करना है तो करना ही है।
0: जी जी जी।
1: तो जैसा कि आपने कहा कि वो आपको शंकर जयकिशन के स्टूडियो में ले गए, जहाँ शंकर जी मिले, उसके बाद फिर क्या आपको पहला गीत मिल गया या
0: नहीं,
1: आप
0: नहीं,
1: शंकर
0: नहीं।
1: जी के सानिध्य में रहे? कैसे?
0: बस
1: क्या?
0: उनके सानिध्य में मैं उनके रूम में काम करता रहा, झाड़ू कटका पोछा जो भी मेरे को मिला मैं काम करता रहा।
1: अच्छा।
0: तो मुझे काम तो नहीं मिला, लेकिन क्या है कि वो शंकर जी के यहाँ एक बड़ा अच्छा सिस्टम था कि वहां पे सब खाने पीने की बड़ी मौज थी। आपको जो खाना है कैंटीन में खाओ, खाली सिग्नेचर कर दो, तो कोई परेशानी नहीं थी और सोने की कोई परेशानी
1: नहीं
0: थी। तो मैं जो है वहां पे काफी समय तक रहा, और एक दिन शंकर जी ने मुझसे पूछा कि भाई यहाँ हर आदमी एक सपना लेके आता है, तो तेरा क्या सपना है? तो मैंने कहा मैं गीतकार बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है सुनाओ कुछ। अब वो इतनी बड़ी शख्सियत, उनके सामने मेरे से कुछ सुनाया ना गया। मैं बोला क्या सुनाऊं, एक होता है ना अभी अचानक उन्होंने बोल दिया।
1: तो क्या तब तक आपने कुछ गीत लिख लिए थे, कुछ
0: लगभग
1: कविताएं?
0: 200-250 गीत मैंने लिखे थे।
1: अच्छा।
0: गीत तो रोज लिखता था, लेकिन अब शंकर जी जैसी पर्सनैलिटी सामने हो तो सिट्टी भिट्टी गुम सुनाए क्या।
1: बिल्कुल।
0: वो भी समझ गए और उन्होंने हसरत जयपुरी साहब से मुझे पहली बार मिलाया।
1: अच्छा।
0: और कहा कि हसरत मियां ये लड़का सोचता बहुत अच्छा है, इसको लिखना सिखाओ।
1: अच्छा।
0: ये उनके वर्ड थे।
1: तो ये किस वर्ष की बात होगी लगभग?
0: ये तो मतलब मेरा होते होते लगभग 78 की बात है, मतलब काफी समय हो गया है। इन बिटवीन मैं यहाँ आता था बंबई, सबके घर देखता था, सब चारों तरफ ये बंगला दिलीप कुमार का है, ये फलाने का, ये सब देखते थे। उन बंगलों को देख देख के खुशी होती थी, उनसे मिल तो नहीं पाते थे लेकिन बस घर देख लेते थे तो उसमें खुश हो जाते,
1: ऊर्जा आ जाती थी।
0: हाँ,
1: मोटिवेशन
0: लगता
1: मिलता था,
0: मोटिवेशन होता
1: कि कभी
0: था
1: हमारा भी ऐसा
0: कि
1: घर
0: कभी
1: होगा।
0: हमारा भी होगा। दिलीप साहब के घर के सामने ना, जैसे आज अमित जी के घर के सामने भीड़ लगती है, उन दिनों दिलीप साहब के घर के सामने भीड़ लगती थी, कुछ लोग आते थे हमेशा। वहां का एक अलग ही चलन था। वहां एक चाय वाला आता था, सबको चाय पिला के चला जाता था और पैसे नहीं लेता था।
1: अच्छा।
0: अब वो पैसे
1: कौन देता
0: कौन
1: था?
0: देता था वो, या वो क्यों नहीं लेता था ये मुझे नहीं पता।
1: मतलब दीवानगी होगी दिलीप कुमार साहब
0: हो
1: के
0: सकता
1: प्रति,
0: है
1: ना? इस
0: हो सकता
1: दीवानगी
0: है,
1: में भी लोग कितना काम कर जाते
0: करते
1: हैं।
0: हैं। तो दिलीप साहब आते थे बालकोनी में, हाथ हिलाते थे, बस इतना ही था। लेकिन मैं अक्सर जो है ना, हम लोग वो चाय पीने के लालच में ज्यादा जाते थे क्योंकि
1: जी
0: भूख प्यास भी होती है ना आदमी को। तो वो दौर पाली हिल का मुझे याद है अभी तक, कैसे वहां पे जाते थे। जब हसरत साहब ने मुझे कहा कि मैं कैलाश बिल्डिंग में रहता हूँ खार, आप वहां आइए, तो मैंने वहां उनके पास जाना शुरू किया। और पहले पहले तो क्या ऐसी बातें होती रही उनसे बातचीत में, वो मुझसे बात करते रहे, पूछते रहे सब कुछ। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि हसरत साहब एक फरिश्ता बन के मेरी जिंदगी में आए। उन्होंने वाकई में मुझे लिखना सिखाया। मुझे लगा कि जो मैंने लिखा वो सब बकवास है, और अभी भी मैं उतना अच्छा नहीं लिख पाता हूं जितना अच्छा हसरत साहब लिखते थे।
1: जी, खैर, ये तो
0: कहीं ना कहीं मुझे एक रहता है, और शायद यही मलाल मुझे जिंदा रखे हुए है, शायद कभी कुछ ऐसा लिख पाऊं
1: जो हसरत साहब जैसा होगा,
0: उनके जैसा हो सकता है
1: जी,
0: लेकिन उनसे बढ़िया नहीं हो सकता।
1: ये एक बहुत अच्छी ख्वाहिश होती है किसी कलाकार की कि मैं उन जैसा बन जाऊं, क्योंकि आपने उनको अपना उस्ताद माना हसरत
0: जी,
1: साहब
0: जी,
1: को।
0: जी, जी, बिल्कुल।
1: बहुत अच्छा लग रहा है आपकी कड़वी सच्चाइयों को सुनकर, है ना सुधाकर जी? तो आगे हम आपसे बात करेंगे, एक गीत सुन लेते हैं पहले।
0: जी, एक गीत मैं आपको ऐसा सुनाना चाहता हूं कि जिस गीत की बहुत अहमियत है मेरी जिंदगी में, और वो गीत है परदेसी बाबू का।
1: जी।
0: क्या है प्यार बताओ ना।

0: सुधाकर जी, बहुत ही सुंदर गीत हमने सुना। आप ही का लिखा वही गीत था?
1: जी, मेरा ही लिखा हुआ।
0: अब अभी मैं ये आपसे तो नहीं पूछना चाह रही हूँ कि ये गीत आपने कैसे लिखा, लेकिन
1: नहीं, आप जरूर पूछिए। हाँ। मैं ये बताना चाहता हूँ ये गीत मुझे मिला कैसे।
0: अच्छा, ये बताना चाहते हैं?
1: जी जी,
0: बताइए।
1: क्योंकि ये मेरे करियर का मैं समझता हूँ सबसे बड़ा गीत था। इससे पहले लगभग मेरे 245 गाने रिकॉर्ड हुए जो बड़े बड़े सिंगरों ने गाए और बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ किए, लेकिन कोई गाना मेरा बाहर नहीं आया।
0: अरे, इतने सारे गाने करने के बाद भी?
1: हाँ, और नहीं आया तो मुझे ये मिला ऐसे कि मुझे आनंद राज आनंद जी मेरे मित्र थे और उनके साथ मेरा काफी आना जाना था, तो मैं हमेशा उनको बोलता था यार मेरे से भी कुछ लिखवा लो। ये गीत मिलने से पहले मैं एस्टैब्लिश्ड डायरेक्टर हो चुका था
0: फिल्मों की
1: लेकिन वो चली नहीं, मैं भी चला नहीं।
0: हाँ।
1: तो लेकिन ये गीत जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मेरे पास उस वक्त 2-व्हीलर था और बारिश हो रही थी, और उस बारिश में ये था कि 50 रुपए मैंने अपनी मिसेज को कहा कि पड़ोस से कहीं से लाओ, वो लेके आई, पेट्रोल डाला और मैं सहारा स्टूडियो आया। और सहारा स्टूडियो में आया तो वहां पे मुझे ये गीत लिखने के लिए मिला। उनके डायरेक्टर, उन्होंने मुझे सिचुएशन बताई और मैंने ये गीत लिखा, और ये गीत लिखा और ये गीत मुझे लगा कि जैसे और

0: जीत नहीं आए, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को कुछ वो नहीं था। तो मुझे बहुत अच्छे पैसे मिले इस गीत के, पहली बार इतने पैसे मिले
1: तो
0: मुझे।
1: हम ये माने कि जो पहला गीत सामने आया दुनिया की वो ये था,
0: नहीं,
1: वो कोई और
0: वो
1: था।
0: कोई और था।
1: जी, बड़ा उलझा हुआ मामला है फिर
0: जी जी जी
1: तो।
0: जी
1: तो बात चल रही थी कि आप हसरत साहब से मिले, आप
0: जी
1: शैलेंद्र जी से भी मिले, शंकर जयकिशन से मिले, तो हमारे मन में ये बात आ रही कि उनके साथ, क्योंकि आप 1973 में आ गए थे और आपने कहा कि लगभग 1978 के आसपास ये सब मुलाकातें शुरू हो गई
0: जी
1: थी, तो
0: जी
1: ये सफर कैसा रहा, किस तरह से आपने फिर गीत लिखना शुरू किया, या इन लोगों के साथ आपने वक्त को कैसे बिताया? इतना आसान
0: देखिए,
1: तो नहीं होता इतने बड़े
0: बहुत
1: लोगों के साथ।
0: बहुत मुश्किल होता है। इस सफर में मेरा अफसोस सिर्फ इतना ही रहा कि मैं शैलेंद्र जी से मिल नहीं पाया। वो उससे पहले उन डेथ हो गई थी उनकी,
1: अच्छा,
0: लेकिन मैं चूंकि उनका फैन था, हसरत साहब में ही मुझे शैलेंद्र जी भी मिल गए और हसरत जयपुरी भी मिल
1: मिल
0: गए।
1: गए।
0: वो मुझे मिल गए और उस उन्हीं दौरान मेरी जो मुलाकात हुई वो पंडित नरेंद्र शर्मा जी से हुई।
1: अच्छा।

0: में मेरा अफसोस सिर्फ इतना ही रहा कि मैं शैलेंद्र जी से मिल नहीं पाया, वो उससे पहले उन डेथ हो गई थी उनकी।
1: अच्छा
0: लेकिन मैं चूंकि उनका फैन था, हसरत साहब में ही मुझे शैलेंद्र जी भी मिल गए और हसरत जयपुरी भी मिल
1: मिल
0: गए,
1: गए।
0: वो मुझे मिल गए। और उस उन्हीं दौरान मेरी जो मुलाकात हुई वो पंडित नरेंद्र शर्मा जी से हुई,
1: अच्छा
0: और पंडित नरेंद्र शर्मा जी और शैलेंद्र जी एक ही गली के राइटर थे।
1: अच्छा
0: वो मतलब उनकी थॉट, उनका सोचना, तो उनसे मेरी काफी मतलब मुलाकातें रही। और हसरत साहब के यहाँ जब मैं जाता था तो हम गीतों को जो डिस्कस करते थे, उनके सिखाने का सबसे अच्छा तरीका ये था कि वो कभी भी मेरे लिखे हुए गीत को रिजेक्ट नहीं करते थे। वो
1: अच्छा
0: कहते थे ये लाइन तुमने लिखी है ना, इसमें तुम क्या कहना चाहते हो, तो मैं बोलता था मैं ये कहना, तो उसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे कर लो, इस लाइन को यहां से निकाल दो, इसकी जगह ये ले आओ, मतलब मेरे ही गीत को वो सुधारते थे। वो कभी उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि ये क्या लिखा है, तो ऐसा मतलब उन्होंने कभी नहीं किया, वो हमेशा मुझे सिखाते थे, मैं करता था। और ये सफर एक ऐसा था कि मुझे एक दिन, मैं रात को पाली हिल पे घूम रहा था और हसरत साहब के यहाँ आने के बाद जो है ना, मेरे को ये था कि सोने का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी जब आना जाना मेरा लगा हुआ था, लेकिन ये मैंने एक झोपड़ा ले लिया था खेरवाड़ी में, और मेरी तब तक शादी भी हो गई थी, तो हम लोग मियाँ बीबी रहते ही थे वहाँ पे। तो वहाँ मेरी मुलाकात बहुत ही मशहूर कॉमेडियन मारुति साहब से हुई।
1: अच्छा
0: तो मारुति साहब जो ना, वो रात का समय था और अपने बरांडे में टहल रहे थे, तो मैंने उनको पहली बार वो टहलते हुए देखा, तो उन्होंने मुझे बुला लिया और मैंने उनसे बातचीत की, और उन्होंने भी वही क्वेश्चन पूछा, क्या करते हो, क्या करना चाहते हो, ये सब। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम कोई गीत सुनाओ, तो मैंने उनको सुना दिया, तो बोले कि तुम कल आओ। तो मैं नेक्स्ट डे पहुंचा, तो उन्होंने कहा बेटा ये गीत वीत तो ठीक है, तुम टेक्निकल कुछ काम करो। मैंने कहा जी वो क्या होता है, बोले कल आओ हम तुमको बताएंगे। और वो मतलब मेरे को अपने साथ उन्होंने रखना शुरू कर दिया, और उनके साथ रहने से क्या है, मेरे को थोड़ा सा इंडस्ट्री का देखने को मौका मिला, और उनके ही द्वारा मुझे किशोर कुमार साहब मिले,
1: अरे वाह।
0: मारुति साहब मुझे वहां लेके गए और वहां उन्होंने मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर बनाया
1: अच्छा
0: जी, और मैं किशोरदा के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर लग गया।
1: क्या बात है। तब तो किशोरदा तो गाने गा ही रहे थे, बहुत
0: वो तो
1: शानदार और
0: उनका
1: लेजेंड से थे वो
0: तो
1: तो।
0: क्या कहना
1: बहुत सुंदर। आगे हम आपसे बात करेंगे, एक
0: जी।
1: गीत सुन लेते हैं पहले।
0: तो मंदाकिनी जी, एक गाना जोड़ी नंबर 1 का टाइटल ट्रैक मुझे सुनाइए
1: चलिए सुनते हैं आपकी
0: जी।
1: पसंद का ये गीत।

0: पर धन।
1: तो मतलब इतना संघर्ष हुआ और संघर्ष के बाद कुछ राहत की सांस आपको तब मिली जब आप किशोरदा से जुड़े।
0: किशोरदा के जुड़ने के बाद मुझे लगा कि अब तो मेरा कुछ ना कुछ हो ही जाएगा।
1: हाँ, क्योंकि एक लंबा जुड़ाव रहा था किशोर कुमार के साथ आपका।
0: जी जी जी।
1: तो उनके साथ काम करने का अनुभव क्या रहा और किस तरह से फिर आपको सफलता मिलनी क्या शुरू हुई इस दौरान?
0: जी जी, मैं किशोरदा के साथ काम करने का मतलब ये हुआ कि मैं उस काम को काम नहीं कहता, एक ऐसी यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिला मुझे जहां सीखना ही सीखना था। वो आपके ऊपर है कि आप क्या सीखना चाहते हो, क्योंकि वो हर विधा में पारंगत थे। लिखना उन्होंने भी सिखाया, उन्होंने डायरेक्शन सिखाई, एडिटिंग सिखाई, उन्होंने कैसे किस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना चाहिए वो सब मैंने वहीं से सीखा।
1: वाला थे किशोर
0: बहुत बहुत और मैं उनको हमेशा साहब बोलता था, आज भी बोलता हूँ। उस घर के बहुत बड़े एहसान है मेरे ऊपर। वहां जाने के बाद ही मुझे लगा कि अब मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा और उसी घर से मुझे पहली डायरेक्शन की पिक्चर भी मिली। वो भी शायद इसी कारण मिली कि मैं उनका असिस्टेंट था तो प्रोड्यूसर ने फेथ किया कि मैं कुछ कर सकता हूँ और पहली फिल्म की डायरेक्शन मुझे वहीं से मिली।
1: जी, तो वो कौन सी फिल्म थी?
0: वो फिल्म थी गोरी।
1: गोरी,
0: और मेरे ये उसी दोस्त ने बनाई थी जो मुझे बंबई लेके आया था।
1: अच्छा।
0: विजय त्यागी।
1: विजय त्यागी,
0: उन्होंने बहुत पैसे कमा लिए थे तो एक दिन बोले चल यार कोई और नहीं तो मैं फिल्म बनाता हूँ, और मुझे उन्होंने डायरेक्टर लिया। और इसमें किशोरदा ने भी गाना गाया और इस पिक्चर को करने के लिए मैं शंकर जी के पास गया और मैंने उनसे कहा कि शंकर जी मैं एक फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें म्यूजिक दें। तो उन्होंने कुछ इतना पहचाना नहीं क्योंकि फासला काफी हो चुका था।
1: हाँ।
0: तो मैंने उनको याद दिलाया कि मैं कौन हूँ। तो बोले अच्छा, जो कल तक हमारे यहाँ नौकरी करता था आज हमको नौकरी पे रखने आया है।
1: अरे।
0: मैंने कहा जी नहीं, मैं कल भी नौकर था आज भी नौकर हूँ, मैं कल भी आपको मालिक समझता था आज भी है, बस ये फिल्म आप करेंगे तो मेरा थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि कितने पैसे लाए हो? अभी हमारी हिम्मत नहीं हुई कि उनसे ये पूछें कि लोगे कितना, कैसे करोगे, ये सब बातें तो हुई नहीं। उन्होंने पूछ लिया कितने लाए हो, तो हमने उनको कहा कि 21,000 है शगुन के, कहीं उनको ऐसा ना लगे कि टोटल इतने ही है। तो हम डरे हुए बहुत थे। तो हमने कहा 1 रुपया और रखो इस पे। तो 1 रुपया रखा, उन दिनों कागज का चलता था। उन्होंने 21 छोड़ के 1 रुपया उठा के हमारी पिक्चर का, इसी में पूरी पिक्चर करूंगा।
1: अरे क्या बात है।
0: और उसी में उन्होंने की।
1: ये होते हैं महान संगीतकार, और उन्होंने समझा आपकी परिस्थिति को और बहुत बड़ी बात। तो उसके बाद उस फिल्म में भी आपको कोई गाना था या केवल डायरेक्शन ही?
0: नहीं, मेरे गाने थे उसमें। मेरा पहला गाना उस फिल्म में मन्ना डे ने गाया था।
1: अच्छा।
0: हाँ, मन्ना डे साहब ने वो गाना गाया था और गाना था दुल्हन सेज है फूलों की, दहेज गमों के खार, दूल्हे का दहेज है जीवन में दुल्हन का सच्चा प्यार।
1: क्या बात है। यहाँ जब बात चल रही है गीत की, तो कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
0: देखिए, आप मेरा एक गीत सुना दीजिए, फिर उस गीत की कहानी मैं आपको बताऊंगा।
1: अच्छा, कौन सा?
0: मेरा वो गीत जिसने मुझे सुधाकर शर्मा बनाया, और पहला गाना जो रिलीज हुआ वो था ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
1: क्या बात है। ये गीत तो हर एक के दिलो दिमाग में है, और अगर कहीं शादी

0: ताकि या किसी फंक्शन में हम जाते हैं तो इस गीत पर तो बहुत सारे डांस क्रिएट किए
1: इस
0: जाते
1: गीत ने मेरी जिंदगी बना दी।
0: अच्छा?
1: मतलब ये गीत पहला गीत था जो मेरा रिलीज हुआ,
0: हाँ,
1: और उसके बाद जो है ना लोगों ने मुझे पहचानना शुरू किया। एक्चुअल में हुआ ये कि हिमेश रेशमिया साहब जो आज के टॉप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, इनके पिताजी मेरे दोस्त थे, विपिन भाई रेशमिया।
0: अच्छा।
1: और एक फिल्म में वो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर भी थे, मैं डायरेक्टर था। तो उन्होंने मेरे को कहा कि यार अभी हिमेश जी सीरियल बना रहे हैं तो आप इनके साथ लग जाइए। मेरे पास उन दिनों कुछ काम वाम था नहीं, क्योंकि उससे पहले मैं डायरेक्टर ये वो सब बन के सब फ्लॉप हो चुका था, एकदम बेकार। मतलब उस लायक था कि अब मैं काम मांगने भी कहाँ जाऊं, क्योंकि लोग, मैं डायरेक्टर बन गया, दो तीन पिक्चरें मैंने कर ली और लेकिन चला नहीं। तो अब शर्मिंदगी भी थी कि मैं काम कहाँ जाऊं। तो मैं हिमेश जी के साथ जो ना उनके जितने सीरियल थे उनके सबके टाइटल मैंने ही लिखे।
0: अच्छा।
1: हाँ, उनके लगभग उन्होंने 40-45 कुछ ऐसे सीरियल उनके थे, लेकिन सबके मैं गाने मैंने लिखे। और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे ढंग से अपने साथ ज्वाइंट किया। हमारा उम्र में बहुत फर्क था।
0: जी।
1: तो एक दिन हिमेश जी बोले कि सर वो क्या है। अब मैंने कहा भाई तुम मुझे सर बोलो, मैं तुमको सर बोलूं, बस इसी में कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये सलमान भाई ने ये गाना हिमेश जी को दिया लिखने के लिए, प्यार किया तो डरना क्या का टाइटल सॉन्ग था।
0: जी जी।
1: और हिमेश जी ने ये गाना मुझे
0: आपको
1: दिया।
0: हाँ।
1: और उन्होंने कहा कि सर ये पिक्चर अगर हमको मिली है, अगर ये गाना आप लिखोगे तो गाना सुपर डुपर हिट होगा और ऐसा होगा वैसा होगा।
0: तो हिमेश जी की ये पहली फिल्म थी?
1: पहली फिल्म थी उनकी, ये पहली फिल्म थी। तो मैंने कहा भाई लिख देंगे, लेकिन एक सवाल है हिमेश इसमें कि प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि जितनी उन्होंने अच्छी लिखी होंगी वो तो सब आ गई, तो हम लोग फंस जाएंगे यार। बोले नहीं नहीं सर, लेकिन वो तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि टाइटल ही वो है। तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। तो उस गाने को हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली,
0: ठीक है,
1: और कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे।
0: हाँ।
1: इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, सेकंड लाइन आप लिखो ही मत, बस इसको हुक लाइन रखेंगे।
0: अच्छा।
1: तो फिर मैंने लिखा तेरे प्यार में डूब गए हम खुद को ही वो जैसा।
0: हाँ।
1: वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम
0: तेरे
1: की,
0: नाम की,
1: और वो ऐसे नाम की चुनरिया ओढ़ी के उसके बाद फिर ये गाना गुलशन जी ने सुना। तो उन्होंने कहा कि एक गाना इस टीम का और ले लो। फिर हमको एक गाना मिला और वो गाना था तुम पे हमें अटके आ रहा दिल भी मारे झटके।
0: क्योंकि तुम वो हटके
1: हटके। तो ये दो गाने मेरे पहले रिलीज हुए और बहुत मजा आया। मैं और हिमेश बहुत नर्वस थे कि पता नहीं गानों का क्या होगा। तो लिबर्टी में हम लोग पिक्चर देखने गए थे।
0: हाँ हाँ।
1: तो हम लोग पिक्चर में इतना इंटरेस्ट नहीं था, हमको इंटरेस्ट था कि अपना गाना कब शुरू होता है। और जैसे ही अपना गाना शुरू हुआ और लोगों ने, मैंने पैसे बरसते हुए पहली बार देखे।
0: अच्छा।
1: अपने गाने पे,
0: क्या बात है।
1: दोनों बहुत खुश हुए और हमें लगा कि अब हमारी लाइफ बन गई। और वाकई में उस गाने ने हमारी लाइफ बन गई।

0: वैसे तो इस फिल्म के संगीतकार साजिद वाजिद साहब थे,
1: इसमें जतिन ललित जी भी थे, साजिद वाजिद भी थे और हिमेश रेशमिया भी थे, दो गाने हिमेश जी
0: और गीतकार भी, अन्य गीतकार भी थे
1: इसमें, समीर साहब भी थे, एक और गीतकार थे और
0: एक आपका
1: मैं भी था। और मुझे लगा कि इतने सब बड़े बड़ों में देखो क्या होगा, लेकिन
0: पर ये गाना तो मतलब आज भी सबकी जुबान पर है और सुनते ही एक अलग किस्म की थ्रिलिंग हो जाती है। इतना खूबसूरत तरीके से आपने लिखा है और हिमेश जी ने उसको संगीत में
1: बहुत सुंदर
0: है। इसमें पिक्चराइजेशन भी बहुत सुंदर है।
1: सबसे बड़ा क्रेडिट इसमें मैं हिमेश जी को ही दूंगा, क्योंकि उन्होंने वो जो प्यार किया तो डरना क्या की ट्यून बना के जो मुझे बचाया सेकेंड लाइन लिखने से, ये बस ऊपर वाले ने उनके दिमाग में डाली, बहुत बारीक काम किया। और हिमेश जी जितना भी काम करते हैं वो बहुत बारीकी में करते हैं और बहुत धैर्य से करते हैं।
0: मुझे एक बात बताइए सुधाकर जी, आपका एक इंटरव्यू सुन रही थी, आपने कहा कि इस गीत में मैंने एक पैंतरा डाला था, मैंने हिमेश जी से कहा था कि इसमें एक पैंतरेबाजी करनी पड़ेगी, तो ये पैंतरा क्या था और किस तरह से आपने इसको निभाया, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे।
1: पैंतरा क्या है कि एक्चुअल में हसरत साहब बोलते थे कि जब कभी ऐसी जगह पे फंस जाओ तो उसमें पैंतरेबाजी से काम लेना चाहिए। वो पैंतरा क्या होता है कि मतलब अब जैसे कि प्यार किया तो डरना क्या कि सेकंड लाइन मैंने नहीं लिखी, तो पैंतरा ये था कि गाने को ऐसी जगह से शुरू करो कि लोगों को ये पता ही नहीं लगे कि कहना क्या चाहते हैं। अब हम कह रहे हैं तेरे प्यार में डूब गए हैं, हम खुद को ही भूल गए हैं, दुनिया चाहे जो, यहां से शुरू हो रहे तो उनको क्या मालूम ये क्या कहने वाले हैं। और ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, जब प्यार किया तो डरना क्या, हिमेश भाई ने इसकी ट्यून बनाई, और जब प्यार किया तो डरना क्या, ओढ़ली डरना क्या के बाद लोग खटके, तो हमने दूसरा ही रंग दे दिया, ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, ये ओढ़ली पैंतरा था।
0: बहुत सुंदर, मतलब एक बहुत बारीक काम था ये, जिसे हर एक को समझना आसान नहीं था। तो जब ये गीत आपने रिकॉर्ड किया, आपने अलका याग्निक और कुमार सानू को इस गीत में गवाया, तो क्या कोई दिक्कतें आपको पेश आई और किस तरह से ये गाना, क्योंकि गाना मिल तो गया लेकिन रिकॉर्ड किस स्थिति में हुआ उसकी भी कहानी होती है।
1: हाँ, ये दिक्कत तो इसमें बहुत बड़ी आई, और दिक्कत सबसे बड़ी ये आई कि हिमेश जी ये चाहते थे कि ये गाना अलका याग्निक और कुमार सानू गाएं, तो चूंकि उनका ये पहला गाना था और उनका ये था कि अगर ये दोनों गाएंगे तो सुपर हिट होगा, तो दादा को लाने में को, मैंने कहा ठीक है मैं लेके आता हूँ, क्योंकि मेरा रिश्ता था, हम लोग काम कर रहे थे, तो मैं गया तो दादा को तो इतना प्रॉब्लम नहीं था, मैंने दादा को बोला दादा एक फिल्म मिली है और उसमें आपको ये गाना गाना है, तो दादा बड़ा वाकई में वो टाइगर ही है,
0: कुमार
1: सानू, हाँ वो

0: बस वही है,
1: जी।
0: वो कभी कुछ बनावटी बातें नहीं करते हैं। उसमें कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ये कुछ नाराज हैं, वो नाराज वाराज भी कुछ नहीं होते, उनको खुद ही नहीं मालूम कि वो क्या उनको बोलना चाहिए और क्या भूल गए। बड़े भोले और बड़े डैशिंग आदमी है। तो मेरे को बोले हाँ ठीक है गा दूंगा गा दूंगा। कौन है म्यूजिक डायरेक्टर? तो मैंने कहा आपने एक दो गाने सीरियल में गाए हैं उसके, हिमेश भाई का म्यूजिक है। हाँ अच्छा अच्छा वो करता है, वो करूंगा करूंगा। प्रॉब्लम आई अलका याग्निक की,
1: अच्छा।
0: उनका अप्रोच नहीं हो पा रहा था। मैं जब भी उनकी बिल्डिंग पे जाता था तो वो ऊपर फोन करके पूछते थे तो वहां से मना हो जाता था, कई कारण रहे होंगे जो भी। तो मैं बड़ा परेशान हुआ, तो मैंने कहा हिमेश भाई बाकी तो सब हो रहा है मगर उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है। तो वो मुलाकात यूं हुई कि मैंने सेम बिल्डिंग में कविता कृष्णमूर्ति रहती थी, तो मैं नेक्स्ट डे गया, मैंने कहा मुझे कविता जी के घर जाना है। तो उन्होंने कविता जी के घर फोन लगाया और उन्होंने कहा भेज दो। अब मैं कविता जी के घर नहीं जाके अलका जी के घर चला गया।
1: अरे यहाँ पर आपने भी पैतरा
0: पैंतरा हो गया।
1: खेला। जी
0: और फिर अलका जी से मेरी बात हुई, अलका जी को मैंने कहा कि ऐसे ऐसे एक गाना आपको गाना है, मुझे जानती थी। तो उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, मैंने उन हिमेश जी का परिचय दिया, ये सब हुआ। तो बोले कि ठीक है लेकिन अभी तो क्या है, मैं थोड़ी बिजी हूं ये है वो। मैंने कहा गाना आपको गाना है और ये गाना कल ही गाना पड़ेगा आपको, वरना ये पिक्चर हमको नहीं मिलेगी और बहुत दिनों से मेरे पास काम वाम नहीं है, तो अभी मिला है। तो बोले नहीं कल तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। मैं चुप हो गया। बोले कल नदीम श्रवण की रिकॉर्डिंग है। मैंने कहा ठीक है। तो मैं क्या गया वहां से निकला, और मैं निकलने से पहले वो गाना उनको कैसेट में लेके गया था, उनको सुनाया, गाना बहुत पसंद आया। तो मुझे लगा गाने के लिए तो रेडी हो गई है, अब ये कल नहीं गा पाएंगी क्योंकि
1: उनकी
0: उनका गाना
1: रिकॉर्डिंग
0: है।
1: है।
0: तो मैं सनी में पहुंचा और सनी में मैं गया तो उधर वो सिटिंग रूम में नदीम और श्रवण जी दोनों बैठे थे। तो मैं बार बार ऐसे उनको झांक के ऐसे हो जाता था, अभी मैं अंदर भी कैसे जाऊं। थोड़ी देर में श्रवण भाई बाहर आए, तो मैंने श्रवण भाई को बोला कि श्रवण भाई एक मेरी छोटी सी मदद कर दो यार, मैं बहुत परेशान हूं। तो उन्होंने तुरंत जेब में हाथ डाल के पर्स निकाला,
1: अरे
0: बहुत बढ़िया इंसान थे वो। मैंने कहा भाई ये वाली मदद नहीं।
1: अच्छा।
0: हाँ क्या हुआ क्या हुआ? मैंने कहा ये वाली मदद नहीं, मदद ये चाहिए कि हमको एक पिक्चर मिली है और उस पिक्चर में एक गाना है, वो गाना हम अलका जी से गवाना चाहते हैं। तो अगर वो कल गाएंगी तो पिक्चर हमको मिलेगी, अदरवाइज वो नहीं मिलेगी। हाँ तो फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा नहीं मैं अलका जी से बात हुई, वो आपका गाना गा रही है इसलिए हमारा गाना नहीं गा
1: नहीं
0: सकती।
1: गा पाएंगे।
0: तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मेरे सामने ही अलका जी को कहा फोन करके कि ये सुधाकर जो है ये मेरा खास है, और कोई बात नहीं आप मेरा गाना 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद कभी भी गा दो, पहले इनका गा दो।
1: क्या बात है।
0: ये दिक्कत थी। लेकिन जब ये गाना एम्पायर में रिकॉर्ड हुआ और वो पल आया कि इन दोनों शहंशाहों ने गाया, और एक इसमें एक बात आ गई, मैं ये भूल गया कि मुझे ठीक से किसी ने बताया नहीं था कि इसमें काजोल हीरोइन है। तो मैंने हिमेश भाई को पूछा यार हिमेश भाई इसमें हीरोइन कौन है? तो उसने कहा सर काजोल। मैंने कहा यार गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? हमने कहा यार काजोल के लिए तो इसमें कोई लाइन ही नहीं है। क्या मतलब? मैंने कहा वो अब मैं क्या बताऊं आपको सर, ये एक बार कुमार शानू को बुलाना पड़ेगा। बोले लेकिन हुआ क्या है? हमने कहा वो एक लाइन में काजोल के लिए लिखना चाहता हूं, खासकर काजोल की आंखें जो है ना वो बड़ी कमाल हैं, और वो जो बातें करती है, जो जितनी
1: आंखें
0: बातें
1: बोलती
0: करती
1: हैं।
0: है सिर्फ उसकी आंखें बोलती हैं, बाकी सब तो ठीक है। और वो बात मैं कह नहीं पाया लेकिन मैं कह दूंगा। तो बोला ठीक है बुलाओ फिर आप ही बुलाओ। तो मैंने शानुदा को फोन किया, शानुदा शायद बर्थडे मना रहे थे अपना था या किसी और का मुझे याद नहीं। मैंने कहा शानुदा इधर भी एक पैंतरा चला। मैंने कहा शानुदा एक्चुअल में जो लाइन गाने में प्रोड्यूसर ने पसंद की थी वो मैं आपको लिखवाना भूल गया, और जो रिजेक्ट थी वो आपने गा दी, और ये तो गड़बड़ हो जाएगी, तो आप प्लीज आके वो लाइन सही कर दीजिए। अरे यार मैं बर्थडे में हूं, सब चमकी उमकी पड़ी है कोर्ट पे, मेरा ये हाल है। मैंने कहा दादा गाना तभी लगेगा जब वो लाइन होगी। दादा आए,
1: अच्छा, दो
0: दादा
1: लाइन के लिए दिया है।
0: एक ही लाइन थी,
1: अच्छा
0: दो तो मैंने बोली, लाइन तो एक ही थी।
1: जी।
0: और वो आए और आते ही थोड़े से जरा

0: प्यार में नाराजगी होती ना, हाँ यार तो बोल बोल कौन सी लाइन है, क्या है ये? हमने कहा सर ये मेरी लाइन है वो तौबा तौबा, ये आंखें करती हैं सौ सौ बातें।
1: अच्छा जी।
0: तो वो मेरे को हंसने लगा, बोला तेरा नाटक है, तूने अभी सोचा होगा ये। मैं कुछ बोला ही नहीं और उन्होंने वो लाइन गाई और वो गाने में सबसे अच्छी लाइन,
1: बहुत सुंदर थी। और काजोल की आंखें जब एकदम हाईलाइट होती हैं उस गाने में, और सलमान गाते हैं, बहुत प्यारा लगता है, बहुत सुंदर।

0: कहने का ये हुआ सुधाकर जी कि एक गीत को बनवाने में इतनी मशक्कत आपको करनी पड़ी, कहाँ कहाँ आपको जाना पड़ा, तो जो आज नए गीतकार आने वाले हैं उनको भी ये सबक मिलता है कि इतना आसान नहीं है कुछ नहीं करना, है ना, कि हमने लिख लिया और हम गीतकार कहला गए, उसके पीछे कितनी संघर्ष की कहानी है।
1: संघर्ष की कहानी मतलब यह होता है कि अगर चूंकि मैं डायरेक्टर रह चुका था, मैं ये सब कर चुका था, मैं लाइन में मतलब नया नहीं था ना, तो मुझे वो मालूम था कि जो ये म्यूजिक डायरेक्टर जो चाह रहे हैं अगर ये फुलफिल होगा तो गाना और खिल के आएगा, और वो चूंकि नए थे तो मैं वो सब कर सकता था। तो कभी भी कोई भी गाना सिर्फ कागज पे हिट नहीं होता है,
0: बिल्कुल,
1: उसके बहुत सी उसमें जो चीजें हमको डालनी होती हैं वो हम डालते हैं।
0: बिल्कुल, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप गीत लिखते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसके लिए गीत लिख रहे हैं, सिचुएशन क्या है।
1: हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस फिल्म का हीरो कौन है,
0: हाँ,
1: हीरोइन कौन है, ये गाना क्यों गाया जा रहा है, ये गाना गाते वक्त जो है ना इनकी सिचुएशन क्या है, और इस फिल्म का जो डायरेक्टर है उसका मिजाज क्या है, वो किस तरह के गाने पसंद करता है, तब हम उस रंग में जा सकते हैं।
0: मतलब आपके लिए किसी किरदार और सिचुएशन को जानना बहुत जरूरी
1: बहुत
0: है,
1: जरूरी
0: तब जाके
1: है।
0: शब्दों का चयन आप करेंगे। आपने एक उदाहरण दिया था कि गणेशा पर जो आपने
1: जी, जी, जी,
0: बनाई है, तो
1: जी,
0: वो बच्चा कॉन्वेंट स्कूल
1: कॉन्वेंट
0: का है,
1: स्कूल का है, इसलिए मैंने उसमें कर दिया कि ओ माय फ्रेंड गणेशा। अगर वो लड़का कॉन्वेंट में नहीं होता तो वो गणेशा को फ्रेंड नहीं कह सकता, और वो फ्रेंड जो है ना इतना हिट हुआ कि उसकी तीनों चारों सीरीज मैंने ही लिखी।
0: बिल्कुल,
1: तो ये क्या होता है कि हम किरदार क्या है हमारा, वो क्या कह रहा है, कितनी बात कर रहा है, तो उससे हमें क्लू मिलता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं।
0: जी,
1: अभी जैसे प्यार किया तो डरना क्या में ही, जब दूसरा गाना हमको मिला तो अब वो गाना लिखना था हमको कि उसमें गाना डालना है और उसमें भैया भी होना चाहिए। तो मैं और हिमेश भाई ये थे कि यार गाना तो ठीक है, भैया क्या करेगा इसमें। तो मेरे को उन्होंने कहानी बताई कि भाई ऐसा है, अरबाज भाई वो रोल कर रहे हैं, तो वो उनकी भाई कुछ कहानी है, वो बहन को ऐसा चाहते हैं, ये प्यार करता, तो हमने कहा ठीक है। तो वो गाना हुआ तुम पे हमें अटके आ रहा दिल भी मारे झटके, तो अब झट ये तो गाना हो गया, अब भैया की एंट्री कैसे होगी।
0: हाँ हाँ
1: तो मेरे को एक जहन में बात आई कि देखिए जब कोई लड़का लड़की आपस में मिलते हैं, भले वो सच्चे मन से प्यार कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, भाई को अगर पहली बार पता लगेगा और उसे उसे लगेगा कि ये मेरी बहन की तरफ बढ़ रहा है तो वो खटकेगा जरूर।
0: जी,
1: भले बाद में उसको
0: जी,
1: पता लगे कि ये मेरी बहन की सच्चाई है,
0: हाँ, हाँ।
1: लेकिन पहला उसका जो
0: रिएक्शन आएगा
1: तो मेरी वो लाइन आ गई, बच के रहना प्यार में तुमको पड़ जाए ना फटके और भैया को तू खटके।
0: हाँ, अच्छा।
1: और ये गाना कंप्लीट हुआ।
0: जी जी,
1: ये दो गाने मेरे सुपर डुपर हिट
0: जी,
1: हुए
0: जी।
2: तुम पर हम हैं अटके यारा दिल भी मारे झटके, हो क्योंकि तुम हो।

आप सुन रहे थे जाने माने गीतकार सुधाकर शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। तकनीकी सहायक भावना सिंदल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति,

0: महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन।
1: कोई बोले राम राम,
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: अभियान। निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बोल बोल के थक गया।
4: क्या हुआ?
3: नया किडबैग चाहिए।
4: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
4: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक, फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर।
3: चले
4: ले, आ गया ना गिड बैग।
5: RBI कहता है
0: पहले अपना बैंक, फिर RBI ओम्बुड्समैन।
6: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सब से जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को है। इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती हैं। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हैं। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों, जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान

मेड इन इंडिया है और C295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने डीआरडीओ ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको डीआरडीओ की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है, यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों, जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी और यह कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की यह ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है और इस जन भागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो।

लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहां नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपये का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम, यानि केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है, 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11,00,000 परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है। हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है। और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती। और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है। उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को

स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हर गिला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हर गिला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है, जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं, जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है। और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए AI इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्व

महत्वपूर्ण है। लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए, नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य गढ़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत, संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और आध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, स्त्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्मा शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है।

खूबसूरत नज़ारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये है मेघालय के रूट ब्रिज, रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या

को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती हैं। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती हैं। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा, इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे, लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया। ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको ब्रिक्स का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में
अभी काफी

0: में बाकी है, लेकिन लोगों ने यह आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो, वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदें। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती हैं। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं, हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए, अपने विचार और अपने सुझाव भेजते रहिए। हो सकता है आपके आसपास की कोई छोटी सी पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाए। अगले महीने हम फिर मिलेंगे, देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और हाँ, जल संचय तो करना ही करना है, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: আকাশবাণী আগরতলা, এতক্ষণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী মন কি বাত অনুষ্ঠানে দেশবাসীর সঙ্গে তার মনের কথা ভাগ করে নিলেন। অনুষ্ঠানটি দিল্লি কেন্দ্র থেকে রিলে করে শোনানো হল। আমাদের অনুষ্ঠান একযোগে প্রচারিত হচ্ছে আকাশবাণী আগরতলা, আকাশবাণী বিলোনিয়া, আকাশবাণী কৈলাসহর, FM উজ্জয়ন্ত এবং রাজ্যের সবকটি রিলে কেন্দ্র থেকে। এখন শুনবেন

जे रांगनी बियालो कलायो आबुनो नुका आनुखुं अबहाय जराव किसिसा या खलकमानो कतर चुबामु अंगानौ किसिंसं हाफां हाथर गनांगै रजाक रजांग नुखुंगो साखनै मथांनि चुबामुं रुइ दङ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना विशिंगते विशाव खग नईची प्रीमियम रमानी विशिंगते खग नईची रासाय जरा लाहार देरामंग इन्सुरेंस रंग रजाको तबसा जरा खरग बाचीचार रजाकनी गबां बरग अतांग बतांग गदालखा आरो नि बिसिंग खरग नईचीचार रजाक बरग अंखाचीनी आमा ताय हानक ताय बुखुकसं तबसा जरा लेखामारी मानमानो रगै अतांग बतांगनि बिसिंते देराजां नुखुं रक्नो खक थामसाय सिनिरा रजाक रां सुबामुं रजाखा किसिंसं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बो आसंग नांखुमानी अतांग बतांगनि बिसिंग खबजाक जेसा बरक फानो थैके नुखुंग रां खक नै रासाय नि रां चुबा जागौ अबनि बिसिं रांमारी इंखा खक ब्रैरा थामचि दग सालक खक्सा मासानि सोलायबो गिसा ताबुसुक जरा खरग नैचि सिनि रोजाकनि गोबां बरक अतांग बुतांग बाय गदालखा अतांग बुतांनि बिसिंग हाथर गोनांगै ओंया हमफानो खुंसिसा रासाय नुखुंनि खक नैचि नै साय रोजाक रां सबामुं रोजाखा अ बांमारि बेलायनो गोबां अबरकनि उख्लुगो तंग रासाय रासाय नुखुंनि जुदा जुदा कथमा कुनु खेबा बुमा बसारकन परिरुइ त्लांग ना बागै सबामुं मानखा बाक्साखे बिहि नुखुं नायकलमानि सबामुं मानखा किसिंसं जरा जराव किसा रांताय चिकुनसा सामुंनि बिसिंतैन कतर नायमथां चेंसाजागै मानो अबहाय चिकुनसा ककसामानिबो कतर सलाइमुं तुबुइ मानो आं नरक जतन अ तां बतांनो तै निनि नुखुंनि बरक रक्न सायमान रना बागै कबक जाव आनि खापंनि हातनि लुकरक मन की बात चिं ताबुक अबुतै दालनि कखनो सालायनाय अब बिसि साय साय गजामताय बरक हदा बाय गदुक गदुक बिसि रमै कथुखे गोरोंजाक अबंखा मोना कुइतु जाया खा काकमानि सिमिनैया अब किरिमुं बतुबो ताय जेफुरु किरिमा बरकनि बखानो तैदुलो आफुरु बररक कबैन नुगुइ मानिया मोना कुइतु बाय कबलजाक बररक सैलाम सावि मानिया अबति ककसाब नाहारो अब बेलायनो हामिया ओंखारि तुबु अब बाय बाक्सा हदव अबहाय बरकबो तंग जेरक सयसि नुकमानि ताय सय फुनुकमारिनि बिसिंते आ हामिया पैतुनो केबेंगो मोना कुइतुनि सिमि सय पैतुनि लामाव सकफायनानि कलाइया ताय आंतिनि नरकन अबतै ओंखारि काहाम हिमुंनि ककनन सानाय किसिंसं आसाम दालसा तक तंग आ तकनि मुं ओंखा हरगिला हरगिला बेलाय किसा दालनि तक हाबनो साफ खलायथानि अ तकनि नांखुमा गदाल मुं तंग फिया सालकदोंमा रमै आसामाव आ तकनो किसासोग आमचाय नुकमाया तक नैनाय वानसुगुइ फाइजागो लुकर आ तकनो बरकनि साम नुकनानि मुसुंजाग्या कुनु फुरो हरगिला तक बथप थुपमानि बफांनो फानो तामफायखिबिजागो वानसुगुइ नायला जे तक हाबार साफ खलायथानि काहामारि तनिव आ हरगिला नोनो लुकर किरिमासा जागबायो आजरा बायोलजिस्ट पूर्णिमा देवी बर्मननि मखलक लायखा बलुकरकनि बोखाव हाबजाक साया वानसुमानो सकमानानै समाय तांखा ब ब्रिरक बाय ककसाखा ब लुकरकन सयसि लामानतै बुजिरनानि साखथारखा त्रक त्रखे ब्रिरक आ तांबोतांगब गदा लायनानि चेंखा आबुनि उल कतर सलाय जाकमुं सकबायखा जेतकनो जरा कायसव हामिया होनै रिफिक जागो ताबुक आबुनो कामिनि सिनिमुं नानि चेंखा गोबांमा कामिनि ब्रैरक हरगिलानो मोथांना बागै सोखाङै फायखा ताबुक बरकन हरगिला आर्मि होनै सिनि जागो आ ब्रैरक हदाबाय बातायनानि नांखा

बदानो सिसारेर ना बागै साल हर सामुं तांखा ताय मना कुइतुनो ओक्लग खिबिबोय काबुखा बरो खुनुखा जेफ्रो सयलाम तुनसाय मानखे बेलाय गजाम वानसुमुं नबोसलाय मानो किसिंस आं जेफ्रफानो छाव जे थंगो बिनि सागबो गाहाम दङ दाबो हाखतर अबहाय सिखलारंनि बांमारि बेलाय कदखे बाङै दङ जेरक थंगो बरकनि सागबो गाहाम दङ सेखांनि बाय सुसाखे ताबु तायबो गोबांखे सिखलारक थमंगो बिनि केरियार खालायना होनैनै नाहारै दङ आं नागालेन्डनि अमहाय कायनै साखथारमानि कखनो खोनाका अब बेलायनो खोनाथक पुलियानि साखथारमा ओंखा नागालेन्ड बेबिलिक बमुं खोनाय नरक वानसुखना बेलाय चेरायरकनि मुंसासो लिग ओंखाना फिया अबहाया अब बिसिबानि सिमि बिसि सि चिनै बिसिनि चेराय चिकन चिकन खुमनो कसल चेरायरकनि कायसा नायथक लिगसे तै उक्ति वार्ना बागै बरकनो खाबु बासोर जागो तै बरकनि सिनिमुंबो सोनाम जागो अबनि चेंमानि ओंखा नागालेन्डनि गोबांनि सलाय गोबां चेरायरकनि फुटबल थुंमुंनि थानि गोदाल रोनानि बागै बिसिबानि सिमि बिसि चिनै अमनि जलाते बोरै बोसा आरो मानजागै मानो आलिग ताबुक बिसि थामो यापिरि रोखा आलिग अ थुंमुंनि चेरायरकनि खाव बेलाय काहाम मारि पिनजाकमा नुकजाखा किसिंसं नागालेन्डो ते कायसा काहाम साखथारमुं ओङै दङ आबुनि बुमुं ओंखा नागालेन्ड उमेन फाटसाल लीग ओङै मानो निनि बागै फाटसाल कायसा गोतालमुं आंनो न' सावो फाटसालनो इन्दोर फुटबलबो होनजागौ आरो किसा बदल खरकबाखे थोङै दङ थोंखलाबो फुटबल थोंखलाहाय कतरिया बनि सेलाय बेलाय चिकन आबुनि बागै थोंनारो बेलाय कदखे वानसुंना नांगौ बबिनि टेकनिक तै स्किनो बेलाय काहामखे सामुंगो थेफाना नांगौ नागालेन्डनि उमेन फाटसाल लीग चिनि साजोग्रंनि बायथोंनि उक्तिनो फुनुंना बागै काहाम जरा रै दङ आं अबुतै सामुंनि बागै नागालेन्डनि लुकरंनो बरम रुओ अबुतै साखथारमुं हानि गुबुनि बोखागबो खाबासारिओ किसिंसं ताबुक तांसिबनि जरासि सालब्रुमनो कायसा कायसा गोताल आमजुमुं एबाखे नायथुमुं ओङै दङ गोताल गोताल ए आइ इनभेनसन सिनि बोसखांग फाय दङ अजारव कतरमा सोंमुं कासावो लुकरकनि क्रिएटिभिटिनो बाहायखे मोथाङै तनिनाय तांसेब गोताल बाय सोखाङै तंमानि जरव चिनि सिरिसिटिनो जों बाहायखे रमै नारखनाय असोंमुं रकनि सासामुंनो नायथुगुइ कारिखा नालान्दा विश्वविद्यालय साय साय बिसि सेकांनि नालान्दा विश्वविद्यालय ताबुनि गोताल तांसेबबाय भारतनि तालिखानो सोनामै दङ बिसिंनि सेकां आं नालान्दा विश्वविद्यालयनि केम्पास गोतालनो जेंगै रोनानै सेब मानखा नालान्दा विश्वविद्यालयनि फोरोंमुंबाय सिनि सिरि सिटिनो हुकुमो मकुमो तेवसा गोथां ओङै बासाखा सयसिलाम बिनि कक नारकनानि लामा सिमिया अब कक सालायमुंनि रायदाबाय रोगजा कायसा तांबोतां अरब गबैबाय जुक्ति रुयिनै बायथांनि कक सानानि बेलाय नांखुगौ तै अदिखल' बायथां सुगजाक ओंनान नांखुगौ बुनि ककनो खा रुयै खोनानानै तै बुजिनानै सोरोंमुंबो अ फिलसफिनि एलेमथैनो फोरोंजागौ आं बेलाय खा तंथगौ नालन्दा विश्वविद्यालय रायदानो बरकनि मुकुमु बोलाय याफरमानि पान्डाव खपका अरो मानजाखनाय गोबां कुकनो बुहारनि परिनायर कायसा बेलाहाय गोजाम सिरिसिटिन रायदानो सोरोंनानि बबाय गोदालनानि सायथमुं बेलाय बलायजाखनाय आं अबनि बागै नालन्दा विश्वविद्यालयनो बेलाय बेलाय हामबायाफर आं हाक्तनि गुबुन विश्वविद्यालय रकनबो गयनामु सुंगो बर' अबनतै वानसुंना बागै किसिंसं सिखला रकनो बायथांनि सिरि सिटिनि रायदाबाय गोदाल रुबै तांसेब गोतालनि बागैने चुगजा खालाय तिसाना फायसिं ते कायसा खा सोरांजाखनाय लाम रमजाखा दिल्लीनि सेन्ट्रेल संस्कृत इउनिभार्सिटिआव आर्टिफिसियेल इन्टेलिजेन्स ताय डाटा साइन्सनो

0: শ্রোতা বন্ধুরা, এখন আপনাদেরকে রিলে করে শোনানো হবে দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হিন্দি সংবাদ। এবং সংবাদের পরেই 1:05 আবারও আমরা আপনাদেরকে নিয়ে ফিরে আসবো হ্যালো অনুরোধ অনুষ্ঠানে। সবাই অনুষ্ঠানে আমাদের সঙ্গে থাকবেন, আশা করি যাবেন না কোথাও। আমরা এবারে নিয়ে যাচ্ছি দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হিন্দি সংবাদ শুনবার জন্য আপনাদেরকে।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जून के महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
2: एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण किया गया। ये तीनों युद्धपोत डिजाइन से लेकर निर्माण तक पूरी तरह से स्वदेशी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जून के महीने में ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने जमीन से हमले के लिए लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि भारत समुद्र से लेकर आकाश तक लगातार अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की, जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार ये आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
2: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
2: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मना

0: में से बचे, लोगों से कार पूलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता जारी है। दोनों नेता भारत सेशल्स संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इससे पहले स्टेट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान है। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। इधर बेलफास्ट में पुरुष टी20 क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: হিন্দি সংবাদ রিলে করে শোনানো হলো আকাশবাণীর দিল্লি কেন্দ্র থেকে। আকাশবাণী কৈলাসহর। শ্রোতা বন্ধুরা, আমরা আবারও ফিরে এলাম হ্যালো অনুরোধ অনুষ্ঠানে। আমরা শোনাচ্ছি আপনাদের পছন্দের হিন্দি ছবির গান। এবারে দেখা যাক কোন শ্রোতা বন্ধু আমাদের সঙ্গে আছেন। হ্যালো,
3: হ্যালো,
2: বলুন।
3: নমস্তে।
2: हाँ नमस्कार, क्या बोल छिन?
3: मैं सतीश बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से।
2: सतीश?
3: हाँ सतीश। और सिगरेट कोड है सुख, आदमी सुखी है जैसे वो सिगरेट कोड चुका है।
2: की सुना बोल के की गान सुन बे की गान सुन बे नाच के
3: आज कुरुक्षेत्र फिल्म का सुनवा दीजिए, घांगरा वाला।
2: घांगरा?
3: दीवाने का सुनवा दी, कयामत कयामत।
2: कयामत कयामत,
3: हाँ दीवाने फिल्म है, दीवाने।
2: अच्छा देखछि आमी।
3: आपसे मेरी पहली बार बात हुई, ईपी से बात कर रहा हूँ सतीश।
2: अच्छा कौन जगह थे के जने बोल छिलें आपने?
3: ईपी।
2: यूपी? अच्छा हाँ उत्तर
3: कानपुर। कानपुर?
2: अच्छा अच्छा कानपुर थे के बोल छिलें।
3: मिल गया गाना?
2: আমি দেখছি দিবানা ছবির যে গানটা আপনি বলছেন, আমি দেখছি এটা সেই গান কিনা। দেখছি আমি, খুঁজে দেখছি। হ্যাঁ আমি পাঠাচ্ছি আপনার জন্য, পাঠাচ্ছি আমি, পাঠাচ্ছি গান, পাঠাচ্ছি আপনি শুনতে থাকুন, পাঠাচ্ছি আমি গান। আপনি যে দ্বিতীয় পছন্দ বললেন দিওয়ানা ছবি থেকে সেটাই পাঠাচ্ছি। হ্যাঁ
3: মিলে গিয়ে গানা কে আমাদের
2: অলকা ইয়াগনিক এবং সুখবিন্দর সিং গিয়েছেন এটা।
3: হ্যাঁ হ্যাঁ।

0: saw the entire world join hands with India's efforts. He mentioned the World Yogasan Championship held in Ahmedabad, where India won a total of 114 medals in this event, including 102 gold. Prime Minister Modi stated that the power of public participation in nation building is a tremendous asset for India. He said this public participation was seen again after he urged countrymen on a few points in view of the prevailing warlike situation in West Asia.
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पूलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: Mr. Modi also cited the example of the Petkar family in Nanded, Maharashtra, who arranged accident insurance for approximately 3,500 villagers. Each individual was provided with an insurance cover of 1 lakh rupees. The Prime Minister shared that the government is extending this protective shield to crores of families across the country.
1: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
0: In this episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Modi also touched upon the subject of superstition. He noted that superstition has been deeply ingrained in human society for millennia. Mr. Modi shared how the rare Hargela bird found in Assam was considered inauspicious in certain parts of the state. The Prime Minister stated that it was during that time that biologist Purnima Devi Barman resolved to change the misconceptions deeply rooted in people's minds.
1: हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे।
0: Touching upon the topic of sports, Prime Minister Modi expressed happiness that the number of young people in the country who are both playing sports is rapidly growing. In today's Mann Ki Baat, Prime Minister Modi also spoke about preserving people's creativity in the age of technology and AI. He said Nalanda University has found a solution to this and is now shaping India's destiny in a new avatar.
1: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।
0: Mr. Modi highlighted other significant efforts are underway to prepare the youth for new technology while keeping them rooted in their heritage. The Central Sanskrit University in Delhi is launching a B.Tech program in artificial intelligence and data science. Prime Minister Modi expressed happiness that Indian culture is reaching various corners of the globe today. He spoke of an initiative in the Dominican Republic, which has an Indian population of around 100.
1: कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहाँ हो रहा है। वहाँ स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है।
0: The Prime Minister mentioned Meghalaya's root bridges, saying these root bridges take decades to take shape. He shared that India has

0: এতক্ষণ নজরুল গীতি শুনছিলেন সুস্মিতা গোস্বামীর কণ্ঠে, আকাশবাণী কৈলা সফর।
1: विविध भारती से बोल रही हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मनचाहे गीत।
1: मनचाहे गीत चाहेगी।
0: मनचाहे गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियां एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहां है?
1: कार्यक्रम मनचाहे गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: तो इस कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गीत हम आप सबकी पसंद पर सुनवा रहे हैं। सुनने वाले हैं भोपाल से श्रवण सिंह गिन्नारे, गौरव सौरभ रेखा शेर सिंह गिन्नारे, और ये हैं तेलंगाना राजन्ना सिरसिल्ला जिला विलास सागर गांव से गंगाधर श्रीनिवास, लक्ष्मी प्रसन्ना, मनस्विनी चंद्रैया, मल्लवा लावण्या, रेवंत महेश्विन, श्रीनु सुजाता, ग्रीष्मा दीपक, रमेश कनक, लक्ष्मी श्रीजा, साई कुमार और सुषमा। और ये खत हमें मिला है हथबंद करेली से भाई रामाधार ध्रुव, संजय कुमार ध्रुव और संजू कुमार का। आप सभी सुनना चाहते हैं शैलेंद्र सिंह की आवाज में फिल्म तराना का ये गीत।

अगला गीत सुनना चाहते हैं गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला, विशाल, निशा और इनके परिवार वाले। आप हैं समाना मंडी पंजाब से अश्विनी कुमार वर्मा, श्रीमती सुनीता वर्मा, अर्पणा और विकास वर्मा। ये खत हमें मिला है सिमगा छत्तीसगढ़ से श्रीमती सविता जैन, प्रदीप जैन और उनके साथियों का। आपसे भी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर को फिल्म चंपा कली में। गीत रचना राजेंद्र कृष्ण की है और तर्ज हेमंत कुमार की।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था चंपा कली। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला गीत सुनने के आप सभी ख्वाहिशमंद हैं। ये है सिमगा छत्तीसगढ़ से पुष्कर भोसले और इनके परिवार वाले, जवाहरगंज जबलपुर से जिनेंद्र जैन और इनके परिवार वालों ने ये खत लिखा है। ये लिखने वाले हैं हमारे ग्राम दरचूरा से ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा और मोतीलाल साहू। आप सभी सुनना चाहते हैं मुकेश की आवाज। फिल्म का नाम है सहेली। गीतकार हैं इंदिवर और संगीतकार हैं कल्याण जी, आनंद जी।

मनचाहे गीत कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज है। फिल्म का नाम है अनोखी रात। इस गीत को इंदिवर ने लिखा है और धुन रोशन की है। सुनने के लिए आप सभी ने हमें फरमाइश भेजी। आप हैं राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत राज, मधु राजावत और राशि रक्षित। इसी गाने को सुनना चाहते हैं। आप हैं महाराष्ट्र से विनोद कुमार अढ़िया, भारती अढ़िया, पारस, उर्वी बेन अढ़िया और इनके परिवार वाली। इसी गीत को सुनने के लिए आपने भी हमें खत लिखा है। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, वीना देवी आर्य, प्रतीक आर्य और ये हैं छत्तीसगढ़ से डॉक्टर प्रदीप, देवेंद्र और उनके साथी। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर को फिल्म अनोखी रात में।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत आप सबकी पसंद पर। आप हैं गांव टुकिया तहसील सिणधरी जिला बालोतरा राजस्थान से कृष्ण कुमार ढाबी और उनके परिवार वाले। अंबेडकर चौक खुरई से ये खत हमें लिखा है राम सखी, परमानंद सौरभ, गौरव, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरन रोहित, छोटू डुंडुन और इनके परिवार वालों ने। और ये है वरुण जौलका से महेंद्र सरकटे, विजया सरकटे और मिलिंद। आप सभी सुनिएगे लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म कटी पतंग का गीत सुनना चाहते हैं। आनंद बख्शी के बोल हैं और राहुल देव बर्मन की धुन।

आनंद बख्शी के बोल, मोहम्मद रफी की आवाज और फिल्म का नाम सूरज और चंदा। सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखे। बाबुल गांव पातुर से प्रकाश पाटिल, अलका पाटिल, दीप्ति, तृप्ति, यशोदीप और उनके परिवार वालों ने ये खत हमें लिखा है। आप हैं अमरावती कल्याण नगर से रमेश किल्लेकर, शकुंतला किल्लेकर, आराध्या किल्लेकर और माही किल्लेकर का। आइए आप सभी सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म सूरज और चंदा का ये गीत।

0: इस गाने के साथ ही आज का मनचाही गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आपकी सेवा में पेश किया आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी ने।
1: मनचाही गीत।
2: मनचाही गीत।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। आज इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं नाटक कटीला रास्ता का दूसरा एवं अंतिम भाग। ये नित्यमूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नैत्य पाते का हिंदी रेडियो रूपांतर है। रूपांतर किया है डी शौर्य राजन ने और इसके निर्देशक हैं वीपी दीक्षित भट्टो। तो आइए सुनते हैं नाटक कटीला रास्ता, इस नाटक का दूसरा एवं अंतिम भाग।
1: मैं बहुत बदनसीब लड़की हूँ डॉक्टर साहब।
2: तुम क्यों दिल छोटा कर रही हो?
1: मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ झेलनी पड़ रही है। आपके मामा जी छाती के दर्द से बेचैन थे, उसी के शिकार हो गए। मेरे झंझट में आप उनकी भी देखभाल नहीं कर पाई।
2: उनके रोग का इलाज इस गांव में नहीं था। मैंने भरसक कोशिश की पर क्या किया जाए, उनकी अवधि पूरी हो चुकी थी।
1: वे देखते ही देखते चले गए डॉक्टर साहब।
2: एक बात मैं उनसे कह नहीं सकी। कहना तो चाहा था, कितने में ही चुड़ैल नागमणि आकर मुझे ले गई।
1: वो क्या बात थी डॉक्टर साहब?
2: अगर मैं मर्द होती
1: तो फिर
2: शकुंतला से शादी कर उसे नया जीवन देती, यही कहना चाह रही थी मैं।
1: आप बहुत महान हैं डॉक्टर साहब। मैं बेखबर सो रही थी, जब अचानक मेरी नींद खुली तो मैंने आपके बारे में पूछा। इस जानम्मा से पता चला कि नागमणि डाइन आकर आपको ले गई है।
3: और तभी शकुंतला तुरंत चिल्ला उठी, नागमणि तो काली सापन है, भयानक सापन है।
1: ये सुनते ही मामा जी बहुत चिंतित हो उठे थे, उनको थक्का सा लगा। आप ही की फिक्र में वे छटपटाते हुए दम तोड़ गए।
2: उनको यही खबर जानलेवा साबित हुई। इस थक्के को सहने की ताकत उनमें नहीं थी, लेकिन मैं डॉक्टर होकर इतनी नाजुक दिल नहीं हो सकती। खैर, जो हुआ सो हुआ। सुनो जानम्मा।
3: जी डॉक्टर साहब, क्या बात है?
2: अल्लाह बख्श नहीं आया तक?
3: आते ही होंगे।
2: देखो शकुंतला
1: जी,
2: तुम अब पूरी तरह स्वस्थ हो गई हो, अब आगे भी काम जल्दी जल्दी होने हैं। और देखो, तुम्हें बेहिचक गवाही देनी होगी।
1: डॉक्टर साहब, मैं कैसे भरी अदालत में गवाही दे सकूंगी? डॉक्टर साहब, मेरी जिंदगी का क्या होगा? मेरे भरोसे और मेरे मोहताज बनकर जी रहे मेरे परिवार की इज्जत का भी तो सवाल है।
2: शकुंतला, कैसी बातें कर रही हो तुम? उस दर्दनाक दिन की याद करो, बारिश की शाम को तुम पर जो वहशियाना जुल्म हो उसका बदला।
1: मेहरबानी करके उस घटना की याद न दिलाइए डॉक्टर साहब। मैं उस घिनौने धब्बे को धो डालना चाहती हूँ, आप उसे समाज के सामने मत आने दीजिए।
2: शकुंतला, इस तरह तुम ये साबित कर रही हो कि तुम भी औसत मामूली लड़कियों में ही हो।
1: माफ कीजिए डॉक्टर साहब, मैं जीना चाहती हूँ, मुझे आराम से जिंदगी गुजारनी है।
2: शकुंतला, आगे बढ़े कदम को पीछे हटा लेना मेरे बूते की बात नहीं है। तुम निसंकोच सच्चा बयान देने को तैयार रहो।
3: शकुंतला बेटी, जरा सोच समझ कर आगे बढ़ो। डॉक्टर साहब तुम्हारी भलाई की ही बातें कर रही है, तुम निडर बनो बेटी।
4: गुड मॉर्निंग डॉक्टर।
2: हेलो उमा, आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है।
4: देखो तो तुम्हारी डिस्पेंसरी देखने और कौन आए हैं।
5: हेलो।
2: ओह, डॉक्टर रतनगिरी, विश्वविख्यात हार्ट स्पेशलिस्ट यानी हृदय रोग विशेषज्ञ, बैठिए।
5: धन्यवाद धन्यवाद। कहिए, आपकी डिस्पेंसरी तो ठीक ठाक है ना?
2: आपके नर्सिंग होम की तुलना में।
4: भारती, तुम्हें खुशखबरी सुनाऊं?
2: सुना।
4: मैं शीघ्र ही मद्रास जाकर इनके साथ काम करने वाली हूँ।
2: बहुत अच्छी बात है। आपने अपनी पत्नी की शिक्षा का सम्मान करना शुरू किया, उसके लिए बधाई।
3: अम्मा जी,
2: बताइए क्या लेंगे आप? कॉफी, चाय, नारियल का पानी?
4: कुछ नहीं चाहिए, तुम हमारे साथ घर चलो।
5: वो हमारा मतलब था हमारे साथ भोजन करने का निमंत्रण। अगर
3: डॉक्टर साहब, ये चिट्ठी शकुंतला दे गई है।
4: शकुंतला? कौन शकुंतला?
2: तुम जानती हो उसे उमा?
4: उसके बारे में आज सुबह यहाँ के बड़े रईस कुमार स्वामी बातें कर रहे थे।

0: ये शकुंतला ग्राम सेविका है ना?
1: हाँ हाँ, ये चिट्ठी उसी ने भेजी है।
0: हाँ क्या बातें हो रही थी उसके बारे में?
1: उसका दूर का रिश्तेदार एक लड़का है।
0: तब
1: खुद कुमार सामी ने उस लड़के के साथ शकुंतला की शादी कराने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया है। कह रहे थे गांव के मंदिर में शादी करा देंगे।
2: अच्छा, वो सुबह नए कपड़े, फूल मालाएं, फल तांबूल वगैरह लेकर जो लोग आए थे वो सब क्या ऐसी शादी के लिए थे?
1: जी हाँ। तब तो इस चिट्ठी का कोई उपयोग नहीं है।
0: कैसी चिट्ठी है?
1: इसमें एक दुखियारी की दर्दनाक कहानी है। ओ, शादी की आड़ में वो चैन से जिंदगी बसर कर सकती है। आइंदा समाज में सिर उठाकर चलने के लिए चिट्ठी ना रहे तो ही अच्छा है।
2: अरे ये क्या, आपने चिट्ठी फाड़ क्यों डाली?
3: क्या हुआ डॉक्टर साहब?
1: शकुंतला को हमसे भी बढ़कर पनाह मिल गई है।
0: कह क्या रही हैं आप?
1: इस वक्त कुमार स्वामी के संरक्षण में हमारे गांव के स्कंददेव मंदिर में शकुंतला का विवाह हो रहा होगा।
3: ओह, इसीलिए उसने मुकदमा वापस ले लिया है।
1: चलो, उस बेचारे दुखियारी की जिंदगी तो बन गई, हम उसी से संतोष कर लेंगे।
0: अरे मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी हिम्मत के साथ अन्याय का सामना कर सकोगी। तुम्हें अपनी प्यारी सहेली के रूप में पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है।
1: तुम खुद भोली भाली हो ना, इसीलिए हर एक में गुण ही गुण देखती हो।
2: सहेलियां एक दूसरे की बढ़ाई करने में होड़ लगाती ही हैं भैया।
1: ऐसी बात नहीं है डॉक्टर साहब, जरूरत पड़ने पर अपना हक छोड़ भी देती हैं।
0: मेरा दिल चाहता है कि तुम्हारी कोई मदद करूं।
1: मदद? तुम
0: क्यों, शक है? अरे हाँ, उस दिन तुमने हार्ट पेशेंट के एक नाजुक केस के बारे में कहा था।
1: ऐसे तो कई केस हैं उमा, मेरे मामा जी की तरह कई हार्ट पेशेंट हैं जो सुविधा के अभाव में ठीक से इलाज नहीं करा पाते।
0: इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि यही एक अच्छा अस्पताल खोला जाए जिसमें सभी सुविधाएं मैसर
2: हों। नहीं, ये एक बिल्कुल बेहुदा ख्याल है।
1: आप परेशान ना हो डॉक्टर साहब, मेरे मामा की खाली जमीन गाँव की सीमा पर है। जब तक वो रहे वहाँ मेहनत कर खेती बाड़ी करते रहे। अब मैं उनकी स्मृति में वहाँ एक अस्पताल बनाना चाहती हूँ।
0: अरे भारती, यू आर रियली ग्रेट।
1: वहाँ एक अच्छा अस्पताल बनाने में यदि आप लोगों की मदद मिल सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। आजीवन आप लोगों की आभारी रहूंगी।
0: भारती, मेरे पिताजी की ऊपर तक पहुँच है। भले काम के लिए अपने परिचय और प्रभाव का इस्तेमाल करना बुरा नहीं है।
1: जिस दिन ये काम पूरा होगा ना, उसी दिन तुम्हारे यहाँ आकर।
0: अरे छोड़ो उस दिन की बात, आज चलती हो कि नहीं?
1: अरे भाई सब्र करो, सब्र करो। तुम्हारे बच्चे का जन्मदिन तो ठाट से मनाया जाएगा ना, तभी प्रीति भोज पर आऊंगी।
0: तुम तो बड़ी हट्टी हो भाई। चलिए जी, हम चलते हैं।
2: अच्छा अच्छा भाई, फिर मिलेंगे। हाँ
0: अच्छा, बाय बाय।
4: मुझे तो पहले ही मालूम था।
3: क्या मालूम था तुम्हें?
4: याद है तुम्हें, हमारे डॉक्टर साहब के पास एक मनहूस आदमी आया था।
3: हाँ हाँ, वो आरोग्य स्वामी।
4: उसने डॉक्टर अम्मा से कुछ दवाएं खरीदने के लिए एक नुस्खा लिखकर देने को कहा, पर डॉक्टर साहब ने मना कर दिया।
3: ये भी कम हटीली नहीं है।
4: ठीक ही तो है, झूठ मूठ नुस्खा सर्टिफिकेट वगैरह क्यों लिख कर दे?
3: ये लोग नुस्खा लेकर क्या करेंगे, इससे क्या फायदा है?
4: तुम नहीं जानती, ये लोग झूठ मूठ मर्ज बताकर दवाएं लेते हैं और घर में रख लेते हैं, फिर उन्हें दूसरों को बेच देते हैं। डॉक्टर से नुस्खा लेकर जाली बिल बनवाकर ऑफिस में पेश कर देते हैं और उसका पैसा ले लेते हैं।
3: छी छी छी, अरे ये तो साफ धोखाधड़ी है। हाँ तो फिर आरोग्य स्वामी का क्या हुआ?
4: डॉक्टर साहब ने साफ साफ कह दिया कि ये तिकड़म हमसे नहीं होगी, पर वो नहीं माना, बराबर जिद करता रहा। आखिर डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाकर उसे बाहर निकाल देने को कहा। मैंने उसे हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया।
3: फिर
4: जाते जाते चुनौती देके गया कि बहुत सिर चढ़ी हुई हो, ठीक कर दूंगा, है किस होश में।
3: ये तो बहुत बुरी बात हुई, मुझे तो बहुत डर लगता है।
5: कंपाउंडर
6: जी, अभी आया।
5: सुनो लवक्ष, ये दलाल कंपनी वालों का खत आया है, उन्होंने दवाओं का पार्सल भेजा है।
6: हस मामूल हफ्ते के आखिर में आने वाली गाड़ी में उस पार्सल को भिजवा देने को लिख दीजिए।
5: तुमने सुना है लवक्ष, आसपास के गांव में हैजा फैल रहा है, पर अचरज की बात यह है कि कोई भी आदमी हैजा से बचने की सुई लेने नहीं आया अब तक।
6: गांव है ना, सुई से कोसों दूर भागेंगे, फिर भी आज नहीं तो कल आ ही जाएंगे। सरकार ने ऐलान करा दिया है कि सबको हैजे से सुरक्षा की सुई लेना लाजमी है।
5: अच्छा लवक्ष, ऐसा करो तुम लोग यहीं रहना। हाँ, मैं गांव में जाकर रोगियों को देखती हूँ।
3: जी बहुत अच्छा।

0: अरे छोकरे की उछल कूद दिन पे दिन बढ़ती जा रही।
1: एक नुस्खा लिख कर देने को कहा, कहती है कि ये तिगम यहाँ नहीं चलने दूंगी। मैंने समझाया तो मुझे गेट आउट किया, फटकार दिया।
2: अजी जानते हैं आप, कहीं से कहला फुसला के अपने मामा की जमीन पे इमारत खड़ी कर रही है।
3: छी छी, एक छोकरी ये सब जोर जबरदस्ती कर रही है और हम मर्द होकर चुपचाप देख रहे हैं।
4: ये सब बड़े लोगों की सहायता के बल पे चल रहा है साहब।
1: गांव के लोग भी तो चंदा इकट्ठा करके उसी को भेंट करते हैं।
4: हर हफ्ते किसी कंपनी की गाड़ी पास के शहर से मुफ्त में दवाएं सप्लाई कर जाती है।
3: इसीलिए तो ये लड़की हम लोगों को तुच्छ मानकर हमारा अपमान करती रहती है।
1: आजकल गांव में हैजे का खतरा है ना, वो जगह जगह जाकर लोगों को इंजेक्शन दवा दी दे आती है।
3: इससे ये साबित करना चाहती है कि हमारा धर्मार्थ औषधालय बेकार है, असली दवाखाना तो स्वयं उसका है।
4: अजी बढ़िया ही धर्म सेवा करने वाली, हम भी देख हैं जी कब तक चलेगा।
1: आप क्या कर लेंगे श्रीमान?
4: अजी हमारे छोकरे किस दिन काम आएंगे आखिर? उनसे कह दूंगा ऐसा काम करो जिससे कंपनी की उस गाड़ी का आना ही बंद हो जाए।
3: शाबाश, ये हुई काम की बात।
1: देखें दवाओं के बगैर कैसे इलाज करेगी।
5: डॉक्टर साहब, क्या हुआ भाई? ये खाओ, ये खून के डब्बे, क्या हुआ?
6: डॉक्टर साहब, मैं गाड़ी का ड्राइवर हूँ, मुझे
5: एक्सीडेंट हो गया। क्या? कंपाउंडर जल्दी आओ।
6: या खुदा, ये किस शैतान का काम है? शहर से दवाएं लेकर कहीं आ रहा था डॉक्टर साहब, गांव से 2-3 मील की दूरी पर ही 4-5 आदमियों ने गाड़ी को घेर लिया और मुझे खूब पीटा।
7: दवाएं क्या हुई?
6: कावेरी नदी के किनारे की सड़क पर ही ये वारदात हुई थी। सारी दवाएं नदी में फेंक दी। उन बदमाशों ने, अकेला आदमी क्या कर सकता था डॉक्टर साहब, उन्होंने मुझे खूब पीटा और फिर चले गए।
7: अब क्या किया जाए डॉक्टर साहब?
5: ऐसा करो, हाँ। पहले इस आदमी के घाव साफ करके दवा लगाओ।
7: अच्छा,
5: बाद में एक आदमी को शहर भेजेंगे।
6: ठीक है, मैं ही चला जाऊंगा डॉक्टर साहब।
5: नहीं भाई, तुम्हें आराम करना है, तुम कल जाओगे। डॉक्टर साहब, एक बात है। बताओ जानम्मा, क्या बात है? कहने के लिए जबान नहीं खुलती, जी घबराता है, क्या कहूँ डॉक्टर अम्मा? घबराने की क्या बात है, बताओ ना। वो उमा जी के घर
7: में, मरुद नायकम जी के घर में क्या बात है?
5: उनको उल्टी आ गई है, लगता है हैजा है, कोई भी उनके पास जाने को तैयार नहीं है। आपसे विनती करने आदमी भेजा है कि आप एक बार जाकर उन्हें देख आए। कह भेजो, मैं आ रही हूँ।
6: डॉक्टर साहब,
5: कोई बात नहीं है, तुम फिक्र ना करो, अल्लाह बख्श। उनकी खातिर नहीं तो उमा की खातिर उनकी देखभाल करना हमारा फर्ज है। आओ हम सब चलते हैं। डॉक्टर साहब, कौन है? डॉक्टर साहब, मेरे बेटे की बुरी हालत है, आप जल्दी चलकर देखिए, बेसुध पड़ा हुआ है, दया कीजिए।
8: आप कौन हैं? अरे बहन अम्मा, तुम आ गई, चलो अच्छा हुआ।
5: डॉक्टर साहब, ये रईस कुमार स्वामी की घर वाली है।
8: क्या?
5: कुमार स्वामी के घर? डॉक्टर साहब, मैं उनकी पत्नी हूँ, मेरा इकलौता बेटा बेहोश पड़ा हुआ है, जान का खतरा है और कोई डॉक्टर नहीं मिला, मैं क्या करूं?
8: शहर ले जा सकती हैं आप तो काफी सुविधा संपन्न लोग हैं, शहर के बड़े अस्पताल में बड़े डॉक्टर के पास इलाज करा सकती हैं।
5: डॉक्टर साहब, वो यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है, मैं खुद दौड़ी आई, जानम्मा से विनती की कि आपको समझाए।
9: डॉक्टर साहब, ये घर से बाहर कभी नहीं निकलती, अपने बेटे को मौत से बचाने के लिए यहाँ आई हैं। डॉक्टर, अभी तो आप मरुद नायकम जी के घर से होकर आई हैं, अब इनके घर भी।
8: पर क्या हम यकीन कर सकते हैं? एक बार पहले इसी तरह कहकर मुझे धोखे में डाला जा चुका है।
9: अगली बार तो अल्लाह बख्श के साथ चलेगा, मैं तो हूँ ही। डॉक्टर साहब, आप थोड़ा खाना खाकर आइए, तब तक हम सब चलते हैं।
8: नहीं नहीं, अब वो सब खाने वाने की बात छोड़ो, पहले इनके बेटे को बचाना है, चलिए आइए, जल्दी चलिए।
6: डॉक्टर साहब,
8: हाँ हाँ बताइए, बच्चा कहाँ है?
5: उस कमरे।
8: चलिए आइए, उसी कमरे में चलते हैं।

0: taksan da fe.
1: बोलिए
2: राजा बेटा बोलता क्यों नहीं आंखें खोलो बेटा
1: कंपाउंडर
0: जी ये लीजिए दवा का बक्सा
2: लो
3: दवा खत्म हो चुकी है शहर से दवा आनी है और
1: कोई भी दवा बेकार है
4: डॉक्टर साहब नहीं नहीं
1: कंपाउंडर
0: जी
1: बच्चे का शरीर ठंडा पड़ गया है
0: जी
1: चाय निकले काफी देर हो चुकी है
2: नहीं
1: करो इसकी इसकी माँ तंग कर कुमार स्वामी साहब धीरज से काम कीजिए भगवान ने दिया उसी ने वापस
4: मुझ पाजी को यही सजा मिलनी चाहिए थी डॉक्टर साहब मैंने दवा लेके आती हुई गाड़ी को रोक के लुटवाया दवाओं को नदी में फेंकवाया उसी की सजा मिल रही है डॉक्टर साहब मुझे उसी की सजा मिल रही है
5: इंसान जैसा बोता है वैसा ही काटता
1: कंपाउंडर चुप रहो ये बदतमीजी है
0: माफी चाहता हूँ डॉक्टर साहब
1: कुमार स्वामी जी जो नहीं होना चाहिए था सुनो आप घर लगे और अपनी पत्नी को भी संभाल
0: चलो
1: चलो राजा बेटा

0: थोड़ी देर के लिए बाहर चलिए डॉक्टर साहब, आपके दर्शन करने और अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए बहुत से लोग इकट्ठे हुए हैं।
1: अरे भाई, कृतज्ञता तो परमात्मा के प्रति प्रकट करनी चाहिए। आओ चलो, फिर भी देखती हूँ।
0: चलिए चलिए।
2: बाप रे बाप, कितने कुछ फल फूल, कितनी फूल मालाएं, वाह रे वाह।
1: भाइयों, ये सब फिजूल खर्ची है, इसके बदले नया अस्पताल बनवाने के लिए चंदा देते तो अच्छा होता।
0: डॉक्टर साहब, वो देखिए, गांव के बड़े काश्तकार मरुद नायकम जी भी पधार रहे हैं।
1: आइए आइए आइए। अरे आपने ये सब तकलीफ क्यों उठाई?
3: डॉक्टर साहब, आपको अपनी कृतज्ञता प्रकट करने आया हूँ, आपने हम पर बड़ा एहसान किया है।
1: ऐसा मत कहिए, आप बड़े और बुजुर्ग हैं, फिर मेरी सहेली उमा आपकी बहू है, उस नाते भी आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है।
3: छूत की बीमारी मालूम हो जाने पर पैसे के लिए भी कोई डॉक्टर पास नहीं फटकेगा। आपने मेरी जान बचाई।
1: ये तो डॉक्टर का कर्तव्य है, डॉक्टर बनने के बाद बीमारी से डरकर पीछे हटना कैसे संभव होगा।
3: डॉक्टर साहब, आपको एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ, मेरा पोता हुआ है।
1: अच्छा, बहुत बहुत बधाई।
3: उमा रतनगिरी दोनों आए हैं।
1: अच्छा।
3: बच्चे के नामकरण संस्कार पर आपको निमंत्रण देने दोनों ही आ रहे हैं। मैं पहले आ गया हूँ, आपको हमारे घर अवश्य आना होगा।
1: अब आप इतने बड़े आदमी होकर खुद चलकर बुलाने आए हैं तो भला मैं कैसे चल सकती हूँ।
3: आप ये फल फूल ले लीजिए और अवश्य बधाइएगा।
4: अरे दिए भाटी, तुम आ गई, मैंने सोचा कोई बहाना बनाकर तुम फिर रुक जाओगी।
1: मुझे सूझा ही नहीं उमा कि क्या उपहार ले आऊं, इसलिए भाई यहां से नहीं। उमा
4: बारी बा, पालने पर पड़े बच्चे को हवाई जहाज भेंट कर रही हो।
5: आप भी खूब है डॉक्टर भारती, अरे बच्चे को क्या अभी एरोप्लेन में बिठा के उड़ाएंगे हैं?
1: नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरा मतलब था भविष्य में ये होनहार बालक देश विदेश घूमे, ऊंची ऊंची शिक्षा पाए, इसी आशा और अरमान के साथ ये भेंट कर रही हूँ।
3: आइए डॉक्टर अम्मा, भोजन तैयार है, चलिए। हाँ, अरे ये एरोप्लेन तो बहुत बढ़िया है।
4: आपका पोता इसमें बैठकर देश विदेश घूमेगा, आसमान पर उड़ेगा।
3: अरे ये आसमान पर उड़ता रहा तो धरती पर कौन रहेगा?
1: धरती पर ही रहेगा, धरती पर रह लेने के बाद ही तो आसमान पर उड़ना सीख सकता है।
3: अच्छा अच्छा, आइए, भोजन ठंडा हो रहा है, आइए आइए
1: आइए, चलिए।
6: थोड़ी सब्जी मुझे दीजिए ना।

0: तुम्हारे नर्सिंग होम का उद्घाटन कब होगा? सुना है शहर से कोई बड़ा आदमी आने वाला है।
1: मैं उमा, इस मामले में तुम तो मेरे विचार जानती
0: हो। फिर भी एक मामूली देहाती आदमी जो मेहनत कश मजदूर है, उसके हाथों उद्घाटन होने वाला है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। तुमने पूरी बिल्डिंग नहीं देखी अस्पताल की। उमा देखोगी ना तो खुश हो जाओगी।
2: एक मिनट सुनिए डॉक्टर।
0: क्यों, क्या हुआ? तुम घबराए हुए क्यों हो?
2: बड़ा अन्याय हुआ है। आरोप स्वामी ने कुछ गुंडों के साथ लेकर नर्सिंग होम की किवाड़ तोड़ डाली और भीतर।
0: क्या गजब हो गया। भांति अकेली चली जा रही है, जालिम राक्षस कहीं उसको भी। मामा जी बचाइए हमारी भांति को।
3: अरे कोई है?

0: तोड़फोड़ की तो बहुत बुरा होगा, खबरदार।
1: बड़ी आई है, हमें डराती है, हटा पीछे से।
0: हाँ हाँ, अगर आप किसी ने पत्थर फेंके तो मैं उसका खून पी लूंगी।
1: ए लखो, चलाओ पत्थर।

0: ये सारी शरारत उस बदमाश आरोग्य स्वामी की है।
1: पुलिस ने ऐन मौके पर आकर सब बदमाशों को पकड़ लिया। मरुद नायकम जी ने इस वक्त बड़ी मदद की हमारी।
0: वो तो है, गांव वालों का प्यार भी तो देखो, डॉक्टर साहब के बारे में तरह तरह के सवालों के जवाब दे देकर थक गए हम लोग जानम्मा।
1: डॉक्टर साहब के लिए इन लोगों के दिलों में कितना गहरा प्यार और आदर है।
0: लगता है उमा जी और डॉक्टर रतन साहब तशरीफ ला रहे हैं। अंदर जाकर डॉक्टर साहब को इत्तला दे आता हूं।
2: आइए आइए आइए।
3: डॉक्टर साहब कैसी है?
2: आराम कर रही है। चलिए अंदर चलिए। आइए आइए आइए।
3: चलो भारती, तुमने खुद ही पहली मरीज बनकर अस्पताल का उद्घाटन कर दिया।
2: क्या किया जाए, अच्छे काम के लिए पहले कुछ भेंट तो करनी ही पड़ती है। ये देखो ना, ये मेरे माथे का घाव पहली भेंट है।
4: डॉक्टर भारती, आपने उस वक्त बहुत ही जल्दबाजी की, आपको अकेले वहां जाना ठीक नहीं था।
2: उस वक्त सोचने समझने या रुके रहने का होश कहां था, और फिर कुछ सूझा ही नहीं। नर्सिंग होम वाले मेरे सुनहले सपने को कोई बड़ी परपरता से कुचल रहा है, बस यही बात मेरे भीतर आवेग भर गई, इसी से तैश में आ गई मैं।
3: भारती, मेरे ससुर साहब बहुत दुखी हैं कि वो तुम्हें इस पथराव से बचा नहीं सके, तुम्हारे लिए बड़े चिंतित हैं वो।
2: चिंता की कोई बात नहीं, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कल से मेरा काम यही शुरू होगा। तुम मामा जी को समझा देना उमा।
3: आज तुम्हें मरीज के रूप में लोग यहाँ आकर देख लेते हैं, कल से तुम उन लोगों को मरीज के तौर पर देखना शुरू करना। ये आदान प्रदान अच्छा है, ठीक है ना?
4: अच्छा डॉक्टर भारती, अब हम चलते हैं, वो अब हमें मद्रास जाने की तैयारी भी करनी है ना।
2: डॉक्टर रतनगिरी, आप जब भी इस गांव में आए, कृपा कर हमारे उमा नर्सिंग होम में पधारने का कष्ट अवश्य करें।
4: जरूर जरूर।
2: और देखिए, चिकित्सा संबंधी नई बातों का परिचय मुझे अवश्य दिया करें।
4: ओह सर्टेनली सर्टेनली। अच्छा, गुड बाय डॉक्टर।
2: गुड बाय डॉक्टर।

0: से हैं?
1: हाँ? नहीं कुछ नहीं, ये एक छोटे से गांव में इतनी लगन और मेहनत के साथ भारती ने कितना बड़ा और बढ़िया काम कर दिखाया है। मैं उसके सामने हार गया हूँ।
0: मैं सब जानती हूँ।
1: क्या जानती हो?
0: आप जितना समझते हैं मैं उतनी बेवकूफ नहीं हूँ।
1: क्या कह रही हो तुम?
0: याद रखिए, डॉक्टर उमा डॉक्टर भारती की सहेली है।
1: हाँ, लेकिन ये तो सभी को मालूम है।
0: पर ये बात तो किसी को मालूम नहीं, और भारती ने भी कभी नहीं कहा कि उसकी जगह मैंने ली है और उसकी जिंदगी मैं जी रही हूँ।
1: क्या?
0: हाँ, पहला हक उसी का था।
1: ये बात तुमने पहले क्यों नहीं

0: क्या लाभ होता इसे?
1: माँ,
0: भारती अपने उसूल की पक्की है। लंबा कंटीला रास्ता पार करके उसने स्वयं अपने जीवन की दिशा निश्चित कर ली। वो एक मिसाल, एक आदर्श बन चुकी है। वो अपनी अंतश्चेतना के अनुसार चलने वाली कर्तव्यनिष्ठ महिला है।
1: बड़ी ऊंची बातें हैं ये उमा।
0: ऊंची नहीं, सही बातें हैं ये। जरा सोचिए तो, गाड़ी का रुकना और छूटना उस सिग्नल के इशारे पर निर्भर होता है। हमारा जीवन भी सिग्नल के खंभे जैसा है। ठीक इशारा पाने पर गाड़ी पटरी पर चलती है, गलत इशारा करने पर गाड़ी पटरी से उतर जाती है। इसी तरह कुछ लोग गलत इशारे पर चलते हैं, कुछ सही इशारे पर। क्या किया जा सकता है, अपनी अपनी मजबूरियां हैं।
1: उमा, आज मैं तुमसे भी हार गया हूं।
0: हार मान बैठना पुरुष का लक्षण नहीं है डॉक्टर साहब। वो भी एक विश्वविख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ के लिए बिल्कुल गलत बात है।
1: सिर्फ एक जगह हार मानना गलत बात नहीं।
0: किस जगह?
1: वो प्रेम की दुनिया में।
0: डॉक्टर साहब, सिर्फ संवेदन और भावना तक ही सीमित ना रहिए, दिल टटोलना भी सीख लीजिए।

कटीला रास्ता। अभी आप सुन रहे थे इस नाटक का दूसरा एवं अंतिम भाग, नित्यमूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नेत पाते का। यह था हिंदी रूपांतर। रूपांतरकार ए शौर्य राजन, निर्देशक थे वीपी दीक्षित भटुक, और ये केंद्रीय नाटक एकांश दिल्ली की प्रस्तुति थी। अब नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं। जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में इन दिनों हम सुन रहे हैं जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले। बांट रही हैं हमारे साथ उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। पिछले सप्ताह हमने इस बातचीत की पहली कड़ी सुनी थी, आइए आज सुनते हैं दूसरा भाग।
1: हम बात कर रहे थे राज से स्वराज तक अमाला लाना का सीरियल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत की आजादी की कहानी और इतिहास अगर आपको देखना हो तो बहुत महत्वपूर्ण सीरीज। लेकिन इसके साथ साथ जो जिक्र निकला वो श्याम बाबू का निकला, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल मिला था सदाशिव जी को भारत एक खोज में, उसके बारे में बताइए।
2: हाँ, वो रोल था महात्मा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, और वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था जैसे मैंने कहा, क्योंकि महात्मा फुले ये पापा के जो ऐसे कुछ हमारे आइडियल्स होते हैं,
1: बिल्कुल,
2: जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, समझते हैं और उनकी तरह बनना चाहते हैं, तो महात्मा फुले वैसे आइडियल्स में से एक थे। सो शाहू फुले अंबेडकर, ये तीनों नाम महाराष्ट्र में काफी लिए जाते हैं। और ये एक विचारधारा है कि सब इंसान जो है, सब लोग इक्वल है, समान है। और इसकी पहल ज्योतिबा फुले ने की थी जब उन्होंने स्त्री शिक्षण के लिए काम किया, जब उन्होंने दलितों को काम देने के लिए काम शुरू किया, उनकी एक कंपनी थी, कंस्ट्रक्शन कंपनी, वो शुरू किया जिसमें हर एक जाति धर्म के इंसान को काम दिया जाएगा, इस तरह से काम होता था। तो ये जो है वो पापा की जो जीवन के प्रति दृष्टि थी उससे बहुत मिलता जुलता ये सब था, तो इसलिए उनके दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये एक रोल वॉज अ ड्रीम रोल फॉर हिम, क्योंकि देखने में तो वो बहुत ज्यादा महात्मा फुले जैसे थे ऐसा मैं नहीं कहूंगी, पर जो आइडियल्स और जिस तरह से श्याम बाबू ने वो भारत एक खोज की स्क्रिप्ट जिस तरह से लिखी गई थी और श्याम बाबू ने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे कि जाति व्यवस्था किस तरह से इन्हें फेस करना पड़ा, सब कुछ वो जिस तरह से आया था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था पापा के लिए और उन्होंने बहुत एंजॉय किया। बिकॉज श्याम बाबू के साथ काम करना यही एक बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस, हर एक कलाकार जिसने श्याम बाबू के साथ काम किया है वो आपको बता सकते
1: हैं, अपने आप में एक एनसाइक्लोपीडिया।
2: हाँ,
1: वो आप तो किसी भी विषय का जिक्र करें
2: करेक्ट
1: तो वो पेज खुल जाएगा,
2: करेक्ट,
1: वैसे जिसे आज हम क्लिक करते हैं ना।
2: हाँ तो ही हिमसेल्फ वॉज अ सर्च इंजन, इस तरह से आप कह सकते हैं।
1: yes.
2: क्या होता है किसी भी कलाकार के लिए कि वो खुद की एक तैयारी करता है, राइट? तो महात्मा फुले के बारे में हम बचपन से स्कूल में पढ़ते आते हैं, स्पेशली महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है, तो एक सोच होती है अपनी, एक विचार होता है और फिर बड़े होते हो और स्कूल की किताबों के अलावा भी कुछ पढ़ते हो तब हमें और ज्ञान मिलता है कि और ये इंसान कैसा था, इसकी रिलेशनशिप अपनी वाइफ के साथ कैसी थी, इसने जो स्त्री शिक्षण के लिए काम किया ये क्यों किया। पापा कहते थे कि

0: मैं मेरी एक सोच लेकर गया था कि महात्मा फुले ऐसे थे, उन्हें ऐसे दिखाना जरूरी है, पर जब श्याम बाबू ने उनका पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन किया तो एक बहुत अलग तरीके से महात्मा फुले उन्हें समझ में आए। तब तक के जो महात्मा फुले पापा को समझ में आए थे वो महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के रेफरेंस से समझ में आए थे, और जब भारत एक खोज में पापा ने वो रोल किया और श्याम बाबू ने उन्हें एक्सप्लेन किया कि महात्मा फुले की जगह भारत के इतिहास में, पूरे इतिहास में क्या है, उस समय पापा को ये समझ में आया कि नहीं, ये महात्मा फुले, हम लोग भले ही उनको लिमिट करते हैं महाराष्ट्र तक, पर ही इज अ नेशनल हीरो।
1: एक व्यापक दृष्टिकोण,
0: व्यापक दृष्टिकोण है, ऑफ कोर्स। और उन्होंने जो मूवमेंट शुरू की है अछूत परंपरा के खिलाफ या स्त्री शिक्षण के लिए, ये आगे जाकर गांधी जी ने, अंबेडकर साहब ने, इन सब ने वो आगे वो लेके गए हैं, पर उसका मुख्य स्रोत महात्मा फुले है। तो ये जब पापा को समझ में आया तब बहुत ही प्राइड वाला वो मोमेंट था कि मैं महात्मा फुले कर रहा हूं और श्याम बाबू के साथ कर रहा हूं। और उस वक्त भारत एक खोज एक ऐसी सीरियल थी जिन्हें याद होगा कि हर रविवार को लोग बैठे रहते थे कि अभी नेक्स्ट एपिसोड आएगा, और पूरे देश के सबसे बेहतरीन कलाकार उस समय उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे।
1: बिल्कुल।
0: और बिकॉज अगेन श्याम बाबू थे तो इसलिए श्याम बाबू ने एक एक चुन चुन कर कलाकार उसमें लिए हुए थे, तो इट वॉज अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस ऐसा मैं कहूंगी। जैसे मैंने कहा कि लोकमान्य तिलक का तो वो उनका एक जुनून था कि अभी मैं करके दिखाऊंगा, पर महात्मा फुले का जब उन्होंने किया तब और थोड़ा आगे आ चुके थे जिंदगी में, थोड़ी मैच्योरिटी और आ गई थी, और श्याम बाबू के निर्देशन में वो करना बहुत ही सुंदर अनुभव था। और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने लिटरेचर, दलित लिटरेचर जिसे हम कहते हैं मराठी में, वो पढ़ा, उसके बारे में उनकी सेंसिटिविटी है, उनकी जो समझ है वो जिस तरह से डेवलप होती गई, और फिर उसके बाद वो जब सामाजिक कामों में गए तब उन्हें उसका बहुत फायदा हुआ उस रोल का और उस समझ का।

0: सारे ऐसे लोग हैं बाद की पीढ़ी के, जिन्होंने अपने बड़ों से भारतीय खोज की कहानी सुनी है कि ऐसा सीरियल होता था और लोग रुक जाते थे और रविवार का इंतजार किया जाता था, तो बाद की पीढ़ी के लोग इसे ढूंढ कर देखते रहे हैं। बल्कि इस इंटरव्यू के लिए जब मैं वो एपिसोड देख रहा था तो मैंने देखा कि सदाशिव जी की आंखों में एक इंटेंसिटी नजर आती है जब वो अपने संवाद बोल रहे हैं। अलग अलग दृश्यों में जहां उनको खेलने का मौका मिलता है तो खेल जाते हैं, उस रोल को वो एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। क्या कभी कोई ऐसा जिक्र है जहां किसी ने उनसे कहा हो कि तुम्हारी आंखें बहुत बोलती हैं और तुम्हारे अभिनय की बड़ी जंग आंखों से जीतती हैं?
1: एक्चुअली ये इसके लिए हमें फिर से अर्ध सत्य की तरफ जाना पड़ेगा, बिकॉज मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। तब गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जिसका जिक्र है।
1: तो तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है और इसलिए वो कैरेक्टर के लिए तुम एकदम परफेक्ट हो। और आप अगर अर्धसत्य देखेंगे आज भी तो आप देखोगे, आई थिंक वेव्स पर ही है, वेव्स प्लेटफॉर्म पर, तब आप देखोगे कि जिस तरह से आंखों का अभिनय किया है पापा ने, उसके बाद जब भी उन्होंने कमर्शियल फिल्में की उसमें वो इंटेंसिटी नहीं आई है। पर वही इंटेंसिटी आपको राज से स्वराज तक में दिखेगी,
0: बिल्कुल
1: वही इंटेंसिटी आपको डिस्कवरी ऑफ इंडिया में दिखेगी, वही इंटेंसिटी आपको वास्तु पुरुष में दिखेगी। ऐसे कुछ चुनिंदा रोल्स हैं जिनमें वो इंटेंसिटी समझ में आती है, और मेरे ख्याल से ऐसे बहुत कम निर्देशक है जो वो एक्सप्लॉइट कर पाए हैं जो आंखों की उनकी इंटेंसिटी थी।
0: अर्धसत्य जब कामयाब हुई और अर्धसत्य में जब हम सदाशिव जी को देखते हैं तो जब उनके दृश्य आते हैं तो एक सिहरन देखने वाले को दौड़ जाती है, मतलब एक ठंडा सा भय महसूस होता है, जबकि कितने कम दृश्य हैं
1: और वो पूरे
0: 3.5 दृश्यों में जो उन्होंने कमाल किया। उसके बाद उनके पास बहुत ज्यादा ऑफर्स आने लगे और उसके बाद की जो कहानी है कि कैसे उनसे कहा गया सेक्रेटरी रख लो वो बताइए।
1: तो इसके लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा कि जब अर्धसत्य रिलीज हुई तब क्या हुआ था।

0: बिल्कुल यहाँ से ही आगे चलेंगे।
1: तो जब अर्धसत्य रिलीज हुई तब मेरे चाचा जी ने केमिस्ट की दुकान खोली थी अहमदनगर में। तो मेरे चाचा जी बहुत मेरे दादाजी की तरह ही बिजनेस माइंडेड और इस तरह से थे, कलाकार। मेरे पापा एक हमारी फैमिली में निकल गए कलाकार और पापा उनको मदद कर रहे थे क्योंकि नया नया दुकान शुरू हुआ था, प्रीमियर था बंबई में अर्धसत्य का। तो पापा ने दादाजी से पूछा, बिकॉज उस वक्त तो ऐसे होता था ना कि पिताजी की परमिशन के बिना आप कहीं नहीं जा सकते। तो उन्होंने पूछा कि मैं जाऊं, वहां पर प्रीमियर है। तो क्योंकि उससे पहले 22 जून 1897 आई हुई थी और वो फिल्म कुछ खास चली नहीं थी, तो दादाजी ने पूछा, अच्छा कितना रोल है तुम्हारा? मेरा कुछ है, 3-3.5 सीन है। 3-3.5 सीन के लिए तुम अहमदनगर से उठ के बॉम्बे जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाना। यहाँ पे काम करो, यहाँ पे लोग नहीं है, मदद करो। ऐसा माहौल था उस वक्त घर पर। तो पापा ने हाँ कहा। उस वक्त हमारे यहाँ पर फोन भी नहीं था और हमारे ही हवेली में बाहर की तरफ जो दुकानें थी वो रेंट पे दी हुई थी। हमारे बाजू में एक जो दुकान था मेडिकल शॉप के बाजू में, वो एक स्पोर्ट्स का दुकान था, वहां पर एक फोन था। तो पूरा जो हमारा एरिया था वो उसी फोन पे फोन उसके लिए आते थे। फिल्म रिलीज हुई और प्रीमियर पे रामा शेट्टी तो था नहीं और सबको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये है कौन, ये बंदा है कौन, ये रहता कहाँ है, क्या करता है। बिकॉज उनका ऐसे नेटवर्क भी नहीं था हिंदी थिएटर में जैसे पहले हुआ करता था लोगों का। तो फिर तेंदुलकर साहब से लोगों ने फोन नंबर लेकर, अहमदनगर में ट्रंक कॉल होते थे उस वक्त, तो वो नंबर लगाकर रुकना पड़ता था, जब कॉल लगेगा तब वो लगेगा इस तरह से। और उस दिन जो वो फोन बजना शुरू हुआ वो दिन भर वो फोन बंद ही नहीं हुआ। अल्टीमेटली शाम को वो शिंदे के जो मालिक थे उन्होंने वो उठाया फोन और बाजू में रख दिया, निकाल के रख दिया, अनहुक कर दिया कि बस अभी नहीं बजना चाहिए फोन। और जब इस तरह से देखा तब दादाजी ने कहा, ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा हुआ है, तो अब तुम जाओ बंबई और देखो क्या हुआ है। उसके बाद फिर हम बंबई आए, बिकॉज उस समय दिवाली के दिन चल रहे थे, तो वो छुट्टियों का मौसम और वो सब करके 83 की बात है ये, हम लोग बंबई आए। और जैसे ही हम तो उस वक्त लाल डिब्बे से ट्रैवल करते थे, स्टेट बस से हम लोग उतरे, बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन था वहां पर उतरे, क्योंकि उस वक्त अहमदनगर में फिल्म भी इमीडिएटली रिलीज नहीं होती थी,
0: देर से आती थी,
1: एक 1.5 साल के बाद वहां फिल्म आती थी। तो हमें तो पता ही नहीं था बॉम्बे में क्या हुआ है। तो हम लोग उतरे और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: वाह वाह।
1: फिर एक सरदार जी ने पापा को कहा कि अरे भाई तुम टेंशन मत लो, चलो चलो चलो चलो, और उन्होंने हमारा सामान उठाया, टैक्सी में डाला हम सबको, वरना हम लोग
0: गिर जाते।
1: हम लोग ट्रेन से घर जाने वाले लोग थे कि अभी बस से उतरे हैं, ट्रेन पकड़ेंगे, घर जाएंगे। नहीं नहीं बैठो तुम टैक्सी में, ये वो करके फिर हम लोग गए अंधेरी में, किराए का घर जो था वहां पर तारा। पापा पैसे देने लगे टैक्सी के, तो नहीं नहीं नहीं, नहीं रामा शेट्टी से पैसे नहीं देते। और हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो क्या रहा है।
0: बिल्कुल, सोचिए कि हम किस जमाने में ये बात कर रहे हैं जबकि फिल्म के प्रीमियर के बाद रीलें चल पड़ती हैं।
1: हाँ,
0: और रातों रात बंदा स्टार
1: बन जाता है
0: और कोने कोने में खबर फैल जाती है। और यहाँ अहमदनगर में पता ही नहीं है कि बंबई में क्या धमाका हो चुका है।
1: वाह। उस वक्त फिर ऐसा हुआ था कि हमारे घर पे जब हम पहुंचे तो वहां पर बस किराए का घर था, पर लोगों को पता चल गया था कि यहाँ पर ये रहते हैं। अगेन हमारे जो नेबर थे उनके पास फोन था तो उनका फोन बजता था। हमारे घर पे फोन ही नहीं था, हमारे घर पे उस वक्त टीवी भी नहीं था एक्चुअली। इसलिए फिर उन्होंने अल्टीमेटली हमें कहा, पवार साहब करके थे, कि भाई अभी तुम एक फोन ले लो।
0: इतने फोन आने लगे।
1: मेरे ख्याल से उस समय जो टेलीफोन कंपनी थी उसमें नंबर लगाना पड़ता था, 6-7 महीना, 1-1 साल फोन आने में लग जाता था। पर बिकॉज रामा शेट्टी के लिए वो था, इसलिए रातों रात हमारे घर पे उस वक्त फोन आ गया था। मुझे याद है कि अल्टीमेटली तेंदुलकर साहब ने ही पापा से कहा था कि देखो सदाशिव, अभी तुम इतने ये हो चुके हो कि तुम अभी खुद बात नहीं कर सकते प्रोड्यूसर्स से, यू नीड अ मैनेजर। और फिर उन्होंने एक सेक्रेटरी उनको रिकमेंड किया था और फिर पापा ने वो सेक्रेटरी रखा था। और मुझे याद है

0: एक हफ्ते में उस समय पापा ने 200 फिल्में साइन की थी।
1: अरे बाप रे, इतना आदमी एक जीवन काल में करता है।
0: एक्चुअली तो एक हफ्ते में 200 फिल्में उन्होंने साइन करी थी, जो आगे 8-10 साल तक उनका काम उसी में चल रहा था।
1: गजब। मैंने ये भी बात पढ़ी है कि चूंकि थिएटर की दुनिया से आए थे और एक सीधे साधे व्यक्ति थे, तो उन्हें मुंबई के फिल्म जगत की तिकड़म नहीं पता थी कि कैसे अपना रेट तय करना है, कितने पैसे मांगने हैं। और वो शुरुआती जो दौर था वो इसी तरह का दौर था जब उन्हें खुद अपना ही मोल नहीं पता था।
0: मैं तो कहती हूँ पापा को अंत तक खुद का मोल नहीं पता था। मैं ये इसलिए कहती हूँ क्योंकि वो बिल्कुल अंदर बाहर से एक कलाकार थे। जैसा मैंने पहले कहा था कि भोला सांब, जो मराठी में कहा जाता है कि जिसे दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं होता, वैसी ही उनकी ये थी। उस वक्त भी ही यूज टू डिपेंड ऑन हिज सेक्रेटरी कि भाई तू डिसाइड कर कितना लेना है, किससे कितना लेना है।
1: एग्जैक्टली।
0: पर उसमें भी उनका ये होता था कि भाई ये रोल के लिए एक पैसा भी नहीं मिला फिर भी मैं ये करूंगा। हालांकि ही वॉज अ बिग स्टार उस वक्त, लेकिन वो आखिर तक उनका था। कुछ लोगों के लिए, कुछ प्रोग्राम्स के लिए वो कहते थे कि मैं अवेलेबल हूं, तुम बताओ तुम्हें कब की डेट चाहिए, फिर भले ही वहां पर काम अगर मेरा छूटता है दूसरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो बिल्कुल कलाकार थे और एंड तक उन्होंने कभी पैसों के मामले में और इसमें ध्यान ही नहीं दिया। जो पैसा आना शुरू हुआ तो लकीली मम्मी को उसका सेंस था कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, मैनेजमेंट कैसे करनी है पैसों की, इसलिए उन्होंने वो किया। इसलिए आज तक हम लोग सही सलामत है, वरना पापा को उनका खुद का भी मोल पता नहीं था। मुझे नहीं लगता टिल द एंड उन्होंने खुद की जो वैल्यूएशन की थी, बहुत ज्यादा मांग सकते थे पर उन्होंने मांगा नहीं कभी, बिकॉज पैसा ये उनके लिए प्रायोरिटी ही नहीं थी। उनके लिए प्रायोरिटी थी कि मैं काम करता रहूं, मैं एक्टिंग करता रहूं, मैं लोगों से मिलता रहूं, मैं लोगों के लिए कुछ करता रहूं। तो टेक्निकली क्या था, बिकॉज पापा ने फिल्म इंडस्ट्री को घर से बाहर रखा हुआ था, हमारे घर पे बहुत ज्यादा फिल्मी लोग नहीं आते थे, तो इसलिए उनकी उस वक्त क्या प्रोसेस थी, वो रेट किस तरह से डिसाइड होता था, फिल्म की फीस क्या डिसाइड होती थी, ये प्रोसेस के बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। पर जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करने लगी तब मुझे समझ में आया कि पापा ने तो खुद को बहुत अंडर वैल्यू कर रखा है।
1: सत्य की बात, जब वो बिजी हो रहे थे लगातार, तो जाहिर है कि वो एक थिएटर की धारा पीछे छूटती चली जा रही थी। जाहिर है कि इस बात की एक एक तकलीफ, एक एक खालीपन उनके मन में रहा होगा। उसका कभी उन्होंने जिक्र किया कि कैसे थिएटर का हाथ छूटता जा रहा है?
0: हाँ, पर उनका थिएटर का हाथ भले ही दूर गया हो उनसे, पर छूटा कभी नहीं था।
1: हाँ,
0: ये मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि उनके दोस्त, जिन लोगों के साथ उनकी उठन बैठन होती थी, वो सारे या तो थिएटर के होते थे या तो समाज सेवक होते थे। तो उनका जो स्ट्रक्चर था, जिस तरह से वो बने हुए थे, उसमें ही थिएटर था। तो उनके जो कॉलेज के दौरान जिन लोगों के साथ वो थिएटर करते थे, जिन लोगों के साथ रिहर्सल्स करते थे, उनका जो ग्रुप था वो उनका ग्रुप आखिर तक था। तो इसलिए थिएटर कभी उनसे छूटा नहीं था एक्चुअली। और उन्होंने थिएटर किया नहीं किया ऐसी भी बात नहीं है, उन्होंने एक प्ले किया था अकस्मात मीना कुलकर्णी के साथ जो सुपर हिट था, और ये मैं बात कर रही हूँ 91-92 की,
1: जब वो बहुत बड़े स्टार
0: बहुत
1: बन चुके
0: बड़े
1: थे।
0: स्टार थे, सड़क से थोड़ा सा ही पहले, तो या आफ्टर सड़क आई थिंक। तो उस वक्त भी उन्होंने वो प्ले किया हुआ था, बिकॉज वो कैरेक्टर ऐसा था कि इट नीडेड अ परफॉर्मेंस एंड इट वॉज चैलेंजिंग। तो अगर चैलेंजिंग है तो वो करने के लिए तैयार थे, क्योंकि क्या होता है, एक बार आप स्टार बन जाते हो तो थिएटर वाले हो या फिल्म वाले हो, ये आपका स्टारडम एनकैश करने के लिए ही ज्यादा आपके पास आते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और वैसे ही रोल आपको ऑफर किए जाते हैं। काफी सारे कलाकारों के साथ ये ट्रेजेडी हुई है, पापा भी उससे छूटे नहीं हैं। पर उन्होंने वो प्ले किया था क्योंकि उनके जो दोस्त थे सुरेश चिखले, उन्होंने वो लिखा हुआ प्ले था, और वो प्ले बहुत ज्यादा चला। उसके लगभग आई थिंक 1.5 साल उन्होंने उसके शोज किए, पर उस वक्त थिएटर का परफॉर्मेंस या फिल्म के शूटिंग्स इतने इराटिक हुआ करते थे कि एक डेट देना और वो स्टिक करना, जैसे अभी होता है कि जो मराठी कलाकार थिएटर करते हैं वो वीकेंड्स रख देते हैं कि वीकेंड्स पे मेरे शोज होंगे और मंडे टू फ्राइडे मैं काम करूंगा, राइट? सो वैसे उस समय एक्टर्स के पास ये सहूलियत नहीं
1: थी, तब उतनी सिस्टमैटिक इंडस्ट्री नहीं,
0: बिल्कुल ही नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। तो इसलिए उनका वो छूटा। पर बाद में जब उन्होंने धीरे धीरे काम कम करते गए, वो तब उन्होंने एक प्ले किया था जैसा

0: था विठोबा, विच वॉज अ वन मैन शो.
1: ओके, सोलो था.
0: सोलो था और पूरे 2 घंटे पापा अकेले स्टेज पर.
1: क्या बात है, क्या बात
0: ये
1: है.
0: 2003-04 की बात कह रही.
1: खुद ही डायरेक्ट किया था या किसी
0: नहीं,
1: और
0: नहीं,
1: को दिया?
0: चंद्रकांत कुलकर्णी करके हमारे मराठी के बहुत बड़े दिग्दर्शक हैं, उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ था ये प्ले. और लिखा था आनंद विनायक जातेगावकर करके, बहुत बड़े फिलोसॉफिकल राइटर होकर गए हैं, उन्होंने लिखा हुआ था ये प्ले. सो तुकाराम महाराज जो संत है उनके अभंगों के ऊपर बेस्ड ये प्ले है. ये इसका ऑडियो ट्रैक है बिकॉज

0: Toba was a brilliant attempt that he did. उसके बाद वो थिएटर फिर से शुरू करना चाहते थे. हालांकि जब उनकी तबीयत बिगड़ गई उस वक्त भी वो एक प्ले निर्देशित और एक्ट करने की प्रोसेस में थे. और तब वो उनका रिहर्सल्स और ये शुरू हो ही रहे थे पर उनकी तबीयत उनकी साथ नहीं दी इसलिए वो नहीं हो पाया.
1: जी, जिस समय वो व्यस्त होते चले जा रहे थे उस समय जाहिर है कि उनका एक रूटीन होता होगा और घर पर थोड़ा कम समय देते होंगे, तो बच्चों ने कितना मिस किया उनको?
0: बहुत. मैं तो खैर बहुत ही छोटी थी
1: जी,
0: लेकिन मेरी बहनों ने काफी मिस किया.
1: वो बड़ी थी और
0: हाँ वो बड़ी थी, समझदार थी. क्योंकि मैं छोटी थी इसलिए मुझे ऐसे कुछ अलग लगता नहीं था बिकॉज पापा बिजी ही थे. तो आप कहते हो कि रूटीन है, तो ये फिल्म एक्टर्स का ना रूटीन ही नहीं होता है.
1: बिल्कुल.
0: हाँ, क्योंकि जो शिफ्ट लगती है, शूटिंग की जो शिफ्ट होती है, उस हिसाब से उन्हें जाना पड़ता है. और जैसा मैंने कहा कि अभी कलाकारों के पास ये सहूलियत है कि एक टाइम पे वो एक ही फिल्म करेंगे एक समय पे, वैसे उस वक्त नहीं था कि दो तीन दिन एक हफ्ता किसी एक फिल्म का शूटिंग कर लिया, फिर बाद में दूसरी किसी फिल्म का शूटिंग कर लिया. तो जैसे शूटिंग लगते थे, जैसे डेट्स दी जाती थी, वैसे देते थे. क्योंकि पापा हो लिए, गोविंदा हो लिए, ये जो सब सारे कलाकार थे, इनकी डेट्स तीन तीन चार चार साल तक बुक्ड रहती थी.
1: बिल्कुल.
0: तो इसलिए उनका कोई रूटीन नहीं था एक्चुअली. लेकिन एक ही रूटीन था कि पापा होंगे तो पापा है, घर पर है, हमसे बात करेंगे, हम सब बैठ के साथ में खाना खाएंगे, उनके दोस्त आएंगे, उनके साथ टाइम पास होगा. ये रूटीन एक डेफिनेटली होता था. और जब वो अनिल शर्मा जी की फिल्में कर रहे थे तब तो राजस्थान और कश्मीर में महीना महीना शेड्यूल लगते थे. तो जब पापा आने वाले हो तो हम बच्चों को कैसे पता चलता था? बिकॉज उनकी जो फेवरेट मिठाइयां होती थी ना वो मम्मी बनाती थी.
1: अच्छा, तो उससे
0: अंदाजा था शायद पापा आजकल में आने वाले.
1: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है.
0: तो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. और हमारा रूटीन लगभग मम्मी के साथ ही रहता था. मम्मी ही डिसाइड करती थी हम कैसे पढ़ेंगे, हम कहाँ ट्यूशन के लिए जाएंगे, हम क्या कपड़े पहनेंगे, हम क्या करेंगे, बिकॉज वो ही पूरा वक्त होती थी हमारे साथ. पापा तो बाहर गांव होते थे और इतने बिजी होते थे कि ही वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ आवर डिसीजन मेकिंग. हमने जो निर्णय लिए उसमें वो कभी नहीं थे. पर मैं इस बारे में बहुत लकी समझती हूँ खुद को कि जैसे मैं कॉलेज गई 2001 के आसपास, तब पापा ने काम बहुत कम कर दिया था बिकॉज उन्हें ही हैड बिकम बोर्ड ऑफ डूइंग द सेम थिंग्स. के एक विलन है या एक कॉमेडियन है, वही वही काम करके उन्हें ऐसा हो गया था यार अभी नहीं करना है बस. और जैसा मैंने कहा कि पैसा और बिजनेस और इन्वेस्टमेंट, इसमें उनका कभी ध्यान नहीं था. तो उन्होंने एक दिन ये डिसीजन ले लिया और मम्मी को बोल दिया कि देख जितना मैंने कमाया है उसमें तुम और मैं मरने तक तो खा पी के सुखी रह सकते हैं, अभी और कमाने की जरूरत है क्या? क्योंकि मेरी माँ ऐसी है कि उन्होंने उनको पूजा ही था प्रैक्टिकली. तो उन्होंने कहा अगर आपको नहीं करना है तो आप मत कीजिए, आपको जो दिल में आता है वो कीजिए. और उस तरह से उन्होंने काम छोड़ दिया था, प्रैक्टिकली छोड़ दिया था कि अब अगर मुझे इस तरह के रोल्स आते हैं तो मैं नहीं करूंगा. और उन्होंने फिर उनकी किताबें पढ़ना, फिर अहमदनगर जाना, पूना जाना, दोस्तों के साथ मिलना बैठना. उस समय सैटेलाइट टेलीविजन आ गया था तो इंटरनेशनल फिल्में घर पर बैठकर देख सकते थे. तो फिल्में देखना, नेशनल फिल्म आर्काइव में जाकर वो एक एक हफ्ते के लिए, उनका एक छोटा स्क्रीनिंग रूम है पूना में, वो बुक करके रखते थे कि मुझे अच्छा, ये फिल्में देखनी है.
1: वाह वाह.
0: वो फिल्में वो देखते थे वहां बैठकर.
1: ये ड्राइंग और फोटोग्राफी का क्या मामला था?
0: जैसा मैंने कहा कि पापा एक निर्देशक भी थे तो उनकी नजर हमेशा कुछ अलग अगर दिखता है तो उसके ऊपर टिकी रहती थी.
1: ओके.
0: और हमेशा ढूंढती थी कि कोई नया कुछ अगर दिखाई दे. तो लकीली और उनके काम की वजह से उन्हें पूरा भारत वो घूमे, हालांकि आधे से ज्यादा दुनिया वो घूमे. उस वक्त तो बड़े बड़े कैमराज होते थे, लेंस और फिल्म्स होती थी उसमें, रोल वाले कैमराज होते थे, वो लेकर वो चलते थे साथ.
1: वाह वाह.
0: जहां पर भी वो जाते थे, राजस्थान हो, वेस्ट बंगाल हो, साउथ इंडिया हो, कोडाईकनाल, जहां पर भी वो शूटिंग के लिए जाते थे वहां पर उनके साथ उनका कैमरा होता था. तो अगर अहमदनगर में जो हमारा घर है जो पापा ने बनाया हुआ है उसमें अगर आप कभी जाओगे, किसी को अगर चांस मिलता है वहां जाने का और देखने का, उस घर का पूरा हमारा इंटीरियर सिर्फ फोटोग्राफ्स है.
1: वाह.
0: जो पापा ने पूरे इंडिया में

0: सजाकर खींची हुई तस्वीरें हैं, उसमें फैमिली फोटोग्राफ्स भी है ऑफ कोर्स। तो वो जो टेक्निक है फोटो की, उन्हें मैनुअल कैमरा अच्छा लगता था, डिजिटल कैमरा उन्हें बिल्कुल, उन्हें लगा ये क्या बचकाना है ना। तो वो लेंस एडजस्ट करो, फोकस करो, इत्मीनान से शूट करो, इस तरह से उनकी वो स्टाइल थी। तो या तो उन्हें फोटोग्राफी का बहुत शौक था। और उनके जो दोस्त थे, सबसे करीबी दोस्त हम जिन्हें कह सकते हैं, डॉक्टर अनिल अउसठ है, फिर डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर है जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जिन्होंने शुरू की थी, तो इन सब लोगों को भी ये सब शौक थे। तो इसलिए इनके साथ तो किताबें, फोटोग्राफी और पेंटिंग, ये तीन चीजें थी जो इनको बहुत ज्यादा पसंद थी, ये सब लोगों को, और पापा को विशेषता क्योंकि उनके काम की वजह से वो जाते थे। और इसमें एक बात बताने वाली ये है कि ये जब भी जाते थे ना, जैसे उन्होंने मिथुनदा के साथ काफी सारे फिल्में की थी, तो उस वक्त ऊटी में शूटिंग होता था, 90s की बात कर रही हूं मैं, तो जब भी वो जाते थे तो उनके साथ उनके ये जो दोस्त थे, नरेंद्र दाभोलकर हो गया, डॉक्टर अनिल अउसठ हो गए, या राइटर्स थे, वो लोग साथ में होते थे।
1: बाबा
0: कि वहां पर शांति से मैं शूटिंग करूंगा, तुम बैठ के रूम में अपना लिखने का काम करना। तो ये सब लेखक थे, लेखक वैचारिक इसमें शामिल होने वाले, इस तरह के सारे लोग थे। तो हमेशा उनके साथ उनके दोस्त रहते थे, फैमिली मेंबर्स को वो कभी लेकर नहीं बिल्कुल बिल्कुल डे वन से, जैसे याद है जो लोग मम्मी की किताब पढ़ेंगे, अभी उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी आएगा, मेरी बहन ही कर रही है, तो जब पढ़ेंगे तब उन्हें समझ में आएगा कि बचपन से लेकर आज तक, मतलब अभी भी टिल हिज लास्ट, उनके आजू बाजू हमेशा उनके दोस्त हुआ करते थे। जब वो छोटे, बिल्कुल छोटे थे, तब मेरे दादाजी की ईट बनाने का जो कारखाना होता है वो था, और वहीं पर एक साइड में छोटा सा घर बनाकर दादाजी, दादी और पापा सब लोग रहते थे। और वहां पर जो कामगार होते थे उनके रहने के लिए भी वहां पर रूम्स बनाए हुए थे। तो उन सारे कामगारों के बच्चों को लेकर पापा घर पर आते थे और दादी से कहते थे कि इन सबको भी दो,
1: वाह वाह,
0: मैं इनके साथ बैठ के खाऊंगा। तो दादी कहती थी कि चलो ठीक है, इसी बहाने खा लेगा सबको खिलाते थे। और मुझे जब से याद है बचपन से, तब से हमारे घर पे एक भी दिन ऐसा नहीं, मतलब पापा भले ही शूटिंग के लिए गए हो, पर उनके दोस्त बॉम्बई में किसी काम से आते थे, तो वो अहमदनगर का कोई भी आदमी अगर बॉम्बे आता था तो हमारा घर उनका खुद का घर होता था।
1: वाह वाह वाह।
0: तो एक भी दिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ, मैं, मेरी माँ, मेरी बहनें और पिताजी इतने ही घर पर है, ऐसा एक भी दिन आज तक मुझे याद नहीं है।
1: हमेशा कोई ना कोई,
0: हमेशा कोई ना कोई होता था, या तो वो कोई लेखक होता था, कोई नया कलाकार होता था, या उनका कॉलेज का दोस्त होता था या कोई समाज सेवक होता था, या कोई ऐसा होता था जिसका कोई काम है, जिसे कोई परमिशन चाहिए, कोई है जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है नया काम, जिसे भी बंबई में आकर कुछ मदद की जरूरत चाहिए होती थी, हमारा घर उन सब के लिए खुला होता था।
1: क्या बात है, इतनी शिद्दत से हम उन दिनों को याद करें जब वो बिजी थे। तो मुझे लगता है यहाँ बख्शी साहब का एक गाना आना चाहिए, तकदीर फिल्म का, पापा जल्दी आ जाना, सात समुंदर पार से।
0: श्योर।
1: ये गाना सुनते हैं।

0: सारी बातों के सिरे यहाँ पर खुले रीमा जी, लेकिन जो जिक्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से आया वो नरेंद्र दाभोलकर जी का है, अंधविश्वास निर्मूलन समिति का। उनके साथ उनके बहुत गहरे रिश्ते रहे, उसका जिक्र कीजिए कि किस तरह से वो इस समिति के साथ भी काम करते रहे।
1: करेक्ट, नरेंद्र काका जो थे वो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जो भारत में जो अंधश्रद्धा के खिलाफ बहुत बड़ी मूवमेंट हुई उसके प्रेरक तो थे ही, पर वो एक बहुत अच्छे इंसान, बहुत उम्दा इंसान थे। उनकी जो पहचान थी वो पहले डॉक्टर अनिल अवसट, डॉक्टर श्रीराम लागू, निरो फुले, इनके जरिए पापा की और उनकी पहचान बनी और आगे जाके फिर वो दोस्ती और आगे बढ़ी।
0: तस्वीरों में भी ये लोग साथ नजर आते हैं, बहुत सारी तस्वीरें,
1: काफी सारी तस्वीरें,
0: डॉक्टर लागू हैं, नीलू फुले हैं, ये सब साथ में दिख रहे हैं।
1: एकदम, क्योंकि इन्होंने एक मूवमेंट करी थी जिसका नाम था सामाजिक कृतज्ञता निधि। सो सामाजिक कृतज्ञता निधि ये एक मूवमेंट थी जिसमें इन्होंने फंड रेजिंग की थी। लग्नाची बेड़ी करके एक प्ले था जिसमें पापा निरू फुले, डॉक्टर लागू, तनुजा जो एक्ट्रेस, तनुजा, सुहास जोशी, रोहिणी हट्टंगड़ी, ऐसे सब बड़े बड़े बड़े बड़े कलाकार, और इन्होंने पूरे महाराष्ट्र में घूमकर निधि जमा किया हुआ।

0: नाटक करके जो
1: नाटक
0: जिसका
1: करके
0: जिक्र आता है कि बड़ा तूफानी दौरा किया.
1: एग्जैक्टली और ये मैं 84-85 की बात कर रही हूँ. और उस समय उन्होंने लगभग 60 लाख रुपए 84-85 में जमा किए हुए थे, जिसका हेतु ये था कि ये पैसे हम फिक्स करेंगे और इसका जो इंटरेस्ट इनकम आएगा उसमें से हर साल हम जो समाज के लिए काम करते हैं, जिनके घर चलने का और कोई जरिया नहीं है, उन्हें हम ये पैसे हर महीना देंगे 2 साल तक.
0: क्या बात. एक तो ये कि ये रकम जो 80 के दशक में थी वो आज की तुलना में मुझे लगता है शायद 10 गुना और ज्यादा ही.
1: तो इस तरह से वो कंसेप्ट थी. ये कंसेप्ट निकली थी नरेंद्र काका के दिमाग से. और डॉक्टर लागू और नीलू फुले ये बहुत करीब से काम कर रहे थे ऑलरेडी डॉक्टर दाभोलकर के साथ. और उन्होंने क्योंकि पापा के साथ उन्होंने काम किया हुआ था कन्यादान में, जैसे मैंने कहा डॉक्टर लागू से बहुत ही करीबी रिश्ता पापा का हो चुका था तब.
0: आगे चलकर उसकी अलग से बात करते
1: हैं. हाँ डेफिनेटली. हालांकि बहुत ही करीबी रिश्ता तब तक हो चुका था, इसलिए फिर डॉक्टर लागू ने कहा कि सदाशिव हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, आर यू इंटरेस्टेड? तो पापा ने कहा जरूर, क्यों नहीं. और इस तरह से पापा उसमें शामिल हुए. और ये सब लोग महाराष्ट्र के जितने भी थिएटर्स हैं, जितने भी छोटे बड़े गांव हैं, वहां जाकर आप इमेजिन कीजिए उस वक्त के नेशनल स्टार्स डॉक्टर लागू, निलू फुले, पापा, तनुजा,
0: कमर्शियल सिनेमा की
1: कमर्शियल.
0: एग्जैक्टली.
1: हाँ ये सब लोग वहां पर प्ले तो करते थे, परफॉर्मेंस तो लोग देखने आते ही थे इनका. और उसके बाद ये सब लोग जहां ऑडियंस एग्जिट होती है वहां पर झोला लेके खड़े रहते थे.
0: वाओ.
1: झोला लेके खड़े रहते थे और लोग पैसे देते थे. सो जो शो के टिकटों में से पैसे आते थे वो तो आते ही थे. और लोग जिन्हें लगता है कि हमें और मदद करनी चाहिए, वो उस झोली में 5 रुपया हो, 1 रुपया हो, 100 रुपया हो, जिसे जो अच्छा लगे वो उस झोली में डालता था. और ये सब पैसे मिलकर सामाजिक कृतज्ञता निधि के लिए जाते थे.
0: ये कितना बड़ा मुहिम, मतलब
1: बहुत ही
0: ये अद्भुत काम रहा उस जमाने
1: तो
0: के हिसाब से.
1: और पापा ने मुझे कई बार बता भी चुके हैं, जिसका मेरे ऊपर भी काफी परिणाम रहा है, कि मेरी कला जो है वो सिर्फ मेरी नहीं है, मैं इस समाज का एक घटक हूँ, इसलिए इस समाज के प्रति मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं. और इसलिए मैं ये हमेशा पहली जिम्मेदारी ये समझूंगा कि मेरा देश और मेरा समाज, इसके लिए मुझे जो करना है वो मुझे करना है. और फिर मेरा कुटुंब आता है, फिर मेरी फैमिली आती है, फिर मैं आता हूँ. इस तरह से वो जिए भी इसी तरह से. और उन्होंने उनकी करियर भी इसी तरह से की. इसलिए जब वो टॉप पर भी थे तब उनके साथ कभी कोई फिल्मी लोग नहीं होते थे, उनके साथ ये सब समाज सेवक हुआ करते थे. हालांकि ये हमारी फैमिली की परंपरा रही है. मेरे दादाजी भी अहमदनगर के सामाजिक सर्कल्स में बहुत कार्यरत रहे थे टिल द एंड. और उस वक्त भी कॉलेज में भी जब पापा थे तो कोई बाढ़ आई है तो बाढ़ग्रस्तों के लिए कोई शो कर लिया, उनको फंड रेजिंग करके दे दिया. तो ऐसा फंड रेजिंग पापा करते रहे हैं. तो मुझे याद है 97 की बात है, तब हमारे अहमदनगर इज अ हिस्टोरिकल सिटी, और वहां पर एक म्यूजियम था जो एक सुरेश जोशी करके एक थे, जो बहुत भाग दौड़ करके वहां पर वो म्यूजियम उन्होंने तैयार किया था, जमा किया था, पर फंड्स नहीं थे. इसलिए वो म्यूजियम जो था वो अभी बंद शायद करना पड़े इस कगार पर आ चुका था. और गिरीश कुलकर्णी जो है अहमदनगर के स्नेहालय के, उन्होंने इसके ऊपर एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा हुआ था जो महाराष्ट्र टाइम्स में आया था. बॉम्बे में पापा ने पढ़ा और उन्हें याद आया कि ये सुरेश जोशी जब वो छोटे थे तो अगर कुछ मिला, उस वक्त मोड़ी लिपि में सारे खत लिखे जाते थे, उसमें मिला तो आकर दादाजी के साथ बैठते थे, डिस्कस करते थे, बातें करते थे. तो पापा से रहा नहीं गया, वो उन्होंने गाड़ी निकाली, वो अहमदनगर पहुंच गया.
0: गजब.
1: क्योंकि सुरेश जी के पास ये नहीं था, फोन नहीं था, तो बात कैसे हो. तो वो अहमदनगर पहुंच गए, वो गए वहां पर उनके घर पर, उनसे मिले और कहा क्या कर सकते हैं हम. तो उन्होंने कहा कुछ फंड्स तो चाहिए जो हमें रेज करने ही पड़ेंगे. तो पापा ने कहा ठीक है. उस वक्त स्टार नाइट का ट्रेंड काफी चल रहा था. तो उन्होंने अहमदनगर में, बिकॉज पापा का कहना था कि ये हमारे शहर की धरोहर है और इसके लिए हमारे शहर ने ही कंट्रीब्यूट करना चाहिए.
0: क्या बात.

0: तो इसलिए उन्होंने उस वक्त गोविंदा असरानी जी, जॉनी लीवर, ये सारे जो बड़े बड़े कलाकार थे उनको लेकर एक स्टार नाइट अरेंज की अहमदनगर में, जहां पर रिलीज की डेट पे फिल्में भी रिलीज नहीं होती थी उस समय, तक लेट रिलीज होती थी। उन्होंने एक स्टार नाइट अरेंज की जिस एक रात में, ये मैं 97 की बात कर रही हूं, एक रात में 26 लाख रुपया खड़ा
1: बाप
0: किया
1: रे
0: गया
1: बाप,
0: फॉर द म्यूजियम।
1: म्यूजियम।
0: और ये बहुत बड़ी बात है, और आज भी वो म्यूजियम खड़ा है और बहुत अच्छे से चल रहा है, बिकॉज लोगों को अभी उसका इंपॉर्टेंस समझ में आया है। तो कई बार ऐसे होता है, पापा भी ये कहते थे कि लोग भूल जाते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है, महत्व किस चीज को देना चाहिए। तो हम अपनी जिंदगी तो जीते हैं, लेकिन जो ये अपना हमारा इतिहास है जिसमें से हम आगे आए हैं, हमारे जो पूर्वज है जिनके कंधों पर हम खड़े हैं आज, उनका रिस्पेक्ट रखना, उनकी यादें ताजी रखना, ये भी हमारी उतनी ही जिम्मेदारी है।
1: क्या बात है।
0: तो इस तरह से वो करते रहे हैं, और हमेशा, मैंने ये मेरे किसी आर्टिकल में भी लिखा हुआ है, मुझे याद है कि जब भी कोई आता था, जैसा मैंने कहा कि हमारा घर तो खुला ही था सबके लिए, तो जब भी कोई आता था तो अच्छा क्या हुआ, क्या चाहिए, अच्छा आप ये संस्था चलाते हो ठीक है, क्या आपको मदद की जरूरत है, तो कुछ परमिशन चाहिए, तो सीएम साहब को फोन लगा लिया, दिल्ली में फोन लगा लिया, कुछ फाइनेंशियल चाहिए, अच्छा चलो, तो मम्मी को बोल दिया अच्छा नंदा चेकबुक लेके आ जाओ, चेक निकाल के दे दिया। और इसमें मुझे मजे की बात ये लगती है कि मम्मी ने भी कभी उन्हें पूछा नहीं कि आप
1: ये
0: अभी
1: क्यों कर
0: इन्हें
1: रहे हो।
0: क्यों दे रहे हो, 10,000 रुपये इन्हें किस लिए दिए। इट वॉज वेरी क्लियर कि उन्हें देना है, उन्होंने दे दिए, खत्म बात।
1: वाह वाह,
0: तो ये जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी ये बहुत जबरदस्त थी, और उन दोनों की वैल्यू सिस्टम सेम थी। जैसा मैंने कहा कि वो एक ही स्कूल में बड़े हुए, एक ही गांव में, उनके पिताजी आपस में अच्छे दोस्त थे, तो उनकी जो मूल्य, जिसे हम कहते हैं मूल स्वभाव में जो वैल्यूज थी, वो बिल्कुल एक जैसी थी। और आई थिंक इसी की वजह से वो एक दूसरे को इतने अच्छे से साथ भी दे पाए। इट वॉज अ वंडरफुल फीलिंग। और ऐसे घर में बड़ा होना ये नसीब वालों का ही काम है, तो आई एम वेरी लकी दैट
1: क्या बात,
0: कि इस घर में मैं
1: बिल्कुल।
0: पैदा हूं।
1: चूंकि उनके सामाजिक सरोकारों की बात चल रही है, तो यहां मुझे होली वाली एक घटना का जिक्र जरूरी लगता है।
0: करेक्ट करेक्ट,
1: वो बताएं।
0: उस समय मैं पूना में थी, मेरी शादी रिसेंटली हुई थी, और मुझे वहां पर फोन आया, प्रसन्न जोशी करके कॉरेस्पॉन्डेंट है मराठी में बहुत बड़े, उनका फोन आया और उन्होंने पूछा रीमा ये सच है जो हम सुन रहे हैं। मैंने कहा क्या, मुझे कोई आइडिया नहीं था क्या हो रहा है, आपके पापा पर किसी ने हमला किया है, ऐसे क्या, मुझे पता ही नहीं था। और बात यह हुई थी कि उस समय नरेंद्र दाभोलकर, डॉक्टर अनिल अवसट, डॉक्टर लागू, इन सबके लिए काफी सारी धमकियां आने लगी थी, राइट। सो मुझे ऐसा लगा कि शायद वैसा ही कुछ हुआ हो, वी डोंट नो। मैंने कॉल किया मम्मी को कि क्या हुआ है ये वो, मम्मी का अभी नहीं मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ।
1: लो,
0: तो फिर मैंने मेरी बहन को कॉल किया, मेरी बहन बॉम्बे में ही, पास ही में उसका घर है, तो वो वहीं पर थी, तो उसने कहा इतना कुछ नहीं हुआ है, तुम आराम से बंबई आ जाओ फिर हम बात करते हैं। मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो फिर मैं बॉम्बे पहुंची, तब पता चला कि हमारी जो सोसाइटी है उस समय 2012-13 की ये बात है, बहुत बुरी तरह से सूखा पड़ा हुआ था महाराष्ट्र में, दो दो साल तक बारिश नहीं हुई थी, तो जो किसान थे वो अनाज नहीं उगा पा रहे थे, और पानी हफ्ते में एक बार 2 घंटे के लिए पानी आ रहा था, इतना कम पानी लोगों को मिल रहा था छोटे गांव में, छोटे शहरों में। और यहां पर बंबई में, बिकॉज हम बंबई है, तो यहां पर किसी भी चीज की कमी नहीं होती, पानी 24 घंटे होता है, बिजली होती है 24 घंटे। तो हमारे सामने ही जो एक बिल्डिंग है उसके आंगन में उन्होंने उस वक्त होली के लिए रेन डांस का माहौल तैयार किया था, तो 8-10 ऐसे शावर कंटिन्यूअसली 3-4 घंटे चल रहे थे वहां पर। और उस समय ऐसा था कि उस समय मैंने भी एक डॉक्यूमेंट्री करी थी सातारा डिस्ट्रिक्ट में, जो कैटल कैंप्स लगे हुए थे कि किसानों के पास पानी नहीं है, इसलिए वो उनके जानवरों को पानी नहीं पिला पा रहे, इसलिए वो कैटल कैंप्स में रह रहे हैं। पापा ने भी वो कैंप विजिट किया हुआ था। तो इस तरह से हम लोग बहुत ज्यादा उस समय उस चीज के बारे में अवेयर थे। और मीडिया से कॉल आया, बिकॉज सारे कलाकारों ने उस वक्त और महाराष्ट्र सरकार ने भी कहा था कि सूखी होली खेलनी है ये साल, पानी नहीं जाया करना है, बिकॉज अलग अलग चैनल्स के रिएक्शंस के लिए फोन आते थे, वैसा फोन आया।

0: आपको कि आपका क्या कहना है सूखी होली। तो कैसी सूखी होली, मैं अभी देख रहा हूं मेरे सामने 3 घंटे से 10 शावर चालू है जिसके नीचे लड़के लड़कियां नाच रहे हैं, सब लोग होली खेल रहे हैं, मजे चल रहे हैं यहां पर। तो यहां पर किसी को कुछ पड़ी नहीं है महाराष्ट्र के किसानों का क्या होने वाला है। और ये पापा ने कहने के बाद इमीडिएटली ओबी वैन्स वहां पहुंची और उन्होंने वो कवर किया। तो पापा बिल्डिंग में से नीचे उतरे और एक रिपोर्टर उनके साथ था जो वो बातें रिकॉर्ड कर रहा था और पापा दिखा रहे थे देखो किस तरह से ये चल रहा है वगैरह। वो बिल्डिंग के जो लोग थे उन्हें ये समझ में आया कि अरे ये कवर कर रहे हैं, न्यूज कवर हो रही है। तो उस वक्त वो सब दौड़ के हमारी बिल्डिंग में घुसे और उन्होंने वो कैमरा खींचा वो कॉरेस्पॉन्डेंट से। उस धक्का मुक्की में पापा को थोड़ा सा लग गया धक्का, उसका न्यूज में ऐसा हुआ कि उन पर हमला हुआ है। पर खैर वो बहुत दिनों तक वो बात चली, आगे उसकी कोर्ट केस हुई, सब हुआ, पर उनसे वो रहा नहीं गया। और पापा वैसे ही थे, वो झूठ नहीं बोल पाते थे, तो जो है वो बात वो मुंह पर कह के ये हो जाते थे। तो इसलिए उन्होंने वो इसको दिखाया देखो पर ये क्या हो रहा है, इस तरह से उनका चल रहा था वो किस्सा, इस तरह से कुछ हुआ था।
1: और किसानों के प्रति उनका जो सरोकार था वो यहाँ नजर आता है।
0: हाँ, और क्योंकि मेरे दादी जो थी वो खुद एक किसान की बेटी थी, पापा के जो मामा वगैरह थे, मामा नाना, वो सब बहुत ही गरीब किसान थे। इसलिए जब भी छुट्टी होती थी तो ये छोटे गांव में जाते थे, क्योंकि उस समय तो ऐसा था ना नानी के घर जाना है, तो तब ये खेतों में घूमते थे, तब ये रहते थे। तो किसान की जिंदगी क्या होती है
1: वो उनको
0: ये
1: पता
0: उन्हें
1: था।
0: बहुत करीब से देखी हुई थी।
1: बिल्कुल।
0: तो इसलिए उनकी वो जो तड़प थी कि हमारे किसान किस तरह से सफर कर रहे हैं, किस तरह से उनकी जिंदगी पानी की कमी की वजह से खराब हो रही है, ये बहुत स्ट्रांगली उन्हें लगता था।
1: बिल्कुल। यहाँ एक गाना सुनते हैं, दो आंखें बारह हाथ का। हाँ। ए मालिक तेरे बंदे हम।
0: ऑफ कोर्स।

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की दूसरी कड़ी। ये बातचीत जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। इस कार्यक्रम में संपादन नेहा शर्मा का, विविध भारती की ओर से कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। छाया गीत कार्यक्रम के लिए थोड़ा सा इंतजार।

सुने छाया गीत। सुनने वालों को शेफाली कपूर का नमस्कार। रात गहरी है मगर चांद चमकता है अभी, मेरे माथे पे तेरा प्यार दमकता है अभी। ये चांद भी मेरी तरह तन्हा है बहुत ज्यादा, एक से मुसाफिर हैं एक सा मुकद्दर है, मैं जमीन पर तन्हा और वो आसमान में। आज रात के दश्त में फूल खिले हैं भूली बिसरी यादों के, सीने में रोशन है दिल, दिल में रोशन इश्क तेरा, सीने में रोशन है दिल, दिल में रोशन इश्क तेरा। उफ, चिराग पे चिराग रख।

हर रात यही सोच के सोता हूँ, कल सुबह शायद तेरे दीदार का सूरज निकले। हर रोज तेरे ख्वाब लिए आंखों में दर बदर घूमता फिरूं मैं। एक चेहरा है जो आंखों में बसा रहता है, एक तस्वीर है जो तन्हा नहीं होने देता। इश्क किसी को बताना नहीं पड़ता, आंखें खुद ही सब कुछ कह देती हैं। ये प्यार जो है तुझसे मेरा, किसी किताब में नहीं लिखा गया। तेरी आंखों में डूबा तो जाना कि मोहब्बत क्या होती है। बोझल हैं आंखें मगर नींद नहीं आती, वो तेरी सांसों की गुलाबी खुशबू। दिल भी खाली खाली है बहुत, तू मेरी रूह का हिस्सा था, मेरे चारों तरफ चांद की तरह से रक्षा था। वो भी क्या जमाने थे जब हम रोज मिला करते।

जब पहले पहल तुझे देखा था दिल कितनी जोर से धड़का था, वो लहर न फिर दिल में जागी, वो वक्त न लौट के फिर आया। सब्ज मध्यम रोशनी में सुर्ख आंचल की धनक, सर्द कमरे में मचलती गर्म सांसों की महक,

रेशमी बाहों में चूड़ी की मध्यम खनक, शर्म की लहजों में धीरे से कभी चाहत की बात, दो दिलों की धड़कनों में गूंजती थी एक सदा। उधर धूप डल रही थी, इधर दिल डूबता जा रहा था। हाँ, आज तलक याद है वो शाम जुदाई मुझको।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। साथियों, शायरी एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें जाहिराना तौर पर रंग बिरंगे फूल हैं। ये दिल बहलाने का एक तरीका ऐसा है

0: जिसे हम पा नहीं सकते उसे अल्फाजों में जी लेते हैं। वो उसका नर्म मुलायम लहजा, जैसे ढलती सांझ की लाली नर्म कोमल सुरों में कोई प्यार की बात कहने चली हो। उसकी हंसी की रिमझिम कि जैसे फजा में नीली, बहुत हल्की नीली सी चमकदार बूंदों के घुंघरू छनकने लगे हों, कि फिर उसकी आवाज की छुअन से हवाओं के हाथों में अनदेखे कंगन खनकने लगे हों। वही लहजा जब भी मुझे छेड़े है, यादों में, ख्वाबों में, ख्यालों में, तो ऐसा लगे जैसे सावन की चंचल हवा सब्ज पत्तों के झांझन पहन सुर्ख फूलों की पायल बजाती हुई मेरे रुखसार को गाहे गाहे शरारे से छूने लगे।
1: तड़प ये दिन रात की

मुझे बेपनाह शिद्दत से चाहने वाले, तुम्हारी चाहत विसाल की आखिरी हदों तक फकत मेरे नाम होगी। मुझे यकीन है वो पल वो लम्हा कि मेरे बालों पे, आंखों पे, पलकों पे, होठों पे, माथे पे, रुखसार पर फूल ही फूल होंगे। मेरा चेहरा तुम्हारी नज़मों, तुम्हारे गीतों की चिलमनों से उभर रहा होगा। तुम्हारी आंखों में छुपे समुंदरों में डूब जाएंगी मेरी आंखें। इतना तो किसी ने तुम्हें चाहा भी ना होगा जितना मैंने सिर्फ

देखते देखते तारों का सफर भी खत्म हो गया, चांद भी सो गया, मगर नींद न आई मुझको। कौन था तू कि फिर न देखा तुझे, मिट गया ख्वाब आंख मलते ही। वो कौन है उससे तुम्हें वाकिफ भी नहीं हूं, जो मुझको किसी और का होने नहीं देता। हमें चाहिए था मिलना किसी अहदे मेहरबान में, किसी ख्वाब के यकीन में, किसी और आसमान पर, किसी और सरजमीन में।

साथियों, आज के छाया गीत का सफर बस यहीं तक। गीत संगीत की ऐसी ही सुरीली महफिल में फिर होगी मुलाकात। शेफाली कपूर को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

तराने नए पुराने कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गाने के साथ। इसे हमने लिया है फिल्म कभी खुशी कभी गम से, और आवाजें हैं अलका याग्निक और सोनू निगम की।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: यह है विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है तराने नए पुराने।

अच्छा जरा खनाबा क्या थुमनुक थुमनुक ने मुंगा चामरी ओम्पा और थुमनुक नो सुने क्या गाले दे बर्मा अकस्बनी आगर तला बिनिया।

पंगे हाक तो नहीं लुकरा खुलम का मन के बातो नरक जतो बाय तेवसा करंगई मानमा बागई आनि खा तंग थबि तंगो नैसाय निचिदक बिसि खाक्सा लाय तंगो ओ ताल दक जों मन के बात नि बिसिं तै हानि लुकरक नि कबांग मा चोफुंग न तै सालाका जोन तालबो हाक तरो किसासे अब तै सुमुंग रक्न मानखा अब जों हानि लुकरक्न खातुंगई कंसुग्रुओ ओ चुकमु हानि नाइमथांगते बाइथांग।

ग्रा ख्लायनाय सोंनो सुब मुं रनाय आनि खाफोंनि हाक्तोनि लुकराव चिनि हाव आसायमा साल कालाय पांदा नुखुंनि सामुं हंजांमा बाय बाक्सा हदाव जतनि न तेरबो तंगो जत नुखुंनो नायो बिनि तंथकमानो बुइ बाय तंथग्रनानि लुकराव नग्राय रक्नो याक पाइबो याफलायो किसिं सं महाराष्ट्र नांदेदरनि कायसा नुखुं बिनि तंथमा बुइनो बाखना बागै कायसा अबतै सामं खलायखा अब बेलायखन बुइ मासालायखा आरोनि बाहादुरपुरा कामिव फेटकार नुखुं तंगो आ नुखुं वानसुखा तुमुं तंथकमानो बाखनानि न हनखे अबतै मानैनो रनाय जे मानै जरा केसेबो जेसा नुखुंनि फानो सामुगो सुखनाय बायथांनि नुखुंनि कायलाय पान्दानि जराव आ नुखुं कामिनि ओंया हनफानो खरक थामसाय बारा बरकनि बागै लाहा देरामुंनि इन्सुरेन्स खालायरोखा जत बरकनो खक्सा रासाय लाहा देरामुंनि इन्सुरेन्स मान्नाय आ साक्थार मुंनि उख्लुग कायसा बेलायनो खायगजाखनाय वानसुखमुं ककतंगो नुखुंरक साग देरागमानि उलो जे रांनि बियाल कलायो आबुनो नुखा आ नुखुं अबहाय जराव किसिसा या खलकमानो कतर चुबामुं अंगानौ किसिंसं हाफां हाक्तर गोनाङै रोजाक रोजां नुखुंगो साकनै मोथांनि चुबामुं रुइ तंगो प्रधान मन्त्री सुरक्षा बीमा योजनानि बिसिंतै बिसाव खग नैचि प्रिमियाम रमानि बिसिंतै खग नैचि रासाय जरा लाहार देरामुंनि इन्सुरेन्स रां रोजागो ताबुकसाक जरा खरग बाचिचार रोजाकनि गोबां बरग अ तांग बोतांग गोदालखा आरोनि बिसिंग खरं नैचिचार रोजाक बरग ओंखाचिनि आमा ताय हानक ताय बुखुकसं ताबुकसाक जरा लेखामारि मानमानो रोगै अ तांग बोतांनि बिसिंते देराजां नुखुं रक्नो खक थामसाय सिनिरा रोजाक रां सबामुं रोजाखा किसिंसं प्रधान मन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजनाबो आसुंन नांखुंमानि अ तांबोतांनि बिसिंग खबजाग जेसा बरक फानो थैके नुखुंग रां खक नै रासाय नि रां चुबा जागो अबनि बिसिं रांमारि ओंखा खक ब्रै रात थामचि दग सालक खक्सा मासानि सिलायबो गिसा ताबुसुग जरा खरक नैचि सिनि रोजाकनि गोबां बरक अ तांबोतां बाय गोदालखा अ तांबोतांनि बिसिंग हाक्तर गोनाङै ओंया हमफानो खुंचिसा रासाय नुखुंनि खक नैचि नै साय रोजाक रां सबामुं रोजाखा अ बांमारि बेलायनो गोबां अबरकनि उख्लुग तंग रासाय रासाय नुखुंनि जुदा जुदा कथमा कुनु खेबा बुमा बोसारकनो परिरुइ त्लांना बागै सबामुं मानखा बाक्साखे बिहिक नुखुं नायखलमानि सबामुं मानखा किसिंसं जरा जराव किसा रांताय चिकनसा सामुंनि बिसिंतैन कतर नायमोथां चेंसाजागै मानो अबहाय चिकनसा ककसामानिबो कतर सलाइमुं तुबुइ मानो आं नरक जतन अ तांबोतांनो तै निनि नुखुंनि बरगनो सायमान रना बागै कबक जाओ आनि खाफोंनि हाक्तनि लुकराव मन की बात चों ताबुक अबुतै दालनि ककनो सालायनाय अब बिसि साय साय गजामताय बरग हदाबाय गोदोग गोदोग बिसि रमै कथुखे गोरोंजाग अबंखा मोनाखैतु मोनाखैतु जाया खाखाखमानि सिमिनैया अब किरिमुं बुतुबु ताय जेफुरु किरिमा बरकनि बखानो तैदुल आफुरु बररक कबैन नुगै मानिया मोनाखैतु बाय कबलजाग बररक सैलाम सावि मानिया अबति ककसाब नाहारो अब बेलायनो हामिया ओंखारि तुबु अब बाय बाक्सा हदव अबहाय बरकबो तंग जेरक सय सि नुखमानि ताय सय फनुखमारिनि बिसिंतै आ हामिया पैतुनो केबेंग मोना पैतुनि सिमि सय पैतुनि लामाव सक फायनानि कलाइया ताय आं तिनि नरकनो अबतै ओंखारि काहाम हिमुंनि ककनुनो सानाय किसिंसं आसामाव दालसा तक दङ आ तकनि मुं ओंखा हरगिला हरगिला बेलाय किसा दालनि तक हाबनो साफ खालायथानि अ तकनि नांखुमा

नारकनानि लामा सिमिया अबो कक सालायमुंनि रायदाबाय रोगजा कायसा तांबोतां अरब गबैबाय जुक्ति रुयने बायथांनि कक सानानि बेलाय नांखुगौ दै अदिखल' बायथां सुखजाक ओंनान नांखुगौ बुनि ककनो खा रुयै खोनानानै दै बुजिनानै सोरंमुंबो अ फिलसफिनि एलेमतैनो फोरोंजागौ आं बेलाय खा तंथगौ नालन्दा विश्वविद्यालय रायदानो बरकनि मुकुमु बोलाय याफारमानि पान्डाव खबखा अरम मानजाखनाय गोबां कुकन' बुहारनि परिनायरक कायसा बेलाहाय गोजाम सिरिसिटिन रायदानो सोरोंनानै बबाय गोदालनानि सायथमुं बेलाय बलायजाखनाय आं अबनि बागै नालन्दा विश्वविद्यालयनो बेलाय बेलाय हामबायाफारो आं हाक्तनि गुबुन विश्वविद्यालयरकनबो कयना मुसुंगो बरक अबुनो तै वानसुना बागै किसिं सं सिखलारकनो बायथांनि सिरिसिटिनि रायदाबाय गदाल रुबुय तांसेब गतालनि बागैने चुकजा खलाय तिसाना फाइसिं तेकायसा खा सरांजाखनाय लाम रमजाखा दिल्लीनि सेन्ट्रल संस्कृत इउनिभार्सिटीआव आर्टिफिसियेल इन्टेलिजेन्स टाइ डाटा साइन्सनो तै बिटेक फोरोंमुं सल खालायना फाइसिं भारतनि सिरिसिटिनि सिमुं बाय गोताल तांसेब बाय गोदाल लाइमानि दिखलब अब कायसा बेलाय नांखुमानि याफिरि अब बाय भारतनि हाकतननि गोताल एआइ टुन एबाखे तांसेब सोनामथानि लाम कलाय ओंनायताय चिनि सिरिसिटिनि बिजाबताय पान्डुलिपि रकमबो डिजिटाल तांसेब बाय खातिथानि गोताल फानमानानो अबहाय साखदारमानि बागै आं सेन्ट्रल संस्कृत इउनिभार्सिटीनो बेलाय हामबाय याफारो किसिं सं ताबुक भारतनि हुकुमु मुकुमु जुदा जुदा थायो सगैखा हायुंनि लुकुरक चिनि रसाबमुं मोसामुं ताय पुइतु तैमुं रकनो लुकुरक सायमानखा ताय बनो यासाकसका भारतनि सिमि सायसा किलोमिटार हासालो तंनाय केरेबियान तैजलां साखाव तंनाय डोमिनिकान रिपाब्लिक मुंगै कायसा हाक्तर तंगो आरो भारतनि लुकुरक जतै खरकसारा हाय दङ ओंगैमानो बनि सेफानो किसा हायफानो आरो भारतनि हुकुमु मुकुमु ताय पुइतु खालायमुं रकनतै कायसा वानाजांनाय सामुं तांजागै दङ स्पेनिस कक सानाय दलसा लुकुरक ब्रह्म कमल डोमिनिका मुङै कायसा दफा सोनामखा अबदलनि आदंरक गोथालाय बैदिक कक रबायनो परिलायो ताय बैदिक कमथाय एबाखे जब खालायना सोरोंलायो मुंसासो फोरोंमुंनि सेब गोरैफानो अडिय' रेकर्डिं खोनालाय बरक अ कमथाय रकनो सय सयके सोरोङै दङ ताबु बरक पुरुष सुक्तम श्री सुक्तम दुर्गा सुक्तम श्री रुद्रम ताय देवी महात्यम हाय किसासो कमथाय रकनो गोख्रोखे सोंलायो भारतनि आसोग हासालो दङैबो सिनि सिरिसिटिनि रायदा रकनो सायमानना बागै बरकनि अमहाय सायतुमुं गुबैनो खाबासाजाखनाय ब्रह्म कमल डोमिनिकानि जत आदं रकनो बरकनि अमहाय सायतुमुंनि बागै आं बरकनो खाका हामयाफारौ हायुं गानाङै भारतनि हुकुमु मुकुमुनो चासारै तिसाथानि जेराव खारुयै सामुं थाङै दङ बरक जतनो आनि खाबाय हामबाय याफारौ आनि खाफांनि हाक्तनि लुकुरक मेघालयनि सिनिमुं बिनि चुमुइताय नायथथक हाबानि मांबाय जेराव मेघालय बेरायनानै थांगो बरक आरोनि लुकुरकनि खाफुरमा किसिं हालकनि कखनो बगैमाया आंगो फिया मेघालयनि तै कायसा खा फुरजांनाय ककबो दङ जेनतै दिनैनि मन की बात पान्डाव आं सानामु चुंगो अब ओंखा मेघालयनि रुट ब्रिज एबा बुफां यारुंनि जायजर आं आरो बुफां यारुंनि जायजरनि कक साखा फिया अब थांलायसो खालायनानि लामानि कगया अ यारुं जायजरनि कायसा बेलाय खोनातर कथमाबो दङ अ यारुं जायजर सालकिसा एबा बिसा बिसिंनि सोनामजाखमानिया अबरक सोनामनानि बागै बिसिसि जरा नाङै थांगौ राबार बुफांनि यारुंनो तुरुग तुरुखे दैसाखाथै कायसा बाबायथै तोलांजागै थांगौ जराबाय बाक्सा अयारों रोग तैब गोरा